印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईक की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

धरमपेरायण तरसबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलाकुकान कुंजुंगान कनेगारा अन सलामतिगा हरी का सिचेले उन्तुक मंगा हदीरी पेरायण या यूबिलुम यमास हरी नेशनल सिचेले सबागाय तामु क हरमाता आन कुंजुंगान इनी मनेगास्कान कंबाली परसाहाबातान यंकुआत दान आबादी अंतरा इंडिया दान सिचेले सरता मम पर कुआत कमिटमेंट बरसामा का दुआ नगारा उन्तुक मनिंकात कान हुबुंगान बिलेट्राल दी समूह सेक्टर पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकान बरबागी पम्मी की रानिया देंगान मसियारा का दी दलाम दान लुआर नगेरी दलाम प्रोग्राम मन की बात दी आकाशवाणी पुकुल सबलास पागी हरी इनी इनी अकान मंजा दी एपिसोड का सरातुस तिगा पुलू लीमा दारी प्रोग्राम रेडियो बुलानान तरसबूत प्रोग्राम इनी अकान दी सियारकान दी सलरूह जारिंगान आकाशवाणी दान दूरदर्शन सीतुस वेब एआईआर न्यूज दान अप्लिकासी सेलुलर न्यूज नायर प्रोग्राम इनी जुगा अकान दी सियारकान लांगसुंग दी सालुरान यूट्यूब एआईआर न्यूज डीडी न्यूज पीएमओ दान कमेंटेरियन इन्फॉर्मासी दान पनियारान आकाशवाणी अकान मनियार मनियारा कान प्रोग्राम इनी दलाम भाषा दायरा सजार सगेरा सतेला सियारान भाषा हिंदी प्रेसिडेंट यांग प्रेसिडेंट यांग दी गुनाकान कलम्पोक तरसबूत उन्तुक मरेचान कान सरंगान तरोरिस ऑपरेशन मिलिटेर बरलांगसुंग पड़ा हारी सलासा दान राबू सचारा खुसुस मने मन आर्गेत कान पुसात मोबिलेसासी दान फासिलितास पलातीहान अल साबाब कमंत्रियान मन मंगाता कान लोकासी यंग दी तार्गेत कान सचारा आक्तिव दी गुनाकान ओले कोलोम्पोक मिलितान उन्तुक मनियम पान प्रसिद्धियान मिलितेर पेंटिंग कमंत्रियान प्रताहनान मनियम पैकान अप्रेसियासी निया कपाडा मित्रा इंटरनेशनल यंग मंडुकुंग उपाया कॉन्ट्रा टेररिज्म में सोमालिया यंग बंतवान बरकलांजुतान निया तेला ममाइकान पेरान पेंटिंग दलाम कबर हासिलान ऑपरेसी इनी दिमिकियान पर नियता अंतर सबूत अल सबाब तिदा बरकोमेंटार तंतंग ऑपरेसी तरसबूत यंग तरजादी दी तंगा पनिंकात कान सरंगान दारात ओले पासुकान इलित सोमालिया दन मित्रा इंटरनेशनल मरेका बुलान लालू एस एन ए मनेवास कान लिमा पुलू पजुआंग अल सबाब दन मलुकाई लाइनान सलामा ऑपरेसी मिलितेर तर और देनासी दी पिंगीरान बायदोआ दी नेगारा बागियान बारात दाया देवान हाक असासी मनुष्या पाकिस्तान मंगुंदुक पर नियाता आन यंग दिबुआत ओले मंत्री परताहनान नगारा इतु ख्वाजा आसिफ मंगेनाय एदेंतितास कश्मीर दारी पंडुडुक रावल कोट दान मीरपुर दी कश्मीर यंग दिदुकी पाकिस्तान कृतिक तरसबूत मुंचुल सतेला आसिफ दालाम सबुआ ववानचारा तेलिविसी मंगाता कान बाबा पंडुडुक रावल कोट दान मीरपुर दीपोक बुकानला वारगा कश्मीर से जाती मनंगापी परनियाता आन तरसबूत बादान हक असासी मनुष्य मंगाता कान बाबा इंडिविदू यंग मंडुडु की पोजिसी पमरिंताहन हारुस मंजालान कान तांगुंग जवाब कहाती हातियान दान रासा हरमात यंग मैक्सिमल दलाम हाल हाल सप्रति इनी एचआरसी ममिंता पमेरिंता पाकिस्तान उन्तुक मंगेन लुआरकान क्लारिफिकासी यंग तेपात मंगेनाय मसाला इनी दान मंगाम्बिल लेंका लेंका उन्तुक ममास्तिकान बाहवा पर नियाता आन सप्रति इतु तिदा तरुलांग दी मासा मंदतांग दी पाकिस्तान पासुकान का अमानन मनेवासकान एनाम टेररिस्ट दान मनंका सातु लाइनिया हिडुप हिडुप सतेला मंगांगाल कान सेरांगान बेरानी ओले मिलितान तरहडाप कॉम्प्लेक्स सिंध रेंजर्स दी कराची ताडी मालाम सेरांगान इतु मनेवासकान एम्पात पर्सनल पारामिलिटर दान मनांदाई सेरांगान टेररिस्ट पेसार प्रतामा दी कोता इतु सजाक अक्टूबर दुआ पुल्लू दुआ रिबू दुआ पुल्लू एम्पात मनोरुत सुम्बर क अमानान यांग दपात दी परचाया पारा पनियेरांग यांग तरमासुक दलाम जुमात उल अहरार फाक्सी मिलितान दारी

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यांग दिलारंग मनेरबू मार्कास बेसार सायाब बिताई सिंध रेंजर्स दी दायरा गुलिस्तान ए जोहर यांग पादात मंडडुक दी कराची सकितार पुकुल दुआ पुलू तितिक तिगापुलू सरंगन कमारिन दी क्लेम ओले जुमात अल अहरार फाक्सी मिलितान ते ते पे यांग सबागियान बेसारबर ओपेरासी दी प्रोविंसी खाइबर पख्तू खवा दी बारात लाओत पाकिस्तान यांग बरबा तासान दंगन अफगानिस्तान मलाकुकान सरंगान तरहडा वार्गासी पिल पर्सोनेल का अमनान दान पजबात पमेरिंता जुमला कुर्बान गिम्पा वेनेजुएला जुमला कुर्बान तेवास अकीबात गिम्पा भूमि दी वेनेजुएला मनिकात पंजादी सातू नोल एम्पात पुलु एम्पात रातुस तिगा पुलु पाडा हारी साप्तु आंका तरबारु दी लिरिस सातिम पनियेला मात मलांजुत कान पंचारियान कुर्बान सलामत दारी दुआ गिम्पा भूमि बर ककुआतान तुजु कोमा दुआ दान तुजु कोमा लीमा मैग्नीट्यूड यांग मंगहानचुर कान नेगारा अमेरिका सलतान इतुतिगा हारी सबलुमनिया कलुआरगा मेलापुर कान सदिका सतीडाकनिया नामपुलु दिलापान तितिक संबिलान रातुस ओरांग हिलांग हिंगा पागी इनी वार्गा वेनेजुएला यांग मंचारी ओरांग तरकासी दान ततांगा मरेका मंगुनाकान सेकोप अलात बेरात ताली दान तांगान कोसोंग दी अतास तुम्पुकान बेतोन यांग रोबो दी सलुरु ला गुरिया साला सातु नेगारा बागियान वेनेजुएला यांग पालिंग परा तरकना दंपा कपाल सुर्वे बेसार इंस इसहाक बुआतान दलाम नगेरी अंकाताकान लाउथ इंडिया तिबादी पलाबुहान विक्टोरिया दी सिचेलेस सबागाई बागियान दारी पनमपातान ओ ओपेरासियोनाल निया क विलाया समुद्रा हिंडिया बारात दाया कमंत्रियान प्रताहनान मंगाताकान बाहवा कुंजुंगान तरसबुत बरते पातान देंगान पेरायान हारी नेशनल सिचेलेस क लिमा पुलु सलामा कुंजुंगान पलाम्बुहन ई एन एस इक्साक अकान बर प्रतिस्पासी दलाम पेरायान हारी नेशनल दान तरलिबात दलाम सरंगाइनान तर इंटराक्सी प्रोफेशनल दंगान अंकाताकान अंगाता आन प्रताहनान सिचेले यांग बर तुजुआन उन्तुक मनिकाता का कर्जा समाधान इंटर ओपेराबिलिटास मार्ती मारितिम सिचेले मंडुकुंग उपाया इंडिया उन्तुक मंदपातकान कुर्सी तताब्दी देवान का अमानान पर सरिकातान बांगसा बांगसा बरबिचारा मंजेलांग क दातांगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी नगारा क पुलुआन तरसबूत मंत्री लुआ नगेरी सिचेले बेरी फेवर मंगाताकान बाबा तातानान ग्लोबल साथी निदान लंबागा इंटरनेशनल मंबुतु कान रिफॉर्मासी उन्तुक मन चर्मिन कान रियालितास मासाकिनी दिया मंगाता कान इंडिया लायक मंदपात कान कुर्सी तताब्दी देवान का अमानन करेना पपुलासी निया पंगारू ग्लोबल निया यंग समाकिन मनिंका दान कंट्रीब्यूसी निया तरहडा परदामाइनान का अमानन मारितिम दान डिप्लोमासी मल्टीलैटरल लैटरल मंत्री प्रदागागान दान इंडस्ट्री इंडिया पीयूष गोयल मंदेसाक परुसाहन इंडिया उन्तुक मम परकुआत कतर लिबातान दिंगन मित्रा मरेका दी इंग्लिश उन्तुक मन जमाहकान पलुवांग यांग मुंचुल दी बावा पर जानजियान इकोनोमी दान परदागागान कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया इंग्लिश मंजादी पर तुम्बुहन बिजनेस यांग बरकलांजुतान मंत्री मंगाता कान हालिनी साथ ममपिन सिदांग प्लेनुम बिजनेस इंडिया इंग्लिश मित्रा दलाम क माजुआन दी लंदन क मंत्रिया आन परदागागान दान इंडस्ट्री मनियाता कान बहवा सिदांग प्लेनो दी हादिरी ओले परवाकिलान इंडस्ट्री तरके मुका दान दारी क दुआ नगारा यांग मनियाम्बुत बाइक चेता सबागाई ग्रांका कर्जा ट्रांसफॉर्मेटिव उन्तुक मंपर कुआत परदागागान दान इन्वेस्टासी बिलात्राल डिस्कुसी तरसबूत मन्योरोटी पोटेंसी पर जांजी यान उन्तुक मंपर मोसीकान इन्वेस्टासी जांग का पांजांग कमित्रा आन टेक्नोलॉजी इनोवासी रानताए पासोकान यांग तांगू

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप

0: में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन

ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खुसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 बरसों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वो हर शहरी के लिए काबिल रसाई किफायती और मियारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के नवे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के नुक्ते नजर की बीमारी की देखभाल से तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर इलाज मुआलजे से जाम सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले 6 जांबाज फौजियों की अजीम कुर्बानी का सरकारी तौर पर पहली बार हाल ही में एतराफ किए जाने से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाज हलकों में गर्दिश करने वाली खबरों पर वजारत दिफा ने अपनी वजाहत पेश की है। वजारत ने इन खबरों को हकायक के मनाफी करार दिया। वजारत के मुताबिक मुल्क ने शहीदों को अवलीन मौके पर खराज अकीदत पेश किया था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने गुज़श्ता बरस 11 मई को मुनक्कदा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया था। वजारत ने मजीद बताया कि इन शहीदों को बहादुरी के एजाजात भी अता किए गए थे जिनका ऐलान गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में किया गया था। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय फौज के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया था। वजारत दिफा ने कहा कि शहीदों के नाम तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नेशनल वार मेमोरियल पर कुंदा किए जाते हैं और ये कहना कि मुकर्रा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया हकाइक के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि इस तरह की गुमराहकुन इतलात न सिर्फ हकाइक को मस्क करती हैं बल्कि शहीदों के अहले खाना के लिए गैर जरूरी तकलीफ का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वालों के वक़ार को भी मुतासिर करती हैं। वजारत ने तमाम शराकतदारों से अपील की है कि शहीदों से मुतालिक खबरों की इशात में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करें और गैर मुसद्दका मालूमात की तशहीर से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान नाजुक जंगबंदी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फौजी तैयारों ने ईरान के फौजी निगरानी के निजाम, मौसलाती निजाम, फिजाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी फौज के मुताबिक यह कार्रवाई जुमे के रोज एक तजारती बहरी जहाज पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी फोर्सेज ने कीकुनामी तेल बर्दार जहाज पर यकतरफा ड्रोन से हमला किया। यह जहाज आबनए हुरमुज से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज्यादा खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान के पास जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मौका था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी फोर्सेज ने कीकु ऑयल टैंकर पर हमला किया। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि आबनए हुरमुज के शुमाल में वाकई एक इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। यहां बुध के रोज 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो ताकतवर जलजलों ने जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि जलजलों के 3 दिन बाद भी 68,900 लोग लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की इतला उनके अहले खाना ने दी है। कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा कि हजारों इमदादी कारकुन रात दिन मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेनेजुएला के जलजले से मुतालिक मुतालियात की फाउंडेशन फुनविसिस ने इतला दी है कि वेनेजुएला के वस्ती इलाकों में 4.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। सरकारी इदारे ने बताया कि इस जलजले का मरकज मुल्क के अहम वस्ती साहली शहर लागुएरा से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में था। बुध के रोज आने वाले दो ताकतवर जलजलों से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद इस इलाके को आफतजदा जोन करार दिया गया है। इदारे के मुताबिक जलजला सिर्फ

0: 5 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा शिद्दत से लरज गई और ढांचा जाति नुकसान भी ज्यादा हुआ। जलजले के माहरीन मुतासरा इलाके पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि फोन विसिस भी दिन रात निगरानी का काम जारी रखे हुए है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने खबरदार किया है कि जो कोचिंग सेंटर लाजमी हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत जाब्ता जाति कानून मुतारिफ कराएगी ताकि कोचिंग सेंटरों की सख्त निगरानी, ज्यादा जवाबदही और तलबा की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला ने तलबा से अपील की कि अगर उनकी कोचिंग सेंटर में हिफाजती इंतजामात में कोई कोताही या लापरवाही हो तो वो इसकी इत्तला ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए हुकूमत को दें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत मकानात की फेरिस्त साजी और गिनती का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। ऐसा करने वाला ये मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पहले अजला में से एक बन गया है। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई ओकिमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
6: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम ने मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहायश के लिए जरूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतजाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वह तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतादिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजवेला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, तकनीक ने हमारे पढ़ने लिखने के ढंग को पूरी तरह बदल दिया है। आज का लेखक सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ब्लॉग्स, किंडल और ई बुक्स के जरिए सीधे हमारे स्मार्टफोन तक पहुंच रहा है। इसी बदलते दौर की नब्ज को टटोलने के लिए लीजिए सुनिए ई साहित्य की पठनीयता, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं प्राचार्य और साहित्यकार डॉ. देवेंद्र देव, युवा साहित्यकार सुश्री रश्मि ममगाई, शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार और युवा साहित्यकार श्री आर.डी. गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं श्री आर.डी. गौतम।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अतीत के तमाम अनूठी आवाजों को सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हम आप सभी के विचार जानेंगे और ये देखेंगे कि ये जो ई साहित्य है आखिर ये है क्या। और चलते हैं आदरणीय रश्मि ममगाई जी की ओर, ये ई साहित्य क्या है हमें समझाएं जरा।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ई साहित्य साहित्य का ही डिजिटल स्वरूप है। जहां पहले हम कागज पर अक्षरों के माध्यम से साहित्य को ग्रहण करते थे, वहीं अब हम अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर उसे पढ़ सकते हैं। ई साहित्य की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है।
1: जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ई साहित्य की पठनीयता की संभावनाएं हैं आखिर वो क्या क्या है, हम चलते हैं डॉक्टर देवेंद्र देव जी की ओर, आपके विचार क्या है।
3: जी, ई साहित्य साहित्य का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसकी शुरुआत 1950 के आसपास से मानी जाती है। 1960 में एक ग्रुप था सिएटल ग्रुप के नाम से, उस ग्रुप ने कोशिश की कि जो डिजिटल फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो डिजिटल फॉर्म आए ताकि उसकी पठनीयता हर जगह अवेलेबल हो सके। और फिर वो चलते चलते 70-80 के दशक में थोड़ा और फला फूला और आज हमारे सबके हाथ में ई साहित्य उपलब्ध है। सबसे बड़ी इसकी खासियत है एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी कि जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं।
1: आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी की ओर चलता हूं और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी,
4: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ई साहित्य के और भी रूप जो दिखाई देते हैं जैसे ई बुक्स है, ई ऑडियो है, ब्रॉडकास्ट आजकल चल रहा है, इसके अलावा ब्लॉगिंग होती है। उसका फायदा ये होता है कि जैसे सपोज किसी साहित्यकार ने कोई साहित्य लिखा और कोई उसी की तरह प्रबुद्ध कोई साहित्यकार है या कोई उसका पाठक है, वो उस साहित्य पर अपनी कोई टिप्पणी देना चाहता है तो वो ब्लॉगिंग के जरिए पुस्तक पर अपनी टिप्पणी दे सकता है। उसका फायदा ये होता है कि सामान्य जो पाठक है, जो भी उसने पढ़ा नहीं है, उसके पास एक पृष्ठभूमि होती है उस साहित्य को पढ़ने से पहले। तो ये तो इसके अलग अलग रूप है। जब हम छोटे थे तो हम कहीं यात्रा पर निकलते थे, पिताजी हमारे कहते थे बेटा आप कुछ बुक्स रख लो रास्ते में पढ़ लेना, दो या तीन बुक रख लेते थे। जब से ये साहित्य का कॉन्सेप्ट आया है तो आप एक फोन पर ही हजारों बुक रख सकते हैं और अलग अलग राइटर के बुक रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो साहित्य है वो सर्वसुलभ हो गया, सब उसको कहीं भी किसी जगह भी पढ़ सकते हैं और किसी प्रकार का साहित्य पढ़ सकते हैं। अगर मुझे मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना है, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ूं या किसी और, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, किसी भाषा का साहित्य में पढ़ सकता हूं। दूसरी इसकी संभावना बहुत अच्छी हुई कि बहुत सारी ई बुक्स में क्या होता है, साहित्य के साथ साथ एनिमेशन भी चलता है। तो साहित्यकार जो बताना चाह रहा है अपने विषय वस्तु को, उसको आप एनिमेशन के फॉर्म में उसे महसूस कर सकते हैं। तो उससे पाठक को उत्सुकता भी बनती है और रोचकता भी आती है। और एक इस तरह से ऑडियो बुक है, आप अगर पाठक पढ़ना नहीं चाहता तो वो एक ऑडियो चला करके उसे सुन सकता है। तो इस साहित्य ने साहित्य को सर्वसुलभ बना दिया, रोचक बना दिया और पाठक को उत्सुक किया ताकि वो लगातार उस पर अपनी जानकारी देता रहे। इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ तो यहाँ पढ़ सकता हूँ, मैं किसी भी जगह जाता हूँ वहां पर ही 2 मिनट में मुझे लगता है मैं फोन पर या अपने लैपटॉप पर या आईपैड पर उसको देख सकता हूँ या सुन सकता हूँ। तो इससे आपकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसके चलते सर्वसुलभ हो गया है।
1: तो जो ई बुक्स हैं इन्हें हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हैं, पाठक इससे अच्छी तरह से अवगत हैं। ई पब के जरिए, मोबी लिंक के जरिए और किंडल पर इन्हें अच्छी तरह से भली भांति पढ़ा जा सकता है। अब हम चलते हैं आदरणीय रश्मि ममगाई जी की ओर कि ये जो ई साहित्य है किस तरह से ये हमारे पाठकों के लिए उपलब्ध है, किस तरह से इसकी संभावनाएं और अधिक हो सकती हैं।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो पुस्तकें थी उनको अगर हमें पढ़ना है तो हमें बहुत खर्च करना पड़ता था।

0: उन पुस्तकों के लिए, और बहुत सारी पुस्तकें उसके बाद भी दुर्लभ होता था प्राप्त करना, हर किसी के बस में नहीं था। लेकिन अब जब से ई साहित्य हुआ है तो हम सिर्फ एक मोबाइल के जरिए बहुत अधिक खर्च न करते हुए अपने पसंदीदा लेखकों को और उन पुस्तकों को भी जिनका मिलना दुर्लभ है, या इसके अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी हम आराम से और कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम घर में हो, बस में हो या सफर में हो, कहीं पर भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये ई साहित्य की बहुत अधिक संभावनाएं हैं इसमें।
1: ज्ञान का तो दायरा बहुत बड़ा होता है, वो क्या पता आज हमने पढ़ा समझ में 2 महीने बाद आएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो ई साहित्य में पर्यावरण का बचाव भी होता है, क्योंकि पुस्तकों को छापने के लिए कागज की आवश्यकता होती है, और कागज निर्माण में आप सभी जानते हैं कि पेड़ों को काटकर ही कागज तैयार किया जाता है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये ई साहित्य पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि डॉक्टर देवेंद्र देव जी, इस आसानी के बारे में कोई और लाभ आपके नजर में आता हो तो आप हमें समझाने का प्रयास करें।
2: जी, जैसा कि अभी ज्ञानेंद्र जी ने बताया भी था कि किंडल और लैपटॉप में, इनमें हम जो ई साहित्य हमें प्राप्त होता था, वो सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया है वो मोबाइल ने पाया है, मल्टीमीडिया ने। जब से मोबाइल में ई साहित्य आया है तब से वो सभी के हाथ में आ गया। तो आपके पास वैसे एक मोबाइल होना चाहिए, और ममगई मैम ने भी बताया है कि इतनी एक्सेसिबिलिटी है उसमें, आप किसी भी राइटर को, उसकी कोई भी कविता, उसका कोई भी लेख, लेखन आदि सब ले सकते हैं। और जहाँ तक रोचकता की बात है तो हाइपर टेक्स्ट में और मल्टीमीडिया में एनिमेशन के द्वारा, और ये जो इसका एक सबसे बड़ा जो लाभ है वो है ऑडियो बुक का। वो लोग जिनकी नज़र कमजोर है या जो बाकी कई कारणों से पढ़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते, तो ऑडियो बुक के द्वारा भी वो उस साहित्य का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो ये ई साहित्य की एक बड़ी देन है,
1: क्योंकि हम कोई कार्य करें और उस कार्य में कोई चुनौतियाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो ई साहित्य की पठनीयता है, पाठकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए हम बढ़ते हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी की ओर।
3: एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब आप पुस्तक ढूंढते हैं, जैसे कोई क्लासिकल टेक्स्ट है उसका जब अनुवाद किया जाता है तो आपको ये पता नहीं चलता कि इसका अनुवाद सही है कि नहीं, कुछ कुछ दिक्कतें हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें प्रमाणिक अनुवादित पुस्तक का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो सबकी समझ में आ जाए। क्योंकि अनुवाद करते समय कई बार अनुवादक त्रुटियां कर देते हैं, उसके चलते वो बोधगम्यता उसकी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए प्रमाणिक पुस्तकों का चयन करना एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए भारत सरकार की कुछ योजनाएं भी हैं जिसका मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें पीएम ई विद्या करके प्रोग्राम चलता है। विशेषता को कि हमारे सुनने वाले पाठक जो है वो स्कूलों में भी पढ़ते होंगे, तो छोटे बच्चों के लिए जो डिजिटल ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं या ऑन एयर जो बहुत सारे एजुकेशन के प्रोग्राम हो, ई विद्या में निकालते हैं। इस तरह से दीक्षा प्रोग्राम है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकों का पूरा डिजिटल फॉर्म में आपको दीक्षा के प्रोग्राम पर मिल जाता है। इस तरह से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, स्वयं के कुछ प्रोग्राम है जिस पर हम एक प्रमाणिक साहित्य को पढ़ सकते हैं। इस तरह एनसीईआरटी बहुत सारे काम करती है ई साहित्य पर। एक और बड़ी चुनौती यह है कि जब हम लंबे समय तक डिवाइस के साथ में कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो जो पाठक का जब स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है तो उसकी आंखों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ई साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है और डिवाइस के हम ज्यादा समय तक कॉन्टेक्ट में है, उससे उस पाठक की आंखों पर, उसके मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इसकी चुनौती है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अति आत्मनिर्भर हो गए हैं ई साहित्य और साहित्य जो ई कंटेंट हम उपलब्ध है, तो उसे अति निर्भरता से भी बचने के लिए हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। एक और इसके साथ में मैं जोड़ देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव होता है तो आप अपने विचार दे सकते हैं, इंटरैक्टिव नहीं होता तो फिर आपके कल्पनाशीलता पर थोड़ी सीमाएं निश्चित हो जाती हैं, फिर हम उसी के आसपास ही देखते हैं। तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस साहित्य का जितना लाभ हमें मिले उतना अच्छा है, पर थोड़ी कुछ कुछ सीमाएं उसको हम कैसे सीमित कर सकते हैं, उसको कैसे हम सीमाओं को कम कर सकते हैं, इस पर हमें भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए ताकि पाठक को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा और उसका लाभ हो पाए।
1: हम जानने का प्रयास करते हैं कि बौद्धिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम जानते हैं आदरणीय रश्मि ममगई जी से।
0: जी सर, प्रथम बौद्धिक स्तर पर, जैसे पहले हम पुस्तकें पढ़ते थे, अपनी कल्पनाशीलता में हम थोड़े दौड़ाते थे, लेकिन अब जब हमारे सामने सब कुछ सहज रूप में उपलब्ध है बच्चों के पास, खास करके जब उनके पास सब कुछ सहज रूप में उपलब्ध है तो वो अपने दिमाग का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें सब कुछ वहीं पर मिल जाता है, एक क्लिक पर मिल जाता है, तो वो उतनी आसानी से वो चीजें प्राप्त हो जाती है और इससे हमारी जो याद करने की क्षमता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम निरंतर एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं और लगातार फोन को देखते रहते हैं।

0: लैपटॉप को या कंप्यूटर को देखते रहते हैं तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं इसमें हो सकती है। माइग्रेन जैसे सर ने बताया, हो सकता है आंखों की परेशानी हो सकती है या सर्वाइकल हो सकता है, ऐसी कई समस्याएं हमें हो सकती है।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। क्या उवर्तनी जैसी समस्याएं भी कभी हमें आती हैं डॉक्टर देवेंद्र देव जी?
2: जी, जो एक कंसेप्ट है उसमें कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा पढ़ा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा है। और जो ई साहित्य है वो कहीं ना कहीं हमारे लिखने को प्रभावित करता है। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि इसने सीमाओं को तोड़कर विस्तार दिया है साहित्य को। आज यदि विश्व के किसी भी कोने में बैठा कोई हिंदी भाषी व्यक्ति मेरे किसी विचार को या पढ़ना चाहे, यहाँ किसी भी लेखक को पढ़ना चाहे, तो वो आसानी से पढ़ सकता। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसमें बड़ी महती भूमिका आई साहित्य की। दूसरा ये भी है कि समय के साथ साथ इसकी विश्वसनीयता कम भी होती है। जो भी ई साहित्य उपलब्ध है उसमें ऐसे कई टूल्स होते हैं कि जिसके द्वारा मूल लेखक के लेखन में अंतर पैदा किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके उपलब्धता के साथ साथ में एक अविश्वसनीयता भी पैदा होती है। और इसी के साथ यदि हम देखें तो जो स्क्रीन टाइम है वो निश्चित तौर पर उस पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसके साथ साथ जो साहित्य का एक असली आनंद होता है ये उसको डिस्टर्ब करता है ई साहित्य। मैं अभी मोबाइल में कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, कोई किसी का काव्य पढ़ रहा हूँ, तुरंत कोई मैसेज आता है या कॉल आती है तो वो उसके तारतम्य को डिस्टर्ब कर देती है। और साहित्य का आनंद तभी लिया जा सकता है कि जब वो पूरे आप फोकस होकर एक तारतम्य में पढ़ें। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं कि जिनसे इनको गुजरना है विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी से जानना चाहूंगा कि ये पुस्तक के साथ जो आत्मीयता होती थी, क्या उसमें कोई कमी आई है, क्या उसका क्षरण हुआ है? क्योंकि जब हमारे सामने किताब आती मुंशी प्रेमचंद की किताब, तो मुंशी प्रेमचंद का चित्र सामने आने लगता है, तो क्या उस आत्मीयता में कुछ कमी आई है डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी?
3: अभी ई साहित्य को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना और अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध भी करना है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर स्कूलों में जो पहले आईपैड दिए थे उसे वापस ले लिया, उनको पुस्तक दे दिया। वो इसलिए थी कि उनको ये महसूस हुआ कि भाई विद्यार्थी जो है वो जो पुस्तक का जो रियल सेंस होता है, जो उसको टच करके महसूस करना, देखना चित्र को, जो देखना उसको देख करके उसी तरह से फील करना, तो वो जो उसकी जो बाधा आ गई थी उसको दूर करने बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर उसको वापस लेकर उनको पुस्तकें दी हैं। तो अब हमारे देश में भी इस तरह की चुनौतियां भी इस साहित्य को फेस करनी पड़ेंगी क्या? तो वो जो कहना है संचालक महोदय का कि वो जो बाधा उत्पन्न हुई है पाठक और पुस्तक के बीच में, वो तो है, उसको कुछ कम करने का प्रयास जरूर किया है, कुछ एनिमेशन के थ्रू, कुछ ऑडियो के थ्रू, पर अभी वो तारतम्यता जो पुस्तक और पाठक के बीच में होती है अभी उस तरह से स्थापित नहीं हो पाती है, ये आप हम सब महसूस करते हैं। दूसरे जो अभी जिस पर चर्चा चली उस पर कि शारीरिक समस्याएं तो हैं, चाहे आंखों की समस्या हो या माइग्रेन वगैरह या सर्वाइकल वगैरह की समस्या, बहुत लंबे समय तक आप जब इस साहित्य को पढ़ते हैं ये समस्याएं तो हैं। मानसिक चुनौतियां उससे बड़ी है, जैसे एकाग्रता का अभाव हो गया, एक साथ हम कई सारी पुस्तकें पढ़ते हुए एक साथ कई सारी चीजें कर रहे हैं, हमें अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कभी कोई फूड डिलीवरी का है, कभी किसी का है, कभी किसी का नोटिफिकेशन आपके, तो आपकी जो एकाग्रता उसमें कमी आ रही है, उसको भी थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कि आप कुछ समय तक पुस्तक को डाउनलोड कर लें और नेट वगैरह को ऑफ कर दें तो वो जो नोटिफिकेशन का आना है वो थोड़ा कम हो सकता है। पर क्या हर पाठक उस तरह से अपने आप को इंटरनेट से दूर रख सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो एक तो ये, दूसरा कि हमें ये भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की पहुंच स्मार्टफोन किंडल तक नहीं है, और बहुत सारे ऐसे इलाके भारत में हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वहां पर ई साहित्य अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर पाएगा? ये एक प्रश्न हमारे सामने जरूर है कि जो पाठक ऐसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, एक ऐसा वर्ग जिसके पास में स्मार्टफोन परचेज करने की पावर नहीं है, तो ई साहित्य को किस तरह से पढ़ सकता है? उसको कुछ काउंटर भारत सरकार के कुछ योजनाओं ने किया है कि आप कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो कुछ बिल्कुल कुछ चुनौतियां तो हैं, पर उनको अगर हम सही से कैटर करें तो कुछ तो कम किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता पर कम जरूर किया जा सकता है।
1: और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध हैं जिनसे पाठक लाभान्वित हो सकते हैं?
3: जैसा मैंने पहले चर्चा की थी कि पीएम ई विद्या करके प्रोग्राम चलता है भारत सरकार का, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम उसको देख सकते हैं। उनका एक इनिशिएटिव है वन क्लास वन टीवी चैनल, ऐसा एक प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखिए जब हम एक प्रमाणिक स्रोत में ई साहित्य को देखते हैं तो उसका जो ज्ञान होता है वो एक प्रमाणिक स्रोत से हमें मिलता है, तो जो एक मिसकंसेप्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसी तरह से और एक प्रोग्राम चलता है भारत सरकार, दीक्षा प्रोग्राम है, जो कक्षा एक से तक की जो ई पुस्तकें हैं वो उपलब्ध हैं, उसमें आप QR कोड के जरिए आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ई बुक्स भी हैं, स्वयं के प्रोग्राम हैं, MOOC प्रोग्राम

0: चलते हैं स्वयं, आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्स मिलेंगे उसमें। आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं, किसी एक विषय पर करना चाहते हैं, उस विषय के अंदर भी आप कुछ, जैसे IKS आजकल जिस पर बातचीत करते हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, तो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा में गीता में स्पेशली पढ़ना चाहते उसके लिए भी MOOC में कोर्स है। तो भारत सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव स्वयं प्लेटफॉर्म पर हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको बहुत सारी ई पुस्तकें, ई पत्रिकाएं और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जिस जो आपको लगभग फ्री में, सिर्फ आपके पास में नेट होना चाहिए और एक डिवाइस होनी चाहिए जो नेट को एक्सेस कर पाता हो, आप बड़े इजी तरीके से देख सकते हैं। ये सब भारत सरकार के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, क्योंकि NCERT लगातार विद्यालय शिक्षा पर काम करे तो लगातार वो ऐसे प्रोग्राम तैयार कर रही है जहां पर ई बुक्स वगैरह उपलब्ध हो। उनकी ई पाठशाला एक प्रोग्राम चलता है, उन्हीं का ही एक प्रोग्राम है दीक्षा, जो विद्यार्थी को कक्षा 1 से 12 तक ई पुस्तकें उपलब्ध कराता है। उसमें एनिमेटेड ई बुक्स, फ्लैप बुक्स वगैरह भी उपलब्ध। तो इसके अलावा ई टेक्स्ट बुक चलती हैं, शिक्षक के लिए हैंडबुक भी उपलब्ध है NCERT में, कि जैसे कोई शिक्षक अभी नया रिक्रूट हुआ या उसको लगता है कि मुझे कुछ नया बदलाव करना है तो उसके लिए हैंडबुक वगैरह भी उपलब्ध है ई फॉर्म में, उसको पढ़कर के आप अपने पेडागोजी को इन्हेंस कर सकता है। जैसे उनका एक प्रोग्राम चलता है मूलभूत साक्षरता के लिए, जादुई पिटारा प्रोग्राम चलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भारत सरकार के प्रोग्राम है और NCERT ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर है, तो कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है इसलिए हम सभी पर बातचीत नहीं कर सकते, पर बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार के चलते हैं।
1: मैं ये जानना चाहूंगा आदरणीय रश्मि मुमगाई जी से कि ये जो ई पठनीयता है ये और कितनी सार्थक साबित हो सकती है हमारे पाठकों के लिए और जो हमारे नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए।
2: जी बिल्कुल, ई साहित्य का हमारे नए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि नए बच्चे शायद पुस्तक को पढ़कर उतना रुचि से नहीं पढ़ पाते जितना अगर उन्हें एनिमेशन के द्वारा, वीडियो के द्वारा उनको सिखाया जाता है तो उसे जल्दी ग्रहण करते हैं। और साथ ही जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए या शोधकर्ता है उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपने उपयोग की सामग्री एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, तो इसका वह पूरा फायदा उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ये फोन नहीं है, ये हमारा फोन पूरी एक लाइब्रेरी है। तो सब आपके हिसाब से
3: ई साहित्य को जितना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, आप देखेंगे कि जो रिसर्च प्रोग्राम है वो इसके द्वारा बहुत इजी हो गए हैं। डाटा कलेक्शन, किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित जानकारी, वहाँ के कल्चर के, वहाँ के लिटरेचर के, सबकी जानकारी आपकी एक क्लिक पर उपलब्ध होती है। तो जितना इसको बढ़ावा मिलेगा और आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी, मेरी उम्मीद भी है, बस ये है कि धीरे धीरे जब से ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा तो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहे और डाइवर्सिटी तो साहित्य में रहती है, उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो आपकी क्लिक पे ना सिर्फ आपकी भाषा बल्कि सभी भाषाओं का और सभी क्षेत्रों का साहित्य एक क्लिक पर होगा, तो एक बेहतरीन प्रयास है और एक बेहतरीन आयाम भी है।
1: डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार,
0: बहुत सारे अच्छे जो नवोदित लेखक हैं उनकी कृतियां भी आती हैं, बस उस तक हम एक्सेस कैसे कर पाए इस पर हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। उससे दोनों को, जो पाठक है और जो लेखक है, ये साहित्य दोनों के लिए उतनी समान रूप से उपयोगी है। पाठक को एक ही क्लिक पर उससे ढेर सारा साहित्य अलग अलग विषयों पर मिलता है, लेखक को जब वो कंटेंट अपना अपलोड करता है तो उसको एक बड़ा पाठक वर्ग मिलता है जो अपनी रुचि से आपके साहित्य को पढ़ता है। तो उसमें जब इंटरैक्टिव फॉर्म में होता है तो आपको इंटरेक्शन भी मिल जाता है, तो आपको जो आने वाली कृतियां हैं उनमें आप उसका कुछ सुधार कर सकते हैं। तो ई साहित्य के थ्रू दोनों स्टेक होल्डर, पाठक और लेखक, दोनों को पर्याप्त सुविधा हो रही है।
1: बिल्कुल, और ई साहित्य का जो लाभ है वो हमारी नई पीढ़ी ज्यादा उठा पा रही है। डॉक्टर देवेंद्र देव जी, आपके विचार से अभी अगर हम देखें कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं या रिसर्च वर्क चल रहे हैं, हम उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं ई साहित्य के माध्यम से?
3: एक तो जो एक्सपर्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करके, और उसके साथ साथ जो अवेलेबिलिटी है, पहले ही डॉक्टर साहब ने, ज्ञानेंद्र जी ने को कहा था कि यदि हम कथा कहानियों की बात करें तो जिन पे सबसे ज्यादा लिखी जाती है वही इससे वंचित रह जाते हैं। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा लाभ है, व्यक्तिगत रूप से भी मैं बताऊं, जो हम लिखते थे पहले इंतजार करते थे कि कहीं उसे पेश करने का, आज मैं भी लिखता हूं तो जो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मुझे 10-20 लोगों को इकट्ठा करना है, उनके बीच में कुछ सुनाना है, मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप और जो आपके इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी पर भी अपलोड कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी हुई है कि जो मल्टीमीडिया में आपके पास में मोबाइल है, आप अपना विचार आया हुआ है तो आप उसे तुरंत लिख भी सकते हैं। ये एक बड़ी जो बात है कि पहले आपको एक माहौल चाहिए था, किताब, कॉपी, पेंसिल, वो सब, अब वो सारी दूर हो गई हैं, तो केवल आप वहाँ पर लिख सकते हैं और इसको सब में प्रसारित भी कर सकते हैं। तो

0: निश्चित तौर पर ये सभी के लिए लाभकारी होगा।
1: अगर हम पिछले समय को याद करते हैं, अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि फला रचनाकार ने, फला कवि ने इतनी खूबसूरत पुस्तक निकाली है, तो वो पुस्तक जानकारी तो हमारे पास आ जाती थी, लेकिन पुस्तक पता नहीं कितने दिन बाद हमें उपलब्ध होती थी। आजकल जैसे ही पुस्तक अपने मूर्त रूप में आती है, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो उसकी डिजिटल कॉपी भी प्रसारित कर देते हैं अलग अलग माध्यम से, तो उनका एक फायदा जो हुआ है वो पब्लिशर्स के चक्कर काटने का जो थकान है, परेशानी है, वो कम हो गई है। अब रचनाकार अपनी रचनाएं लिखता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो डाल देता है, न सिर्फ शब्दों के रूप में, अपनी आवाज के रूप में। कई बार डॉक्टर देवेंद्र देव जी अपनी रचनाओं को नाटक के रूप में भी लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, तो ये मल्टीमीडिया का फायदा है। इससे और क्या क्या फायदा हो सकता है हमारे पाठकों को आदरणीय रश्मि मैम?
2: इसमें ये फायदा है, जैसे पहले अगर हमें कोई किताब चाहिए होती थी तो हम कई लाइब्रेरी के चक्कर लगाते थे, खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, और उसके बाद घंटों लाइब्रेरी में अपनी अपने पसंदीदा लेखक की पुस्तकें ढूंढते थे, फिर उसे या तो वहां बैठकर लगातार पढ़ना होता था या उसे घर ले जाते थे। लेकिन जब से ई साहित्य आया है तो हम सिर्फ एक छोटे से डिवाइस के माध्यम से, चाहे हम पहाड़ों में रहते हों, चाहे हम रेगिस्तान में रहते हों, चाहे हम नदी के किनारे किसी ऐसे स्थान पर रहते हों, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए वह बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है और अपनी पसंदीदा लेखकों को पढ़ सकता है।
1: बिल्कुल, जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने एक बुकिस टॉपिक पाठ पढ़ा था जिसमें आदरणीय आर के नारायण जी ने इस मुसीबत को बढ़िया से बयां किया उन्होंने कि किताब दे तो देते थे लेकिन आती नहीं थी, और उनका ये अनुभव कई बार उनके साथ हुआ। लेकिन आज ई साहित्य का जमाना है, आज तकनीकी का जमाना है, और आज क्लिक का जमाना है कि आप क्लिक करो रचना आपके सामने, आप स्क्रॉल करो तो लाइब्रेरी आपके सामने। तो ये सबसे बड़ा जो इसकी सकारात्मकता है, मैं कहूँगा ई साहित्य की जो सार्थकता है वो इसी में है कि एक भरपूर लाइब्रेरी, हजारों किताबों की लाइब्रेरी आपके एक फोन के ऊपर उपलब्ध है, एक क्लिक के ऊपर उपलब्ध है, और ये हमारी नई पीढ़ी की नहीं पुरानी पीढ़ी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। पाठकों के लिए ये निश्चित तौर पर आज की ये चर्चा है ये सार्थक साबित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप तीनों का इस चर्चा में अपने बहुमूल्य विचार देने के लिए बहुत बहुत आभार। फिर कभी हमारी आपसे साहित्य के ऊपर बात होगी। इसी के साथ साथ सभी को नमस्कार।
3: ई साहित्य की पठनीयता, संभावनाएं और चुनौतियां, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्राचार्य और साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र देव, युवा साहित्यकार सुश्री रश्मि ममगाई, शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार और युवा साहित्यकार श्री आरडी गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे श्री आरडी गौतम। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां, प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार श्री रोहित रोज।
4: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अंबेडकर पार्क जनता फ्लैट्स दिल्ली में एक अविस्मरणीय साहित्यिक आयोजन किया गया। साहित्य उपवन रचनाकार एवं लाइट ऑफ योगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कवि सम्मेलन न केवल योग की महत्ता को रेखांकित करने वाला रहा, बल्कि इसने साहित्य और स्वास्थ्य के अद्भुत समन्वय से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री दिनेश कुमार ने किया। मंच पर काव्य पाठ के लिए प्रख्यात कवियों की उपस्थिति ने वातावरण को साहित्यिक गरिमा से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर साहित्य उपवन रचनाकार के कवि आर डी गौतम विनम्र सहित श्री राजवीर सिंह कमल, श्रीमती विशाखा बौद्ध, श्री दीपक नवरंग और श्रीमती भावना सेठ ने अपनी काव्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को योग के प्रति प्रेरित किया। लगभग 100 लोगों की उपस्थिति में यह आयोजन सम्पन्न हुआ। दूसरी तरफ 21 जून को ही साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म को समर्पित त्रैमासिक ई पत्रिका भाव निनाद स्पंदन प्रवाह के प्रवेशांक का भव्य विमोचन ट्राइटेंड ऑफिसर्स मेस दिल्ली कैंट में संपन्न हुआ। पत्रिका में भारत के 13 राज्यों के साथ साथ अमेरिका के रचनाकारों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों की उत्कृष्ट रचनाएं सम्मिलित हैं। मुख्य अतिथि श्री विकेश सेठी और अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेणु अग्रवाल रहे। पत्रिका का विमोचन संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव सोसिल्ले और प्रोफेसर डॉक्टर संध्या वात्सायन द्वारा किया गया। प्रधान संपादिका श्रीमती ममता झा रुद्रांसी ने कहा कि पत्रिका का लक्ष्य साहित्य को समाज की चेतना से जोड़ना और नवोदित लेखकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना है। समारोह का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन स्नेह भोज के साथ संपन्न हुआ। यह पत्रिका हिंदी साहित्य के संवर्धन में एक नई और सशक्त कड़ी के रूप में देखी जा रही है। 22 जून 2026 को दिल्ली के नजफ

0: रोड स्थित उत्सव ग्रीन में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका सफल व प्रभावशाली संचालन नोएडा की सुप्रसिद्ध कवित्री अंजना जैन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत नमोकार मंत्र और सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद बाल कवित्री सानवी जैन ने मनमोहक प्रस्तुति दी। सुनहरी लाल तुरंत और रोश रोशन ने अपनी चुटीली व व्यंग्यात्मक रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय ने श्रृंगार रस के गीतों और कुमार राघव ने अपने प्रभावशाली मुक्तकों से वाहवाही बटोरी। अंत में संचालिका अंजना जैन ने जैन दर्शन, गिरनार संरक्षण और श्रृंगार पर सशक्त मुक्तक पढ़े। यह कवि सम्मेलन देर रात तक चला और श्रोता काव्य रस में सराबोर रहे। इस विराट कवि सम्मेलन ने दिल्ली वासियों को साहित्यिक संस्कृति से जोड़ने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया। 22 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के स्पीकर हॉल में रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के तत्वावधान में एक भव्य काव्य संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 1857 की क्रांति की महानायिका अमर बलिदानी महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति को समर्पित था। कार्यक्रम में लगभग 25 प्रतिष्ठित कवियों और कवित्रियों की उपस्थिति रही। मंच से पढ़ी गई ओजस्वी कविताओं ने पूरे हॉल में देशभक्ति का वातावरण बना दिया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महारानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम को नमन किया। संस्थान के प्रयासों से आयोजित यह काव्य गोष्ठी न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव रही, बल्कि नई पीढ़ी में देश प्रेम के संस्कारों को जगाने का भी सफल माध्यम बनी। 24 जून 2026 को दिल्ली के शास्त्री नगर स्थित APV स्टूडियो में जनाब नईम हिंदुस्तानी के संयोजन में जश्न हिंदुस्तान ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में लगभग 36 प्रख्यात कवियों और शायरों ने शिरकत की। मंच से सुनाई गई रचनाओं ने हिंदी और उर्दू के साझा सांस्कृतिक वैभव को प्रस्तुत किया। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव रहा, जिसने दिल्ली की साहित्य धारा को अपनी ओजस्वी और मधुर पंक्तियों से गुंजायमान कर दिया। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल बना। 24 जून हिंदी साहित्य के पटल पर एक अविस्मरणीय दिन अंकित हुआ, जब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में कविता संग्रह यशोधरा से संवाद पर एक गहन और वैचारिक चर्चा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध रहा, बल्कि नारी चेतना और मानवीय संवेदनाओं के धरातल भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ। कार्यक्रम की बागडोर जानी मानी साहित्यकार श्रीमती माया पारिजात के हाथों में थी। उनके ओजस्वी और सारगर्भित संचालन ने चर्चा को एक विशेष ऊंचाई प्रदान की। इस साहित्यिक विमर्श में प्रबुद्ध साहित्यकारों की उपस्थिति ने गरिमा को द्विगुणित कर दिया। चर्चा में भाग लेने वाले प्रमुख हस्ताक्षर रहे सर्वश्री संगीता गुप्ता, अलका त्यागी, रेखा सेठी, सुमन केसरी, हर्ष बाला शर्मा एवं उषा मुंशी। यशोधरा से संवाद में यशोधरा के चरित्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने का जो प्रयास किया गया है, उसकी सभी वक्ताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे काव्य का यह संग्रह परंपरा और आधुनिकता के बीच के सेतु को दर्शाता है। वक्ताओं ने यशोधरा के त्याग, स्वाभिमान और उनके भीतर के द्वंद को कविता के माध्यम से जिस प्रकार अभिव्यक्त किया, उसे साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। 27 जून 2026 को क्रिएटिव अनलॉक द्वारका में आगमन संस्था द्वारा आयोजित समागम बत कही देखने को मिला, जिसमें साहित्य के विविध पक्षों पर एक सार्थक संवाद हुआ। श्री निशांत जैन के कुशल संयोजन में वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों ने समकालीन साहित्य के भविष्य पर चर्चा की। इस आयोजन ने डिजिटल युग में साहित्य की प्रासंगिकता और समाज के प्रति रचनाकारों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक अनुभव रहा।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे श्री रोहित रोज। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे अतिथि। शीर्षक है चंद्रशेखर भिड़ा, कड़ी संख्या 2 भेंटकर्ता और प्रस्तुति काजल सूरी की है।
3: श्रोताओं, हमारी पिछली कड़ी में हमारे साथ थे जाने माने टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर चंद्रशेखर भेड़ा जी। आज इस कड़ी में एक बार फिर से उनके अनुभवों, संघर्षों और रचनात्मक यात्रा को हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में। तो चंद्रशेखर भेड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से आए।
4: तो मैं कभी भी प्रेडिक्टेबल काम

0: करने के आदि नहीं रहता.
1: फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी आर्ट वर्क. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपके करियर का सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा रहा है?
0: हाँ, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है कि क्या है कि जब हर छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट में आप जी जान डाल के काम करते तो उसका अनुभव अविस्मरणीय होता है. मैं अगर आपको कहूँ, सबसे शुरू में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर IGNC में, दिस आई एम टॉकिंग 1989 में, IGNC में वर्ल्ड कैलीग्राफी एग्जीबिशन हुई थी. और ये प्रोफेसर आर के जोशी जो थे वो IDC में प्रोफेसर थे. तो मैंने राजीव सेठी के साथ एक साल काम करने के बाद फिर मैं वहां से जब निकल गया, तब मुझे किसी ने बताया आर के जोशी को जाके मिलो, वहां उनके लिए कुछ कर सकते हैं. मैं जाके उनको मिला तो उन्होंने मेरे पास वो वर्ल्ड कैलीग्राफी एग्जीबिशन आकारा की लोगो रखी. बोले इस लोगो के साथ खेल करके अगर कुछ बना सकते हो तो कल सुबह मुझे ड्रॉइंग दो, मैं आपका प्रोजेक्ट अप्रूव कर दूंगा. मैंने रात भर बैठ करके पेंसिल्स का स्केच बनाया. दिस इज ओनली सेकंड ईयर ऑफ माय प्रोफेशन. वहां जाकर दिखाया तो बोले यस दिस इज इट. उन्होंने भाई ये है, लेकिन एक मेरी कंडीशन है, आपने जिस तरीके का स्केच बनाया बिल्कुल हुबहू वैसा ही तुम्हारा पीस होना चाहिए, काम होना चाहिए. और वो जो मैंने पेंसिल का जो पेंसिल के एक रेशे के टेक्सचर होते हैं, उस टेक्सचर को मुझे कपड़े में लाना जरूरी था. अब वो दैट वाज अ क्रिएटिव चैलेंज, दैट वाज टेक्निकल चैलेंज. तो मैं वहां से NID गया और 20 दिन मैंने लूम के ऊपर काम किया और खुद मैंने वो पूरी दरी बुनी जो 2 फुट बाय 6 फुट की थी. उसके अंदर आकारा लिखा हुआ था और अलग अलग धागों का मिश्रण करके उसके अंदर अलग अलग शेडिंग करके बनाया. आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सरसाइज एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट डूइंग इट. और दूसरा चीज क्या था कि आप और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सटाइल डिजाइन जो है उसका जो आवश्यकता समाज में है कि हर एक इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और पहचान बनाने लिए हर एक को अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं. इसका मतलब टेक्सटाइल डिजाइनर को इतनी लगातार नई नई चीजें बनाते रहना जरूरी होता है जो कि ज्यादा पैमाने पे बने और लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके.
1: बिल्कुल.
0: तो ये हो गया बैच प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन का जरूरत. उसी के साथ साथ जब आपको सिंगुलर पीस अगर बनाना है तो वो आर्ट या कला, वस्त्र कला या टेक्सटाइल आर्ट के लिए, फाइबर आर्ट के लिए हो जाता है. तो मेरा विशेष ध्यान फाइबर आर्ट की तरफ भी रहा क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पारंपरिक कलाओं का बहुत बड़ा महत्व है.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: जैसे दो दो तीन तीन गांव मिलकर के एक प्रकार का काम, सारे ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं. सांगाने में जाएंगे सारे ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं. बगरू में जाएंगे सारे ब्लॉक प्रिंटिंग करें. कलमकारी में जाएंगे सारे चित्रकारी करते हैं. बनारस में जाएंगे सारे बुनाई करते हैं. तो हमारे यहाँ कई सारी कम्युनिटीज मिलकर के ये काम करते हैं. तो वो एक अलग दायरा है और उसको भी रखना जरूर. साथ साथ में उनसे भी कुछ अगर नया विशेष काम कराना है जो कि म्यूजियम में रखने लायक हो या कोई बिल्डिंग में रखने लायक हो या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस रखने लायक हो, उसका भी एक अप्रोच अलग होता है. तो मेरी रुचि सिंगुलर पीसेस में ज्यादा रही. मैंने मास प्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी काफी किए, लेकिन जो एक खुद की पसंदीदा जो चीज होती है वो मुझे ये सिंगुलर पीसेस बनाने में रही. तो उस वक्त ये जो पीस बनाया, ये जब आकार एग्जीबिशन में जब रखा तो मुझे बड़ा आनंद आया कि सेकंड ईयर में मैंने एक आर्टवर्क लगा करके इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर दिया. सो दैट वाज अ सिंगुलर परफॉर्मेंस. उसके बाद कच्छ में जब भूचाल आया था
1: जी
0: 2003, उस वक्त फिक्की केयर गुजराती रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट ने मुझे बुलाया. तब तक मैं कई सारे काम कर चुका था, थोड़ा बहुत नाम भी हो गया था. तो मुझे बुलाया कि आपको 5 गांव देते, इन 5 गांव के कारीगरों के साथ आपको काम करना है और इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए आपने इनको मार्गदर्शन करना है क्योंकि उनके लूम टूट गए हैं, उनके घर टूट गए हैं. तो दोबारा उनको
1: रिवाइव
0: करने के लिए, और जब रिवाइव करना ही है तो कुछ नयापन क्यों ना लाया जाए. तो दैट वाज अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो मैं 5 गांव में घूमा तकरीबन 1.5 साल और इन लोगों के साथ बैठ के, इनके साथ समय बिता करके धीरे धीरे धीरे धीरे इनको नयापन लाने की ट्रेनिंग दी. और उसमें से जो चीजें निकली, सौभाग्यवश आज भी कुछ चीजें वो बना रहे हैं. और कहते हैं कि चंदू भाई ए तमारू दियेलू डिजाइन छे और आज पण बने छे. तो सेटिस्फेक्शन वो होता है कि लोग अगर आपने दिया हुआ मार्गदर्शन अगर वो अपने आप पर ले लेते, आत्मसात करते हैं, तो वो एक लंबी दूरी तक असर करने वाला.
1: बहुत खूबसूरत बात कही आपने. उस मुश्किल वक्त में जब भूचाल आया था, वो बहुत फेमस है कि बिल्कुल सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, और आपने फिर से रिवाइव किया अपने आर्ट के जरिए. बहुत खूबसूरत बात कही आपने.
0: तो इसमें और एक चीज थी, क्या था कि इसमें मैंने तकनीकी रूप में भी काफी मॉडिफिकेशन

0: आज वहां से स्टोल एक ट्रेडिशनल उत्पाद बन गया है।
1: तो बहुत सारे आपने जिस तरह से बात की थी, आपने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एग्जिबिशंस की हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में चाहूंगी श्रोताओं को बताएं। और खास तौर पे कहते हैं ना, कलाकार के लिए अवार्ड भी बहुत मैटर करते हैं, एक बूस्ट मिलता है। इन बातों में मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को
0: आपको मजेदार बात बताता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, मैंने आज तक एक भी अवार्ड शो में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मुझे क्या लगता है कि ठीक है अगर आप अवार्ड शो को पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन मुझे ना जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ ना, चाहे वो क्लाइंट हो या चाहे वो कारीगर हो,
1: मुझे लगता है जो अवार्ड सबसे बड़ा होता है वो आपके जो क्लाइंट्स, आपकी जो तारीफ कर जाते हैं, वो सबसे बड़ा अवार्ड है।
0: बिल्कुल, लोग सोचते हैं क्यों तुम नहीं करते, लेकिन मुझे चार लोग जब अपनी उत्सुकता से पूछना चाहते हैं तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, दैट इज मोर देन अवार्ड।
1: बिल्कुल,
0: इफ दे शो इंटरेस्ट इन योर एक्टिविटीज, तब जा करके अवार्ड से ज्यादा बेहतर मुझे लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके एग्जिबिशंस के बारे में जानना चाह रही थी।
0: हाँ, क्या इसमें सबसे पहले एग्जिबिशन तो मैंने वर्ल्ड कैलिग्राफी एग्जिबिशन की थी, उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ल्ड टेक्सटाइल एसोसिएशन का बिनाले हुआ था पुणे में, और वहां पर जफूरजा म्यूजियम है, जफूरजा म्यूजियम, दोनों ने मिलकर के ये बिनाले करा था। तो उनके क्यूरेटर ने मुझे कहा कि आप भी कुछ बनाइए यहाँ के लिए, और उन्होंने 10x10x10 स्क्वायर फीट की जगह बोली, इसमें आप कुछ बनाइए। तब मैंने सोचा कुछ नया करा जाए। आपको शायद आपने कभी देखा होगा जब ब्लॉक प्रिंटिंग होती साड़ी में, तो उस साड़ी को एक सीद लाने के लिए नील में धागा डुबो करके उसको खींच करके निशान बनाया जाता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसको नील डोरी ये कुछ कहते हैं। तो वो जो निशान बनाने का जो वो जो है, और बाद में उसको मिटा दिया जाता है, तो वो एक एंसिलरी सपोर्ट होता है, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ गया और मैंने देखा कि वो जो निशान होता है वो कभी सीधा बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें स्प्लैटर्स होते हैं, उसके अंदर छींटे उड़ते हैं। और एक देखा मैंने कि इसमें सारे निशान सीधे होते हैं, लेकिन उसके स्प्लैटर्स अलग अलग होते हैं। ये बहुत ही गजब की खूबी मुझे नजर आई कि एक ही ग्राफिक्स है जिसके अंदर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी लिव साइमल्टेनियसली। तो मैंने उन स्प्लैटर्स के साथ खेल करके मैंने एक अनुभव बनाया, और इंसानी जो अनुभव है वो बनाया, और उसमें हमारे दिमाग में जो आइडियाज होते हैं, कई सारे आइडियाज होते हैं, वो हम जब अंदर सोचते हैं तो किसी को पता नहीं होता अंदर क्या सोच रहे हैं, और मैंने अंदर की जो हमारी कल्पना है उसको रंगीन समझा है। अंदर में इतने सारे कल्पना है, इतने सारे रंग है, लेकिन जैसे ही आप उसी कल्पना को बाहर लाते हैं या किसी को बताते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दिमाग में होता है तब तक किसी को पता नहीं होता है। तो अंदर में कलर और बाहर में ब्लैक एंड व्हाइट, इस कल्पना सोच करके मैंने शेल बनाया जिसके अंदर बाहर में सारा ब्लैक एंड व्हाइट था और अंदर में स्प्लैटर से मैंने रंग बिरंगा अनुभव कराया। और ऑफ लेट मैं क्या करने लग गया हूँ कि जीवन के, मुझे लगता है मानवीय जीवन इतना रोचक है और इतने हरेक इंसान की एक अलग कहानी होती
1: बिल्कुल है।
0: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि ये मानवीय जीवन को मैं चित्रों के द्वारा कैसे एक्सप्रेस करूं, तो इस उलझन में आजकल मैं लगा हुआ हूं।
1: जी, आपने बात की कि जो ट्रेडिशनल डिजाइनिंग की बात आप कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगी जो आपके डिजाइन्स हैं उनमें भारतीय संस्कृति की झलक भी आप शामिल करते हैं और मॉडर्न भी, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: भारतीय क्या है कि संस्कृति जो है हमारी, उस परंपरा को कायम रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे जितने भी कलाकार है उस परंपरा को कायम रखने का काम बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं, और कई सारे एनजीओ, सरकार का जो भारत सरकार का जो योगदान है इस परंपरा को कायम रखने का, ये बहुत ही बड़ा है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुपुल जयकर, और अभी लैला तेब जी या जया जेटली, इन सारे लोगों ने क्रॉस काउंसिल है, इन सारे लोगों ने इस इन परंपरा को कायम रखने खूब योगदान दिया है। लेकिन ये भी होता है कि पारंपरिक कारीगर जो है पारंपरिक चीजें बनाता है, लेकिन उसको ये भी देखना कि समय के अनुसार उसके काम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग बदल रहे हैं, जनरेशंस नई नई आती जाती है, और नए जनरेशंस की कुछ नई जरूरतें होती है क्योंकि माहौल बदलता है।
1: बिल्कुल।
0: टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना जबरदस्त हो गया है, तो यंग लोगों के दिमाग पर असर कई सारी चीजों का पड़ता है, इसलिए उनकी जो पहचान बनाने की जो एक आवश्यकता है वो अलग प्रकार की हो रही है, और उनकी पहचान बनाने की आवश्यकता में अगर पारंपरिक

0: कारीगर भी अगर कुछ योगदान दे तो उनको उनकी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा,
1: बहुत जरूरी है।
0: दैट इज वेयर समकालीन प्रकार का काम भी करना जरूरी है। और इसी तरह से हर साल 20% बदलते जाएंगे ना, तो आप समय के साथ परंपरा को नए सिरे से लेके जाओगे। ये फॉर्मूला है मेरा बैलेंस रखने का। तो हमें पारंपरिक स्टोरी टेलिंग के साथ नए स्टोरीज को भी देखना होगा। कई सारे कलाकार करते हैं, अगर आप जाइएगा क्रास म्यूजियम में, वहां पर देखिए कि उन्होंने कुछ कारीगरों ने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मधुबनी पेंटिंग बनाया है, कोई लोग मेट्रो को देखते मेट्रो को भी करते, वार्ली पेंटर भी करते। तो हर एक कलाकार को हमारा मौजूदा माहौल को भी प्रतिसाद देना होगा चीजें बनाने के लिए परंपरा के साथ साथ।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह से बैलेंस बना रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपका पसंदीदा फैब्रिक कौन सा है?
0: नहीं, मेरा पसंदीदा फैब्रिक कोई भी नहीं है,
1: कोई भी नहीं है।
0: मेरे पसंदीदा फैब्रिक सारे हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि पसंदीदा फैब्रिक अगर होगा ना, तो फिर मैं या तो शिफॉन में काम करूंगा या मैं सिर्फ खादी में काम करूंगा। खादी की इज्जत बहुत ज्यादा है और उसको बरकरार रखना जरूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं जब कोई चीज, कोई भी अनुभव बना रहा हूँ या कोई भी टेक्सटाइल क्राफ्ट बना रहा हूँ या कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से मैं कपड़े का सिलेक्शन करता हूँ। तो जरूरत के हिसाब से फैब्रिक सिलेक्शन होता है। इफ दैट फैब्रिक कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली इन योर एक्ट ऑफ क्रिएशन, देन दैट फैब्रिक क्वालिफाइज टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम।
1: अब मैं वापस आती हूँ, जैसे आपने बात की कि आपने NID पास आउट हैं, आपने डिजाइनिंग किया, संगीत की तरफ ही आपका रुझान रहा क्योंकि आपके पिताजी संगीत के उस्ताद थे, भजन गाते थे। तो संगीत की तरफ आना चाहूंगी, क्या आपने संगीत की भी कोई शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा की अगर हम बात करें?
0: नहीं, संगीत की पारंपरिक शिक्षा मैंने कभी प्राप्त नहीं की, क्योंकि अगेन जो प्रायोगिक काम करना तो डिजाइन में रहा ही रहा है। हमने संगीत के साथ भी प्रयोग हरदम किए, लेकिन वो छोटे ग्रुप में और निजी मामले में ज्यादा करे। हम क्या करते, हॉस्टल में हम गाने नए बनाते थे, पैरोडीज बनाते थे, स्टेज पे भी बनाते थे, इस तरह से। और मैं खास करके महाराष्ट्र में बड़ा हुआ पला हुआ, तो वहां पर मुझे अभंग में काफी रुचि रही है। जो हमारे वारकरी संप्रदाय के जो जितने भी तुकाराम, रामदास और नामदेव, इनके अभंग थे मराठी में, मैंने काफी उनको सुना है। मेरे पिताजी भी गाते थे और मैं भी कई बार इन अभंगों को गाता हूँ। जब भी कोई हमारे महाराष्ट्र मंडल दिल्ली में, वहां पर कभी मौका आता है तो मैं कई बार वहां पर अभंग गाया।
1: थोड़ा सा आप गुनगुना सकते हैं,
0: प्रोफेशनल तरीके से नहीं गाता हूँ,
1: गुनगुना सकते हैं।
0: लेकिन अभंग अगर मुझे आपको एक दो लाइन सुनानी है,

0: तो ये अभंग है,
1: बहुत खूब मराठी में है,
0: मराठी में
1: बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। और चंद्रशेखर भेड़ा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी जो यात्रा है, आपकी कलात्मक यात्रा की अगर हम बात करें, रचनात्मक यात्रा की बात करें, आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की बांटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे भी यहाँ आकर के आपसे बात करने से बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत शुक्रिया,
0: और आगे भी मिलते रहेंगे, बहुत
1: बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम की भेंटकर्ता और प्रोड्यूसर काजल सूरी, इसके साथ ही काजल को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا

0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई।

0: इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with a Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
0: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that in the month of June, the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. This was developed jointly by DRDO laboratories and Indian industry partners. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts.

0: बहनों, हमारा राम
1: राम
0: और नमस्कार गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी दोस्त और मेरे साथ मेरी सह साथी
1: यमुना। तो पहले रेनु, मैं आपको भी राम राम कह दूँ और बहनों से तो हो गया राम राम,
0: लेकिन राम राम
1: तो एक दूसरे से राम राम करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुलाकात तो इस कार्यक्रम के जरिए होती है और हम दोनों आकर के मिलते हैं और बातें करते हैं।
0: हाँ, और बातों के साथ साथ अपनी ग्रामीण महिलाओं के साथ भी जुड़ जाते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, मनोरंजन होता है। और आज जो धूप थी

0: उसमें जो मनोरंजन मत बोल, वो जो हाथ हालत खराब हो गई हमारी
1: मतलब किसी तरीके से धूप में बचती बचाते यहाँ तक आए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सूती कपड़े से मुंह को खूब ढके हुए थे, पीने के लिए ठंडा पानी भी साथ में लिए थे, मतलब कुल मिला के अपनी कुछ ना कुछ हिफाजत करते हुए यहाँ तक हम पहुंचे।
0: मुझे लगा आज इतना झोला उठाकर कैसे आई हैं।
1: अरे सत्तू का घोल रख लिए, कुछ ऐसी चीजें तासीर चीजें ठंडी चीजें रखे थे जिससे थोड़ा सा आराम मिले, तो ये चीजें तो सबको करनी चाहिए।
0: सबको करनी चाहिए, बहुत गर्मी है तो शरीर स्वास्थ्य है हर चीज का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अब जैसे हम पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन, मतलब अपने शरीर को पूरी तरीके से पानी पीना चाहिए, पानी के साथ साथ ठंडा मतलब नींबू पानी पीजिए और साथ में सत्तू का पानी पीजिए, तो ये सत्तू का जो जूस होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, अंदर शरीर को ठंडक देता है और साथ साथ हमारी जो स्किन है यानी कि हमारी जो सुंदरता है वो भी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है कि हमारी जो स्किन है वो काली होती चली जाती है। तो महिलाओं को तो खास तौर पर ध्यान रखना है, भाई वो इतनी खूबसूरत हैं तो और खूबसूरत बनी रहे
1: और उनकी खूबसूरती का हम ध्यान रखते हैं, तभी तो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है इसके जरिए हम उनको बहुत सी जानकारी भी देते हैं और पोषण से संबंधित भी बात बताते हैं, योग करने से क्या फायदे हैं इस पर भी हम चर्चा करते हैं और उनके मनोरंजन का पूरा पूरा ख्याल
0: रखते हैं। बिल्कुल, और आज मैंने भाई बता दूं अपने महिलाओं को कि आज मैंने अच्छा से लेप लगाया यानी कि एलोवेरा जो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने आज सुबह सुबह बिल्कुल घर में रहता है, आपको कोई खर्चा पानी कुछ नहीं करना है, पौधा लगाना है और उसकी जो अंदर की जो जेल होती है वो निकालो और स्किन पर लगाओ और काम भी करो, आपको बैठना नहीं है।
1: अब मुल्तानी मिट्टी अगर घर में है तो उसे थोड़ा सा बारीक सा पीस ले, पाउडर बना के रख ले, उसका भी घोल करके अपने चेहरे पे लगा ले, स्किन अच्छा रहेगा,
0: स्किन अच्छा रहेगा। और हम अलोम विलोम योगा तो करते ही हैं, उससे हमारी स्किन और अच्छी रहती है, तो ये सारी चीजें तो हमें ख्याल रखनी पड़ेंगी। और पानी खूब पीते रहे, जितना पानी पियेंगे उतनी आपकी जो सुंदरता है निखरती चली जाएगी,
1: निखरती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात है जो बच्चे हैं साथ में उनको लेकर चल रही है तो उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखें, सूती कपड़े पहनाएं, खुद भी सूती कपड़े पहने, ऐसे कपड़े ना लें कि जो गर्मी और बर्दाश्त ना करने लायक बना।
0: बिल्कुल, और कहते हैं ना खादी सूती ये जो तो है हमारे बहुत सही रहते हैं, स्किन के लिए अच्छे रहते हैं, शरीर के लिए अच्छे रहते हैं, और मुंह पर पूरा कपड़ा अच्छे से ढककर जाएं, अपने शरीर को पूरे तन को ढककर रखें, क्योंकि ये जो धूप है ना ये नुकसान पहुंचाती है और आप चक्कर खा के भी गिर सकते हैं भाई, इतना ध्यान रखें, छाता भी लेकर चले अपने साथ।
1: बिल्कुल, शरीर को ढके रखें और अपना पूरा ख्याल रखें और धूप की सफर को
0: एक सुहाना सा बनाते हैं इस गीत के साथ।
1: बिल्कुल।

0: अरे आजकल बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ते बढ़ते हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम महिलाएं तो वैसे भी खास तौर पर बहुत
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: रेनू।
0: रखती हैं कि हमें बचत करनी है ना, और हर जगह काम आता है। और महिलाओं को ये बड़ा अच्छा तरीका है कि कहीं ना कहीं छुपा छुपू के अपना अपने पैसे ना संभाल कर रख लेती हैं, और वो काम आता है जब जरूरत होती है।
1: कुल मिला के महिलाएं जो भी पैसे इधर उधर से दाएं बाएं कहीं से निकालती हैं, या पति से पाती हैं या
0: हाँ
1: रिश्तेदारों से पाती हैं, बच्चों के पैसे भी इकट्ठा करके रख लेती हैं, तो सारे पैसों का सच बताएं ना तो बहुत बड़ा यूज होता है उनके लिए, क्योंकि वो कहीं ना
0: बिल्कुल,
1: कहीं जमा कर देती हैं। जमा नहीं करती हैं, अगर नहीं बैंक तक जा रही हैं तो घर में ही
0: घर में ही
1: इकट्ठा
0: इकट्ठा
1: करके
0: करके
1: रखती हैं।
0: देती
1: लेकिन अब तो बहुत समझदार हो
0: बहुत
1: चुकी महिलाएं।
0: समझदार।
1: और देखो सबसे बड़ी बात ये रेनू कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में देखा जाए तो बीमा भी होना बहुत
0: बहुत
1: जरूरी
0: जरूरी
1: है।
0: है। और आज तो बहुत खास दिन है, पता है। तो बीमा पर अगर हम बात करें तो आज है अंतर्राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, और इस पर ये कहते हैं ना, आपदाएं इतनी आने लगी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई, चिकित्सा पर आपातकालीन कुछ ऐसा आ गया, अनहोनी हो जाती है, तो इन सब चीजों पर बीमा होना बेहद जरूरी है। और इसी पर आधारित आज का ये दिवस मनाया जा रहा है।
1: 28 जून।
0: हाँ
1: और जब बीमा सुरक्षा की बात होती तो जैसे
0: हाँ
1: आपने कहा अनहोनी हो जाती, तो मैंने वही कहा ना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ
0: नहीं
1: भी हो
0: है।
1: सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि बीमा की बहुत सी पॉलिसियां आई हैं, बहुत तरीके की सरकार द्वारा भी चलाई गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आप जो भी पैसा इकट्ठा करें उसे सही जगह लगाएं, सही
0: बिल्कुल
1: तरीके से पता करके लगाएं, कभी भी ऐसा ना हो कि आप ठगी का शिकार हो जाएं। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो भी आपके पास पैसे आते हैं सही जगह अगर आप लगाती हैं, तो सच कहें
0: सच
1: कभी
0: में
1: जीवन में कोई ऐसी घटना घटती तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही सहायक साबित हो सकता है, वो जो अमाउंट आपने जमा कर रखा है।
0: बिल्कुल। और हमारी आज की एक और, जैसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी एक बीमा योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति
1: बीमा
0: बीमा
1: योजना।
0: योजना। तो ये जो है जो सरकार द्वारा चलाई गई वो एक सस्ती सी योजना है, आप इतना घबराएं नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि 18 से 50 वर्ष के जो बैंक खाता धारक हैं वो 436 वार्षिक प्रीमियम दर देकर, सिर्फ इतना ही अमाउंट, सिर्फ इतना ही मूल्य देकर 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकते
1: और
0: हैं।
1: सबसे बड़ी बात ये रेनू कि जो आपका खाता है जहां खुला हुआ है वहां पे सिर्फ ऐड कराना होता है। जैसे आप जीवन बीमा ये योजना की बात, जीवन ज्योति बीमा योजना की बात बैंक में बताएंगे तो 436 रुपए जो कटेंगे वो आपके जो जमा है धनराशि उसी में से कट
0: उसी
1: के
0: में से
1: ऑटो
0: कटे।
1: डेबिट है, मतलब वो अपने आप कट जाता है, इकट्ठा होता रहता है, और समय आने पर वो अमाउंट आपको मिल
0: मिल
1: जाता
0: जाएगा,
1: है।
0: यानी कि 55 साल तक की एक ही है इसका, आप उसको रिन्यू यानी कि नवीकृत करा सकते हैं। तो
1: हाँ
0: आपको इतने घबराने
1: बिल्कुल
0: की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा

0: योजनाएं बनाई गई हैं जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे।
1: बिल्कुल, और इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें 55 वर्ष की आयु तक रिन्यू कराया जा सकता है, जमा करने का तो 18 से 50 वर्ष का है, लेकिन उसमें रिन्यू ऐसे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, योजना का लाभ लेने किसी भी बैंक या डाकघर, जो भी बचत खाता आपके आसपास, हाँ, वहां संपर्क आप कर सकते हैं। गांव की महिलाएं हैं तो आंगनबाड़ी वाली की आती है कार्यकर्ती, तो उनसे भी संपर्क करके आप इन सब चीजों का लाभ पा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जो

0: भी नहीं सकती पति को या किसी को कि मैंने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए, मेरा जमा करा दो। तो ऐसे में जो हमारी आशा कार्यकर्ता है या हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है गवर्नमेंट द्वारा जा रही है आसपास, तो उनसे भी सहायता ले सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं।
1: बिल्कुल। और यमुना, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि, और बहुत सतर्कता से, मतलब आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी ने बोला और आपने कर दिया, आप पूरी जानकारी ले पहले और उसके बाद जाकर
0: बैंक जा सकती हैं। बिना आपके गए तो काम नहीं हो सकता, एक बार तो आपको जाना ही पड़ेगा, खाता खुलाना पड़ेगा, ऑटो डेबिट कराने, चाहे वो हमने बीमा योजना की बात की उसकी हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों की बात करें, तो आपकी जीवन की सुरक्षा जो है आप जो अमाउंट जमा करते हैं उसके जरिए हो सकता है।
1: बिल्कुल। और 1 जून को ये आपके खाते में ऑटो डेबिट हो जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा। तो एक बार आप जाइए, घर से बाहर निकलिए और ये कदम उठाइए, ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद होगा।
0: और जब हाथ में पैसा होता है तो कुछ बात ही अलग होती है।
1: और अगर महिलाओं के हाथ में हो तो क्या बात है।
0: तो महिलाओं के हाथ में होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो कुछ पहनती हैं, ओढ़ती हैं, कुछ चाहती हैं, तो वो डिमांड भी करती हैं अपने घर की जो घर वाले हैं उनसे, कहती हैं भाई कुछ मेरे लिए बनवा दो ना। हाँ। और नहीं तो फिर वही है ना कि उनके हाथ में जब कोई चीज दिखता है तो हस्बैंड भी कुछ बोल पड़ता है, तो पतिदेव भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, इस गीत के जरिए सुनते हैं ना।

0: यमुना, कितना खाने पीने का हम ना ध्यान देते ही नहीं आजकल। बच्चे भी कुछ भी खा रहे हैं, बड़े कुछ खा रहे हैं, आजकल तो फास्ट फूड का जमाना हो गया है। नहीं कभी कुछ खा रहे, कभी कुछ खा रहे, और बीमारी अपने अंदर खुद ही हम निमंत्रण दे रहे हैं, आओ जी बीमारी हमें ले लो फटाफट, क्योंकि हम खान पीन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। गर्मी भी है, मौसम भी ऐसा है, और खाने पीने पे ध्यान ना देंगे तो बीमार तो होंगे ही। अब आप बताओ, मैं तो आजकल ना, मैंने सच में ना मोटे अनाज खाने शुरू कर दिए।
1: मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ, ध्यान से ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब फास्ट फूड का जमाना है।
0: हाँ।
1: लेकिन हम कहते हैं फास्ट फूड का वो जमाना नहीं है, जमाने में हम अपने आप को ढालते जा रहे हैं। तो जरूरत ये है कि हम फास्ट फूड की तरफ ध्यान न दें।
0: हाँ।
1: अपने श्री अन्न की तरफ हम ध्यान दें, अपनी थाली में वो सारी चीजें हम पोषक तत्वों को शामिल करके खाएं। तो और वैरायटी भी है कि किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसे लज्जतदार कैसे बनाया जा सकता है, और इसकी क्या क्या चीजें, जो आप चीज खा रहे हो बाहर, चाहे कुछ भी रख लो फास्ट फूड में, वो सारी चीजें हमारे श्री अन्न से बन सकता है। लेकिन कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, अभी बाद भी ये प्रश्न आता है, लाजमी है। तो बन ऐसे सकता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है।
0: बिल्कुल, पोषण सुरक्षा हेतु श्री अन्न पर जानकारी दे रही है डॉक्टर शुभांगी सिंह, जो कि फाउंडर गोल्डन मिलेट्स की नई दिल्ली से हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
1: तो चलिए सुनते हैं कि वैरायटी कैसे कैसे श्री अन्न की हम ले सकते हैं अपने भोजन की थाली में।
0: बिल्कुल,
2: किसान भाइयों नमस्कार। सभी लोगों को चिंता रहती है अपने स्वास्थ्य के, और स्वस्थ रहने के लिए निश्चित तौर पर आपको जिस तरीके से खाना, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अगर खाने में बात की जाए तो आपको सभी पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपके खाने में होने चाहिए। और पोषक तत्व जब ही होंगे, जब वो हम अनाज खाएंगे, वो उत्पाद खाएंगे जिनके अंदर उनकी मात्रा भरपूर पाई जाती है। और हमारे देश में पहले अगर हम देखें तो जो हमारे मोटे अनाज जिनको कहते हैं, उनका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, और सभी लोग स्वस्थ रहते थे, उनको कोई किसी तरीके की ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब से चलन मोटे अनाज का कम हुआ है और दूसरे खाद्य पदार्थों का बढ़ावा हुआ है, तब से सभी लोगों में कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिलती है। तो जो हमारे मोटे अनाज हैं, जिन्हें हम श्री अन्न कहते हैं, उनका हमारी पोषण सुरक्षा में क्या महत्व है, ये किस तरीके से दूसरे विकल्प के रूप में हो सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शुभांगी सिंह जी को, जो कि गोल्डन मिलेट नई दिल्ली में उसके फाउंडर हैं। शुभांगी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो मिलेट हैं, तो ये पहली बात तो कौन कौन से हैं जो हमारे रोजमर्रा में प्रयोग किए जा सकते हैं?
3: मिलेट्स बहुत तरीके के होते हैं। लोगों को लगता है कुछ दालें भी हैं जो मिलेट्स में आती हैं, बट ऐसा नहीं है। ये मिथ मैं सबको बता दूं कि 12-15 तरीके के मिलेट्स होते हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, रागी, ये सबको पता होता है। उसके बाद आता है चलाई, जिसको राजगिरा कहा जाता है, जिसको हम फोड़ के पॉपकॉर्न की तरह लड्डू भी बना के हम व्रतों में खाया जाता है। उसके बाद आते हैं सामक के चावल, स्पेशली नॉर्थ साइड में उसको सामक के चावल कहते हैं, साउथ में उसको भगर कहते हैं। उसके बाद आता है कुटकी। कुटकी बहुत छोटा दाना होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है कोडो। कोडो को कुछ क्षेत्रों में हमारे भारत के कोदा भी कहा जाता है, एंड इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे ब्लड के लिए भी जरूरत होती है और हमारे गट के लिए भी बहुत जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं कंगनी। कंगनी में कैल्शियम बहुत होता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद आता है, दो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जाने नहीं जाते मगर हमारी बॉडी के लिए एंटी कैंसरस का काम करते हैं, उनका नाम है प्रोसो, जिसको बिहार साइड में चीना भी कहा जाता है। और लास्ट है ब्राउन टॉप। ब्राउन टॉप को हरी कंगनी का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका जो चावल है, मिलेट का चावल है, वो हरे रंग का होता है। तो ये कुछ लगभग हैं जो ज्यादा जाने गए हैं। इसके साथ और भी हैं, बट वो कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत लार्ज मात्रा में पाए नहीं जाते। तो ये लगभग, अगर सबको नाम और वैसे देखना हो, सब मार्केट में भी अवेलेबल है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके इन्हें देख भी सकते हैं। हमारे जो भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर है, वहाँ पे आप जाके इसको देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप टेस्ट भी कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने कई जो हमारे मिलेट हैं उनका जिक्र किया, लेकिन इतने मिलेट हमारे देश में हैं और इनका उत्पादन भी होता है, लेकिन इसकी तरफ लोगों का रुझान क्यों कम हुआ है?
3: जब हम इतना ज्यादा एक ही अनाज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे हम अगर लंच की बात करें, हमारे यहाँ चावल या गेहूं की रोटी यही सबसे ज्यादा फेमस है। अब इसके अंदर मोटे अनाज को डालें कैसे, ये हमारी पहले के पीढ़ियों को सबको पता था और बहुत अच्छी अच्छी व्यंजन बनाए जाते थे इससे। बट आज के टाइम पे एक तो समय की पाबंदी है लोगों के पास, दूसरा इसको बनाने के लिए लोगों को लगता है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या कुछ अलग तरीके का प्रक्रिया होगा।
2: तो जब बनाने की बात आए तो इनसे कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
3: जी सबसे ज्यादा तो अगर हम ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बात करें, ब्रेकफास्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले जो मिलेट के पोहे आते हैं आप उससे स्मूदीज बना सकते हैं। बच्चों के लिए शेक इतना अच्छा वो है, उसमें डेट्स डालिए, उसके अंदर किशमिश डालिए असली मिठास के लिए, फ्रूट्स डालिए असली मिठास के लिए, उसमें भीगे हुए पोहे डालिए, इससे आपकी स्मूदी बन सकती है। फिर आपके चीला हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, जितना साउथ इंडियन व्यंजन है वो बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसके दलिया ले सकते हैं, ज्वार का दलिया, बाजरे का दलिया, इनसे आप दलिया बना सकते हैं सुबह। ये आपके ब्रेकफास्ट को इतना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, जो आजकल इतना सब लोग चल रहा है कि इंडिया में प्रोटीन की कमी रहती है, वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपका इसी से ही कंप्लीट हो सकता है। मगर बनाने का तरीका बहुत आसान है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सीखना चाहें तो लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर आते हैं हम लंच पे। देखो वैसे तो मिलेट खाने के बाद लंच तक भूख नहीं लगती, मगर फिर भी अगर किसी को भूख लगती है तो आप रोटी या चावल को इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं अपने रोटी के अंदर, जैसे कुटकी का आटा या कंगनी का आटा या ज्वार का आटा आप ऐड कर सकते हैं, उसको मल्टीग्रेन बना सकते हैं। अगर वो नहीं तो मैं तीन तरीके की, चार तरीके की आपको रोटियां बनाती हूँ। अगर मैं रोटियां आपको बताती हूँ तो सबसे पहले आता है सामक की रोटी। सामक की रोटी आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके ब्लड में जाके आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैंडल करती है, आपके शुगर स्पाइक को हैंडल करती है। दूसरी आती है रागी की रोटी। रागी की रोटी अगर आप खाते हैं तो आपको नेचुरल विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है। 98% आपका लिवर यहाँ पे कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब है आपके दूध से ज्यादा, आपके पनीर से ज्यादा, आपके हर चीज से ज्यादा कैल्शियम आपके रागी के अंदर एब्सॉर्प्शन लेवल, बच्चों के लिए तो सुपर ग्रेन है ये। तीसरी रोटी जो आती है बाजरे की रोटी। सबको लगता है बाजरे की रोटी बहुत गर्म होती है, बट ऐसा नहीं है। तासीर उसकी अगर आप खाएं तो वो शरीर के अंदर से गर्मी निकालती है, इसका मतलब शरीर को ठंडा रखती है। तो आपके फाइबर इश्यूज, अगर आपके पेट में दिक्कत है या कुछ भी है, आप जो भी जब भी बनाएं तो बाजरे की रोटी में थोड़ा सा जो हमारा इसबगोल होता है वो डाल लीजिए, आपका पेट इतने अच्छे से रहेगा कि ना आपको इश्यूज होंगे ना ही आपको कोई भी गर्मी जैसा लोग बोलते हैं वैसा होगा। और आखिरी रोटी जो आती है वो है ज्वार की रोटी। अगर किसी को भी खून को साफ करने की या हाइपरटेंशन, बीपी, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिड इश्यूज अगर किसी को भी है, पेट से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, अगर वो ज्वार की रोटी एक भी दिन, दो भी दिन अगर साथ में खा लें तो उनको तीसरे दिन से फर्क दिखने लग जाएगा कि हमारा पेट आज बहुत बेटर है पिछले दो दिन से। तो ये तीन चार तरीके की रोटियां हैं, अगर हम इन्हें बनाना सीख लें, बहुत इजीली गर्म पानी में बनती हैं ये, अगर सीख लें तो बहुत ही ज्यादा आपका लंच बेटर हो सकता है।
2: और दूसरी बात, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय समय कम होता है
3: जी,
2: तो क्या ये कुछ चीजें बनी हुई भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं जिनको बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है?
3: बिल्कुल सही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेक मिक्स हो गया, प्रीमिक्सेस, चीला के प्रीमिक्स हो गए, आपको इसमें सिर्फ पानी या दही मिलाना है और आपको घोलना है और फिर बना सकते हैं। ऐसे प्रीमिक्सेस अवेलेबल है।

0: मार्केट के अंदर, और बहुत इजीली इनको आई थिंक 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर ही बनाया जा सकता। एक तो बच्चों को मैंने देखा है आजकल मीठा या चटपटा बहुत अच्छा लगता है, आजकल जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो चिप्स की क्योंकि उसमें चटपटा एक फ्लेवर होता है उनको वो पसंद होता है, या एक पैनकेक या मिठास की तरफ जाते हैं, केक की तरफ, पेस्ट्री की तरफ। तो ये सारी चीज ना आप मिलेट से अगर बनाएंगे ना, तो एक तो आपको नेचुरल कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं आप, जैसे जैगरी हो गया या डेट्स हो गए, या फिर आपने किशमिश डाल के कर दिया, तो इससे आप पैनकेक बना दीजिए। चीला भी बना रहे हैं तो चटपटा चीला बनाइए, उसमें मसाले वगैरह डाल के बनाइए, जीरा डालिए, चाट मसाला डालिए, इससे बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और दूसरा, अगर आपको उनकी स्नैकिंग, जैसे हमने चिप्स वगैरह की बात करी, अगर इसे रिप्लेस करना है तो मिलेट के वो भी अवेलेबल है। आप घर में तो बना ही सकते हैं, जो लोग बनाते हैं वो बना सकते हैं, बट मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के लिए रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम करते
1: हैं। कहते हैं कि हमारा एक बाजरा है या कुछ ऐसे और भी मिलेट हैं जिसका आटा बनाने के बाद वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो खराब हो जाता है।
0: जी जी
1: बिल्कुल। तो इसको सही रखने के लिए भी कुछ उसमें मिलाया जाता है, क्या है तरीका?
0: जैसे मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक तो जब भी आप पिसवाएं तो अपने सामने पिसवाएं,
1: मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे श्री अन्न है वो पोषण सुरक्षा के लिए काफी विकल्प हो सकते हैं अगर इनका सही तरीके से प्रयोग किया जाए और अपने खाने में सम्मिलित किया जाए। तो हमारे जो श्रोता हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो अपने खाने में श्री अन्न की मात्रा को बढ़ाएं, उसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहें?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी सेहत जो है हमारे खुद के एक छोटे से बदलाव से ही शुरू होती है। हम घर में जो स्वादिष्ट हमें बाहर खाना मिलता है, बाहर व्यंजन मिलता है, यह सब कुछ हम घर पे भी बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी कुजीन हो, चाहे वो भारतीय कुजीन हो, चाहे वो जापनीज कुजीन हो, चाहे वो नूडल्स पास्ता हो, चाहे वो मोमोज हो, सब चीज के अंदर मोटे अनाज को आप डाल सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। रेसिपीज आपको बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इंटरनेट पे सिखा रहे हैं, तो आप उनसे भी सीखिए, वीडियोस देखिए। हम अपने ही पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए अगर एक दो वीडियो से कुछ सीख के अगर कुछ अच्छा बना सकें 5-10 मिनट के अंदर अंदर, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, इसे कोई भी बना सकता है और बहुत टेस्टी बन सकता है।
1: जी बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप एकदम मत शुरुआत कीजिए, थोड़े थोड़े करके आप उसको शुरू करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और दूसरे कि जो हमारे मोटे अनाज हैं या श्री अन्न है, अगर हमारे किसान भाई इनकी खेती भी करते हैं, इनमें कोई ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होती है, न इनको ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, कम लागत में हो सकते हैं और दूसरी फसलों के साथ भी इनको उगाया जा सकता है।
0: श्री अन्न के लिए आप अगर फार्मिंग साइड में है तो वहाँ पे भी इसके अंदर सब्सिडीज है। अगर कोई उद्यमी है, अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं। मशीन खरीदने के विकल्प अलग हैं, जो स्कीम्स अलग हैं। अगर लोन लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए वो अलग है। उद्यमी को अगर शुरू करना है पैकेजिंग साइड में, अगर इसको पैक करके कुछ सामान आगे भेजना है, तो उसके लिए भी एजुकेशन साइड में भी बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स खोले हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन के लिए वीडियोज बनाई हुई है। तो सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, मगर बस एक जज्बा चाहिए। आप घर से भी छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, मशीन्स भी बहुत छोटी छोटी अवेलेबल हैं आजकल, और उसको करने के बाद आप मार्केट अगर ढूंढे तो मार्केट के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत जगह स्टॉल देती है, उसके
1: मेले
0: साथ
1: लगाते हैं,
0: मेले भी लगाते हैं, और आपको हो सकता है गवर्नमेंट्स के अंदर खरीदारी भी होती है, प्लेटफॉर्म जैसे ONDC वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बनाए हुए हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है, बस
1: आपको जागरूक होने की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। शुभांगी सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निश्चित तौर पर आपने श्री अन्न के बारे में काफी कुछ बताया कि किस तरीके से इससे पोषण सुरक्षा की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्री अन्न से कैसे पोषक तत्वों को शामिल करके कैसे बेहतरीन तरीके से हर चीज़ हम बना सकते हैं, खा सकते हैं, इसी विषय पर श्री अन्न से जुड़ी बहुत सी बातों पर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी डॉक्टर शुभांगी सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और श्री अन्न की ही बात हम कर रहे हैं, तो श्री अन्न को कैसे लोकगीत के जरिए ब्रजपाल चरौरा अब बताना चाह रहे हैं, चलते हैं सुनते हैं
3: ये वाली लोकगीत।

0: लगी माया। तो यमुना, अभी हमने सब को सुनाया और खुद भी सुना, क्योंकि ये है ब्रजपाल कलाकार की आवाज़ में, ब्रजपाल चौरसिया जी की आवाज़ में मोटे अनाज पर जो हमने लोकगीत सुना, बेहद ही खूबसूरत था। और एक बात, यहाँ आज ना मैं सोच रही थी, खूब भागदौड़ तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, इतना भागते हैं हम सारी महिलाएं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं? आप अपना बताओ, आप कितना करती हो?
1: देखो, सबका ख्याल रखते रखते ना अपना ख्याल रखना ही हम भूल जाते हैं। सच तो ये है, जो सच्चाई है उसे बता रही हूँ, अपनी ही सच्चाई नहीं, हमारी जितनी बहनें हैं सबके साथ ऐसा होता ही है।
0: हम पूरे परिवार के सबके ख्याल रखेंगे लेकिन अपना नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं कल कर लूंगी। आज मैंने, पता है, सच में मैंने खुद सोचा था कि अब तो मैं रोज योगा करूंगी, लेकिन मैं सोचती रह गई, कल किया था,

0: आज रह गया। सोचा अरे ये काम कर लेती हूँ, पहले वो कर लेती हूँ, लेकिन वो भूल गई जो मेरे लिए जरूरी था।
1: एक बात और है, ये बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बहनें कहती मैं सारा दिन तो दौड़ दौड़ के काम करती हूँ, योगा करने की क्या बात है, लेकिन सच कहें योगा सिर्फ अगर देखा जाए तो ये नहीं कि भाग दौड़ आपने कर लिया तो योगा हो गया आपका। वो शारीरिक जो एक फिजिकल जो हमारा वर्क होता है, जो शारीरिक भाग दौड़ हम करते हैं, चलो ठीक है आप फिट बनाए रखी अपने आप को, लेकिन जब आप थक के बैठती है ना तो सुकून का जो पल होता है ना, तो योगा में जब हम बैठते हैं तो शांति, उस सुकून और वो प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया उसे आप खो देती हैं अगर आप योगा नहीं करती हैं तो।
0: और शरीर से ज्यादा ना मानसिक रोगी हो गए हम लोग। हम बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये सच में ये एक तनाव ही है, जो हमें छुपा हुआ तनाव, एक मानसिक तनाव, और इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है आप योग करें।
1: और थोड़ा सा पल अपने लिए सुबह का निकालिए और प्रकृति के साथ बैठिए। नहीं आप दूर दराज जा पा रही, जैसे खेत खलियान के पास ही जा रही, तो आप कुछ नहीं एक टाट पट्टी बिछाइए, वहां सुकून से अपने खेत के पास ही बैठ जी, वहां भी सुकून से आप करती हैं। आपको तो हरा भरा मौसम मिला है। और अगर शहर की हमारी बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो भी अपने जो उन्होंने बागवानी थोड़ी सी कर रखी है, लगा रखे हैं, उसी के बीच बैठ जाइए। तो थोड़ा जब हम प्रकृति से तालमेल बैठाते हैं, उनसे कहते हैं ना जो पत्तियां हैं उनमें भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, तो एक तरीके से हम उनसे जब जुड़ते हैं, बात करते हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं एक शांति या सुकून के पल को जीने की कोशिश करते हैं प्रकृति के साथ, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति हमसे बातें करती है और हम उससे जुड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम ऐसे जुड़ेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, तो तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, और जो हमारी ये काया है ये निरोगी रहेगी हमेशा के लिए,
0: हमेशा के लिए। और बिल्कुल ये कहते हैं कि इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और जो महिलाएं हैं जो गुस्सा करती हैं उनकी, और जो भूल जाती हैं उनकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है। तो ये जो भावनाएं हैं, हम कई बार होता है ना महिलाएं रोने लग जाती हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता वो रो किस वजह से रही हैं, तो ये एक मानसिक रोग ही है जो हम अपने अंदर बैठा रहे हैं। लेकिन इनको दूर करने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के साथ साथ जुड़ने का मतलब वहां बैठे, आलोम विलोम, श्वास तो हम लेते ही हैं तो थोड़ा खुलकर ले लें, और इस बाग बगीचे के साथ, प्रकृति के साथ। तो और गर्भावस्था में तो खास तौर पर ध्यान रखें कि इस अवस्था में हम कहते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन योगा करना बेहद जरूरी, और वो डॉक्टर की सलाह से जो वो बताएं उस तरह के योगा करें, जैसे कि आलोम विलोम करें, आराम से बैठ के श्वास ले सके, इस तरह के करें तो आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए दोनों के लिए फायदा।
1: बिल्कुल, तो फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, सुंदर हो स्वास्थ्य हमारा, और योग बिना कुछ संभव ना हो जीवन की ये धारा।
0: क्या
1: तो चलिए जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जब कोई खूबसूरत लगता है तो फिर यह लगती है, तो फिर कैसे और क्या कहते हैं इस गीत के जरिए।

0: यमुना, आज खास दिन है, जैसे कि हर महीने के रविवार खास दिन होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कही जाती है, और मन की बात के इस कार्यक्रम में आज जो था वो 135वां एपिसोड था, जिसमें कुछ खास बातें उन्होंने कही, जैसे कि समुद्र से आकाश तक भारत जो है सुरक्षित, यानी कि ऐसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में सफल हुए मिसाइल प्रशिक्षणों का जिक्र किया और कहा कि देश के सैन्य शक्ति और रक्षा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहे हैं, और आत्मनिर्भर नौसेना का विस्तार भी इस तरह से हुआ कि कोलकाता में आयोजित नौसेना कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां INS डूनागिरी और INS शशधक और INS आग्रे जैसे पूरी तरह से स्वदेशी युद्ध पोतों को नौसेना में शामिल किया गया।
1: और सबसे बड़ी बात ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है, योग दिवस के भव्य आयोजन की उन्होंने सराहना भी की और नागरिकों से योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जैसा कि हम भी रेडियो के जरिए बार बार आपसे कह रहे हैं। और सकारात्मकता की बात करें और सामूहिक प्रयास की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रयासों, जैसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की हम बात करें तो उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की, और साथ साथ ये भी कहा कि आप भी ऐसा प्रयास करते रहें।
0: बिल्कुल, तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री द्वारा कही मन की बातें, और इसी के साथ कुछ बातें कहते हैं ना कि गीतों से भी हम जोड़ सकते हैं इस बात को, क्यों नहीं?
1: बिल्कुल, अगर हम जीवन में कुछ करते हैं तो उसमें बड़ी खुशी भी होती है कि हाँ हम इस उपलब्धि को पा लिया तो ऐसे भी अगर कुछ काम मन की बात के जरिए अगर कोई गुजारिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, या हम भी अपने से कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो खुशी मिलती है इस गीत के जरिए हम बयां कर सकते हैं।

0: और अगर यमुना पद्मश्री अवार्ड की बात की जाए तो यहाँ 19 महिलाओं को मिला, जिसमें कि महिला क्रिकेट टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारत की हॉकी टीम की दिग्गज गोलकीपर सविता पुनिया को दिया गया।
1: और सुश्री लिविया लोबो सरदेसाई 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी है, इनको भी अवार्ड दिया गया। और पार्श्व गायिका अलका याग्निक भी पद्मश्री अवार्ड प्राप्त की।
0: बिल्कुल, और आज का खास बात की जाए तो ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिसमें से एक है राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त।

0: उनका जन्म 1883 में हुआ था बनारस में, और उन्होंने कहते हैं ना महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक और नैतिक समर्थन भी दिया। 1920 में हिंदी दैनिक आज की स्थापना की और 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना भी की, भारत माता मंदिर का निर्माण कराया और BHU की स्थापना आर्थिक सहयोग दिया, और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र रत्न की उपाधि दी।
1: और वीरांगना क्रम में आज हम अहिल्याबाई होलकर की हम बात करेंगे। तो मालवा साम्राज्य की महान महाराठा जो महारानी थी 18वीं शताब्दी में एक कुशल शासक और न्यायप्रिय प्रशासक के रूप में प्रसिद्धि हुई, और उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर पूरे भारत में अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जन कल्याणकारी कार्य किए। और चलते चलते सुझाव शिकायत की हम बात करेंगे। कार्यक्रम हमारा गृह लक्ष्मी चल रहा है, तो बहनों के विचार भी लेने बहुत जरूरी है, तो पता बता दें।
0: बिल्कुल, और हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001, और ईमेल भी कर सकते हैं feedback@fnh.gmail.com।
1: और साथ साथ आपको भी बता दें कि हमारा जो अगला कार्यक्रम शाम को होगा ग्राम संसार होगा, और लोक रंजनी भी होगा और कृषि जगत भी होगा। लोक रंजनी 5:10 पर होगा 5:30 तक, और जो हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम होगा 6:30 से लेकर के 7 बजे तक, और 7:05 से लेकर के 7:30 तक आप सुन सकेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।
0: तो सुनना ना भूलें।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ बताना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारसर
0: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: तो बहनों करते हैं राम
0: राम, राम।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती

0: के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous, from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medals tally.
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें

माँ बेटे के बंधन से सजी ये प्यारी सी डोर के सजी ये कहानी आज की फिल्म करण अर्जुन और इससे सुंदर ये गाना आज का ये बंधन तो प्यार का बंधन है। साथियों ऐसे ही प्यारे से बंधन से बंधा हमारा और आपका रिश्ता इंद्रप्रस्थ चैनल के माध्यम से और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म करण अर्जुन। दोस्तों करण अर्जुन फिल्म 13 जनवरी 1995 को भारत के सिनेमा घरों में जब रिलीज हुई तब उसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इससे भी बड़ी बात इसने 450 मिलियन यानी 20 मिलियन डॉलर की कमाई की उस समय में, जिससे ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक फिल्म के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड

हॉलीवुड फिल्म बन गई। इसके साथ ही ये उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तो ऐसी फिल्म का गीत सुनना तो यहाँ बनता है ना।

वही भंगड़ा ही पाते रहेंगे या उससे भी बड़ी खुशखबरी सुनेंगे आज से, आज की फिल्म से जुड़ी और भी दिलचस्प बातों की, क्योंकि आज की फिल्म है ही ऐसी, क्योंकि वो रही है अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म। आज की फिल्म करण अर्जुन, जिसे आप सुन रहे हैं अपने मन पसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से, और आज की फिल्म लेकर आई है आपकी दोस्त तृप्ति चौहरी। तो आज

की फिल्म करण अर्जुन को 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में सलमान खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए भी जीते। तो हमारे किस क्रेज श्रोता को

अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। याद आया ना राखी गुलजार का ये डायलॉग? तो ऐसे कौन कौन से डायलॉग्स और सॉन्ग्स आपको आज की फिल्म करण अर्जुन के पसंद है, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर ipradiodelhi@gmail.com पर। तब तक यहाँ हम एक गीत तो सुन ही लेते हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए

0: अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो श्रोताओं, यहां मैं माफ करना बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि समय समय पर आपको जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। जी हाँ, आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, जिसे आप सुनते हैं अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। तो आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म है करण अर्जुन। तो आज की फिल्म की कहानी हम आपको संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि आपकी ईमेल्स आना लगातार शुरू हो गई है, उसके बाद आपकी ईमेल भी लेना जरूरी है कार्यक्रम में। तो आज की फिल्म कुछ ऐसी है कि गरीब दुर्गा यानी राखी अपने दो बेटे सलमान यानी सलमान खान बने हैं करण और अर्जुन, जो जिन्होंने भूमिका निभाई है शाहरुख खान की, के साथ गांव में रहती है। दोनों के पिता गांव के ठाकुर के बेटे के पुत्र हैं। उनके पिता के रिश्तेदार दुर्जन सिंह, जिसकी भूमिका निभाई है अमरीश पुरी ने, उनके पिता को मार देते हैं। जब उनके दादा गुजर जाते हैं तो दुर्जन सिंह पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा लेने से रोकने के लिए अपने सालों यानी नाहर, जो अर्जुन की भूमिका निभाते हैं, और शमशेर, जो जैक गौड़ जिसकी भूमिका निभाते हैं, वो करण और अर्जुन को भी मरवा देता है। दुर्गा को सदमा लगता है और वो काली माँ से अपने बेटों को वापस लाने के लिए कहती है। करण और अर्जुन तभी दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं। अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है और वो अमीर लड़की सोनिया काजोल से प्यार करने लगता है। उसके पिता सक्सेना यानी रंजीत दुर्जन सिंह के साथ गैर कानूनी कार्य में लिप्त है, और साथ ही उसकी शादी उसके बेटे सूरज यानी आसिफ शेख से तय कर दी जाती है। जबकि करण का पुनर्जन्म अजय के रूप में होता है, जो सक्सेना के लिए काम करना शुरू कर देता है। करण और अर्जुन को अभी भी पिछले जन्मों में उनकी मौत के बारे में कुछ सपने आते हैं, दुस्वप्न आते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। सोनिया और सूरज की सगाई की पार्टी में विजय आता है और सूरज पर हमला करता है। अजय को विजय को मारने के लिए भेजा जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है बताऊंगी इस गीत के बाद, क्योंकि काली माँ की कृपा से ही उन दोनों का पुनर्जन्म होता है।
4: खड़गम चक्र गदेशु चाप परिदान शूलम शुंडे शिरा शंखम कंदत सिंह करैस्त्रिनयनम सर

साथियों, काली माँ की कृपा से उनका पुनर्जन्म तो होता है। आज की फिल्म करण अर्जुन में फिल्म की कहानी हम आपको बता रहे थे, साथ ही उसमें आगे क्लाइमेक्स पर क्या होता है। तो सक्सेना विजय को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय ने अर्जुन भाग चिल्लाते हुए उसे रोक दिया। ये ऐसा कुछ है जिसे अजय ने अपने पिछले जन्म में विजय से कुछ कहा था। अजय को जेल भेजा जाता है, जबकि विजय बच निकलता है। सूरज से शादी करने के लिए सोनिया को जबरन दुर्जन के घर ले जाया जाता है। विजय अपने दोस्त जॉनी लीवर के साथ उसे बचाने जाता है। वहां सब उसे अर्जुन कहकर बुलाते हैं। वो दुर्गा से मिलता है और उसे अपनी पहली जिंदगी का सब याद आ जाता है। वो अजय को बचाता है और उसे सब बताता है, लेकिन वो उस कहानी को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन जब दुर्जन के साले फिर दुर्गा पर हमला करते हैं, उसे भी सब याद आ जाता है। आखिर में अजय और विजय सब गुंडों को मार देते हैं और अपनी माँ के सामने दुर्जन सिंह का कत्ल कर देते हैं। करण अपनी प्रेमिका बिंदिया यानी ममता कुलकर्णी और अर्जुन सोनिया से विवाह कर लेता है। तो ये थी आज की फिल्म करण अर्जुन की कहानी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आज की फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब कहानी के साथ साथ आज के गाने भी आपको पसंद आ रहे हैं, ये हम आपकी ईमेल से देख रहे हैं। तो साथ में अब शामिल करते हैं आपकी ईमेल्स भी। तो आज की सबसे पहली ईमेल आई है भाई, ये है राधेश्याम देवांगन जी जो लिख रहे हैं इंदिरा नगर भवरपुर से। राधेश्याम देवांगन राधेश्याम देवांगन जी, चंपा देवांगन, आपने सिर्फ इतना ही लिखा है कि हमें एक ही फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको ये भी बताना था कि आज आप कौन सी फिल्म सुन रहे हैं तो हमें और अच्छा लगता। तो अगली जो हम ईमेल शामिल करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में, वो ईमेल हमारी आई है, वो आई है हमारी गुरमीत सिंह जी की। ये लिखते हैं खुशनुमा नमस्ते। तो भाई आपको भी हमारी खुशनुमा नमस्ते। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से आप लिखने वाले हैं हमारे साथ ही। यह अगली ईमेल है पता पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से। तो धन्यवाद साथी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और अगले जो हमारे साथी हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज और पुलेरे पुतरे गुरनेर सिंह, माफ कीजिएगा, और शुभदीप सिंह। फिल्म कभी कभी के गीत के बोल तो माफ कीजिएगा, ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है। आज हम एक ही फिल्म से में जो फिल्म लेते हैं उसी के गीत सुनवाते हैं। तो ये आप शाम की फिल्म में भेज सकते हैं, शाम के कार्यक्रम में भेज सकते हैं। प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता जी हार्दिक अभिनंदन, ये हमारे साथी हैं अगले एक ही फिल्म से की सुनील पाठक जी। तो ये सुनील पाठक जी, स्थान है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, के तहत फिल्म करण अर्जुन के गीत और कहानी सुन रहे हैं। ये फिल्म आप अपने ज़माने की खूबसूरत फिल्म थी। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा और दीपिका मल्होत्रा जी, तो धन्यवाद साथी। अगले साथी हैं दिगंबर जैन जी, दिगंबर दर्शन गौड़, माफ कीजिएगा, नमस्कार, शुभ दोपहर, एक ही फिल्म से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने, जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपका इस तरह का जो हमें फीडबैक मिला इसके लिए भी धन्यवाद। तो अगली जो ईमेल आई है ये आई है वीरम गांव गुजरात से, अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, और ये लिखते हैं प्रिय आरजे जी नमस्कार दीदी, फिल्म करण अर्जुन है लाजवाब प्रस्तुति, लाजवाब गीत, धन्यवाद, आपको पसंद आया कार्यक्रम। और ये है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बाटा, नीलम बाटा, निहारिका और वंश बाटा जी। इसके साथ ही है फिल्म करण अर्जुन के साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीप प्रेमजिम गुप्ता और समडील, वहां से हमारे

0: साथी जुड़े हैं समझील नावा पारा से, मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, श्रीमती अंकुर राघव। नमस्कार दीप्ति जी, तो माफ कीजिएगा साथी, मेरा नाम दीप्ति जी नहीं तृप्ति है, तृप्ति जौहरी है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम फिल्म करण अर्जुन के गीत सुन रहे हैं। शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारे बधाई अवश्य स्वीकार करें। तो हमने स्वीकार कर लिया। आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, धन्यवाद साथी। और अगली जो ईमेल है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसवी, सीता और गीता, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। तो भाई सुनवा दिए हमने अपनी पसंद के, क्या इस फिल्म के लगभग सभी गीत सुनवा दिए। वडिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। और इसी के साथ हम एक और मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। नमस्कार मैडम, आज की फिल्म करण अर्जुन पुनर्जन पर आ रहे, इसके गीत लाजवाब हैं। सुरेश यादव, अनिता यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसके साथ ही हमें और भी जो ईमेल आई हैं, धर्मेंद्र शिपा, क्योंकि समय नहीं है मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेती हूँ, सुदर्शन मुखी, दिगंबर गौड़, धर्मेंद्र शिपा क्योंकि आप लोगों ने ईमेल रिपीट की है, स्वर्ण सिंह, सुधाकर यादव, संजय साहू और फरगुन यादव, संतोष मक्कार। तो इन्हीं के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है कि फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम विच भारत दे मेड इन इंडिया C-295 जहाज की पहली उड़ान पूरी होने नाल हवाबाजी खेतर विच वड्डी सफलता हासिल करन दे मान प्रकट कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सेशल्स दे राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी विचकार सेशल्स विच दवली गलबात जारी है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण नूं साकार करन विच पिंडां दी केंद्री भूमिका ते जोर दित्ता है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने मेडिकल उपकरण नेम 2017 विच सोधां दी तजवीज रखी है। ते औरतां दे ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप विच अज लंडन च भारत दा मुकाबला आस्ट्रेलिया नाल होएगा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत ने जून विच हवाबाजी खेतर विच वड्डी सफलता हासिल की थी है, जिस विच मेड इन इंडिया C-295 जहाज ने अपनी पहली उड़ान पूरी की थी है। श्री मोदी ने मान प्रकट किया कि भारत ने इस महीने देश की सुरक्षा ते स्वय निर्भरता नाल जुड़ी सफलता हासिल की थी है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं उन्हां दस्सिआ कि भारत विच अजिहे 40 जहाज बनाए जा रहे ने।
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री हाल ही विच कोलकाता विच एक समागम विच शामिल हुए जिथे INS दुनागिरी, INS संशोधक अते INS अग्रे नूं भारतीय समुद्री फौज दे वेड़े विच शामिल कीता गया सी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस दी खुशी हुई है कि इन्हां जहाजां दे डिजाइन तो लैके निर्माण तक सब कुछ स्वदेशी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में DRDO ने एक स्वदेशी लंबी दूरी वाली जमीन ते हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का सफलता नाल परीक्षण भी किया। इस नूं DRDO प्रयोगशालावां ते भारतीय सनती भाईवाला वालों सांझे तौर ते विकसित किया गया सी। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बारे भी गल की जिस विच पूरी दुनिया भारत के यत्नां नाल शामिल हुंदी दिखाई दित्ती। उन्होंने अहमदाबाद विच हुई विश्व योगासन चैंपियनशिप का जिक्र किया जिथे भारत ने समागम विच कुल 114 तमगे जिते जिस विच सोने दे 102 तमगे शामिल ने।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई, इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें

0: 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण विच जनतक हिस्सेदारी की शक्ति भारत लिए एक बहुत वड्डी ताकत है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया विच मौजूदा युद्ध वर्गी स्थिति के मद्देनजर देशवासियों ने कुछ नुक्तियां ते अपील करने तो बाद जनतक हिस्सेदारी दोबारा दिखाई दी थी।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की महत्ता बारे भी गल की थी। उन्होंने कहा कि योजना किसी व्यक्ति के परिवार को उसकी बदकिस्मती नाल मौत होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने लोगों को अपील की थी कि वह गणेश उत्सव दौरान अपने आले दुआले गणपति बप्पा दी मूर्तियां कुम्हार ते स्थानक कलाकारों वालों हाथ नाल बनाई मूर्तियां लैण। उन्होंने मूर्तिकारों को भी मिट्टी दी मूर्तियां नूं तरजीह देने की अपील की थी। श्री मोदी ने कहा कि मिट्टी दी मूर्तियां पानी विच आसानी नाल घुल जांदियां ने जिस नाल दरियावां तलाअ ते चुगिरदे दी रख्या हुंदी है। अंत विच पानी दी संभाल बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मीह दे पानी दी हर बूंद नूं बचाया जाना चाहिदा है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सेशल्स दे राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी विचकार दुवल्ली गल्लबात जारी है। दोवें नेता भारत सेशल्स संबंधां दे सारे पहलुआं दा जायजा लै रहे ने ते खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दियां ते चर्चा कर रहे ने। इस तो पहला राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी दी मौजूदगी विच स्टेट हाउस विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं गार्ड आफ आनर प्रदान कीता गया। प्रधानमंत्री अज सेशल्स दी राष्ट्रीय असैम्बली नूं संबोधन करनगे अते भारतीय भाईचारे दे मैंबरां नाल मुलाकात करनगे। इस तो बाद मुख मेहमान वजो सेशल्स दे राष्ट्रीय दिवस ते गोल्डन जुबली समारोह विच शामिल होणगे। भारतीय हथियारबंद फौजां दी इक टुकड़ी ते 2 भारतीय समुद्री फौज दे जंगी जहाज भी जश्ना विच हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनां दे सरकारी दौरे ते सेशल्स विच ने। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा XNLA @AIR देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज विकसित भारत 2047 दे दृष्टिकोण नूं साकार करन विच पिंडां दी केंद्री भूमिका नूं उजागर कीता। नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना तहत राज्यां दे योगदान समेत 1,51,000 करोड़ रूपये तों वध दी व्यवस्था कीती गई है तां जो देहाती विकास नूं तेज कीता जा सके ते नाल ही देहाती मजदूरां लई उपजीविका दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने अगे कहा कि पंचायतों नूं जमीनी पद्धर ते शासन नूं होर मजबूत करन अते देहाती भाईचारियां नूं भी मजबूत बनाउण लई काफी माली सहायता मिलती रहेगी। उन्होंने इस गल ते जोर दिता कि देहाती उपजीविका मिशन तहत 10 करोड़ तों वध औरतां नूं स्वय सहायता समूहां नाल जोड़िया गया जिस नाल औरतां दी अगवाई वाले विकास अते देहाती उद्यमशीलता नूं मजबूत बनाया जा सके। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकां नूं सलाह दित्ती है कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा उदों तक शुरू ना करन जदों तक उन्हां नूं अपनी यात्रा लई लोड़ींदे सारे दस्तावेज प्राप्त ना हो जाण। मंत्रालय ने यह सलाह उन्हां भारतीय नागरिकां दीआं सहायता दीआं बेनतीआं तों बाद जारी कीती है जो निजी टूर आपरेटरां राहीं चीन लई लोड़ींदे प्रवेश परमिट ते बिना वीजा तों नेपाल विच फस गए ने। मंत्रालय ने कहा कि वैध दस्तावेजां दे बिना जां लोड़ींदे दस्तावेजां दे मिलण दी उम्मीद विच यात्रा शुरू करन नाल श्रद्धालुआं दे फसण दी संभावना वध जांदी है। मंत्रालय ने श्रद्धालुआं नूं यह भी सलाह दित्ती है कि वह यात्रा करन तों पहलां यह यकीनी बनाउण कि उन्हां दा टूर आपरेटर रजिस्टर्ड अते अधिकारित जां नहीं। ऑपरेशन अमिस्ताद तहत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच भरोसा प्रगट किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट राहत सप्लाई दवाई ते डॉक्टर उपकरण भूचाल तों बाद वेनेजुएला विच चल रहे राहत यत्नां नूं मजबूती देणगे। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने मेडिकल उपकरण नेम 2017 विच सोधां दी तजवीज रखी है। इसका उद्देश मेडिकल उपकरण निर्माण लाइसेंस जारी करन विच तेजी लियाउणा ते प्रक्रिया नूं सरल बनाउणा है। तजवीज मुताबिक लाइसेंस जारी करन दी समा सीमा घटाई जाएगी जदों कि गुणवत्ता ते सुरक्षा मापदंडां नाल समझौता नहीं कीता जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध विच एक खरड़ा नोटिफिकेशन जारी कीता है जिस विच सारे हिस्सेदारां तों सुझाव ते

0: ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ICC 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ 2020 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਅੱਜ ਬੈਲਫਾਸਟ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ T20 ਮੈਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਤੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲੜੀ ਵਿਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ C-295 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਲਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹਰਮਾਇਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਸ਼ਲਸ ਵਿਚ ਦਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਏ। ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਨੇਮ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਲੀਮ ਅਹਿਮਦ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीस कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तहत तशक्कुर का इजहार किया। विक्टोरिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमिनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। सरकार ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो सफर से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुदकफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी जिसमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वजीर आजम ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाजों के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज अंदरून मुल्क तैयार की गई है। वजीर आजम ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के जमीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बागा

0: हों और भारतीय सनत के साझेदार इदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुन्दर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने योग के बैन अलाक्वामी दिन का भी तस्करा किया, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योग आसन चैम्पियनशिप का भी जिक्र किया, जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमुई तौर पर 114 तमगे जीते।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई, इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कारपूल का इस्तेमाल करें। वजीर आजम ने किसानों से भी ये दरख्वास्त की थी कि वो बगैर केमिकल वाली खेती इख्तियार करें, अपने खेतों का तहफ्फुज करें और कुदरती खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ ताउन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वजीर आजम ने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों कुंभों को तहफ़ुज़ाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतालिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिलती है, जबकि इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। मन की बात के इस नशरिये में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तवहुम परस्ती या अंधविश्वास के मौजू पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि ये हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि अंधविश्वास की वजह से उन दरख्तों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले होते थे। वजीर आजम ने कहा कि हयातियाती उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अवाम के जहन में पैवस्त इस गलत तासुर को बदलने का अहद किया और ख्वातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। रफ्ता रफ्ता ख्वातीन उनकी मुहिम में शामिल होती गईं और एक बड़ी काया पलट का आगाज हुआ। अपने खिताब के आखिर में वजीर आजम ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। विक्टोरिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेने के साथ 2 तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अलाक्वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हरमेने भी मौजूद थे। जनाब मोदी सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब भी करेंगे और वहां रहने वाली भारतीय बिरादरी के लोगों से मिलेंगे। बाद में वजीर आजम एजाजी मेहमान की हैसियत से सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमजोर जंगबंदी टूट गई है। दोनों ही मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के 10 फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। इससे कबल अमरीका ने ईरान पर एक कमर्शियल तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला करने का इल्ज़ाम लगाया था। उधर ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ चंद घंटों में ही जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय

0: You also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: The Prime Minister mentioned Meghalaya's route bridges, saying these route bridges take

0: Cricket India will take on host Ireland in the second and final T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defence production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And an ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।

0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति

0: अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और

सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, रविवार की इस प्यारी दोपहर में चाहे आप घर पर आराम कर रहे हों, परिवार के साथ समय बिता रहे हों या फिर चाय की चुस्कियों के साथ रेडियो में मुझे सुन रहे हों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बेहद खुशनुमा गुजर रहा होगा। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के एक ही कलाकार प्रोग्राम में।

श्रोताओं, आज हम हिंदी सिनेमा की उस खूबसूरत अदाकारा की बात करेंगे जिन्होंने 80 और 90 के दशक में हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। इनकी दिलकश मुस्कुराहट, मासूम चेहरा और शानदार एक्टिंग ने इनको बॉलीवुड में बहुत नेम और फेम दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरी की। इनकी लाइफ और करियर की हर बातों से आपको हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म साजन बिना सुहागन का ये खूबसूरत सा गीत, जिसमें इन्होंने जुबली कुमार यानी लीजेंडरी राजेंद्र कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं पद्मिनी कोल्हापुरी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी, और आप जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। श्रोताओं, पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म मुंबई में 1 नवंबर 1965 में हुआ था। इनके पिता पद्रीनाथ कोल्हापुरी एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, और माँ निरुपमा कोल्हापुरी एयर इंडिया एयरलाइंस में काम करती थी। पद्मिनी कोल्हापुरी की दो बहनें हैं, बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी और छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी। बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी भी एक एक्ट्रेस हैं जो फेमस एक्ट्रेस शक्ति कपूर की वाइफ हैं। वहीं छोटी बहन तेजस्वी कोल्हापुरी भी एक एक्ट्रेस हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी हैं। शायद आप नहीं जानती होंगे कि पद्मिनी कोल्हापुरी लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी जी भी हैं। आगे हम बात करेंगे इनके करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्सों की, पर वक्त हो गया है फिल्म प्यार झुकता नहीं है का ये दिल को छू लेने वाला सॉन्ग सुनने का।

दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने जब फिल्मों की दुनिया में पहला कदम रखा उस वक्त वो महज 7 साल की थी। इसके बाद इन्होंने कामयाबी का ऐसा रास्ता चुना जिसका हर कोई कायल हो गया। महज इस छोटी सी उम्र में पद्मिनी वो कमाल कर रही थी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते से शुरुआत की और 7 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। फिल्म ड्रीम गर्ल, साजन बिना सुहागन और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्मों से इनके करियर का आगाज हुआ। आगे चलकर महज 15 साल की उम्र में पद्मिनी कोल्हापुरी को रिवेंज ड्रामा फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वहीं 17 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम रोग के लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। दोस्तों, साथ ही फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के लिए इनको फिल्म फेयर का स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मिनी कोल्हापुरी को अपने शुरुआती करियर में ऐसी कामयाबी मिलना सचमुच काबिले तारीफ है। आगे आपको इनकी फिल्मों से जुड़े और भी कई किस्से सुनाएंगे। फिलहाल फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये एवरग्रीन सॉन्ग हम आपको सुनवाते हैं।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नए झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं पद्मिनी कोल्हापुरी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अपने टैलेंट के बलबूते पद्मिनी कोल्हापुरी 80 के उस दशक में टॉप की हीरोइनों में शुमार हो गई थी। अपने 40 साल के लंबे करियर में इन्होंने करीब 75 फिल्मों में काम किया और 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते। पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस के साथ काम किया। राजेश खन्ना के साथ फिल्म सौतन, अनिल कपूर के साथ फिल्म वो 7 दिन, ऋषि कपूर के साथ फिल्म ये इश्क नहीं आसान जैसे शानदार फिल्मों में इनको एक एस्टेब्लिश एक्ट्रेस बनाया। आज भी पद्मिनी कोल्हापुरी बहुत सी फिल्मों में बतौर सहायक भूमिका निभा रही हैं। फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में इन्होंने शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाया था। वहीं पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत में भी इन्होंने एक मजबूत महिला की मजबूत भूमिका निभाई थी। आगे आपको पद्मिनी कोल्हापुरी जी के हिडन टैलेंट के बारे में भी बताएंगे, उससे पहले सुनिए इनके फिल्म सौतन का ये शानदार सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो है खूबसूरत अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी। श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल आ गए हैं और आखिरी सेगमेंट में बढ़ने के पहले मैं पढ़ लेती हूँ आपका मेल। ये पहला मेल आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना का, और ये है साहजी श्रीमती नंदा हनुमान बोटले उत्तम जमदई से, हिंगोली महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला मेल, जो कि है गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजाबाद से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुलराल, अभिराज और गुन्नूर सिंह, शुभदीप सिंह। और आगे बढ़ते हैं, ये हैं हमारे श्रोतागण, ये लिखते हैं कि कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम फिल्म अभिनेत्री पद्मा

मिनी कोल्हापुरी की फिल्मों के गीते सुन रहे हैं। शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी बधाई अवश्य ही स्वीकार करें। ज़रूर धन्यवाद आपका, और आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का है मेल ये। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार है, ये लिखते हैं बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है, बेहतरीन प्रस्तुति भी है, धन्यवाद। नलेश्वर नगर से महाराष्ट्र से PS और निर्मला और विशाल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह और मीता जी हैं हमारे साथ, और ये हैं वेरी हैप्पी एंड हेल्दी संडे, गुड आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम एक ही कलाकार, टुडे यू आर डिस्कस ऑन एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी, सॉफ्ट स्वीट प्रेजेंटेशन, रेयर एंड वैल्यूएबल फिल्म इन्फॉर्मेशन, सुपर सॉन्ग सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और ये है पद्मिनी कोल्हापुरी एक अच्छी कलाकार है, बिल्कुल सही बात, ये है नवी हसन जी। और हम आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये हैं PTI संसद मार्ग से अनिल मोहन जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी जी की। हिंदी फिल्मों के अलावा पद्मिनी ने मराठी सिनेमा में भी काफ़ी काम किया है। कुछ साल कैमरे से दूर रहने के बाद 2004 में पद्मिनी एक्टिंग में वापस लौटी और कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी एक्टिंग के अलावा सिंगिंग भी करती हैं। पद्मिनी ने बचपन से ही संगीत सीखा था। इन्होंने 1973 में फिल्म यादों की बारात में अपनी बहन शिवांगी के साथ कोरस गाया था। इसके अलावा फिल्म किताब, दुश्मन, विधाता, सात सहेलियां, हम इंतजार करेंगे जैसी फिल्मों में भी आवाज दी थी। बहुत कम लोग को ये पता होगा कि पद्मिनी कोल्हापुरी फेमस सिंगर बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नाम की म्यूजिक एल्बम भी बना चुकी हैं। बचपन से ही संगीत में माहौल में पली बड़ी पद्मिनी कोल्हापुरी का संगीत के प्रति प्यार होना लाजमी है। श्रोताओं, पद्मिनी कोल्हापुरी ने मात्र 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी। दरअसल फिल्म ऐसा प्यार कहाँ की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई, और चंद मुलाकातों के बाद 1986 में इन्होंने शादी कर ली। फिर 1990 में इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रियांक शर्मा है, जो कि एक एक्टर है और फिल्म सबकुशल मंगल नाम की फिल्म में काम कर चुका है। 2022 में पद्मिनी कोल्हापुरी को आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस की लिस्ट में रखा गया था। अपनी मासूमियत से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी वाकई एक सच्ची और सशक्त अभिनेत्री हैं। इनकी एक्टिंग के जुनून ने अब तक इनको बॉलीवुड में एक्टिव रखा है। बहुत से रियलिटी शोज़ में और वेब सीरीज़ में भी ये काम कर चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में आपके साथ ऐसी ही किसी शानदार आर्टिस्ट की लाइफ से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिएगा गीत और गुनगुनाते रहिएगा संगीत सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: और फिर क्या होगा?
2: पार्टियां, दावतें,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी कलाकार थी पद्मिनी कोल्हापुरी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
2: प्रेम भरो अभिवंदन।
0: बहना,
1: हाँ सखी,
0: जरा बताओ तो कि आज के कार्यक्रम में हम कहाँ लेके आए हैं।
1: सखी, आज हम अपने श्रोताओं को कवि गोष्ठी सुनवाएंगे।
0: बहना, पर मोए कवि गोष्ठी थे, एक बात याद आई है।
1: कहा?
0: कल 29 जून को संत कबीर दास जयंती हुत मनाई जाएगी और संत कबीर तो हिंदी साहित्य में अपने गूढ़ दोहे और गीत के काजे व्यापक रूप से प्रसिद्ध भई।
1: सखी, संत कबीर को उन महान संतन में गिनो जाए जिन्होंने कर्म कांड को घोर विरोध कियो और सर्व धर्मन को सम्मान करत भये अपने को राम और अल्लाह को पुत्र बतायो।
0: बिल्कुल, बिनन ने कहो है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। बिनन ने कबीर पंथ की स्थापना करी और याको अनुकरण अनेक समुदाय ने कियो। सिख समुदाय के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव ने संत कबीर के लेखन को संकलित करके अपने धर्म ग्रंथ में शामिल करियो।
1: हाँ सखी, संत कबीर की विरासत कबीर पंथ के माध्यम से सदैव जीवित रहेगी और लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: संत कबीर की सभी कविताएं और गीत कई भाषाओं में मौजूद हैं, जिन्हें दोहे, श्लोक और साखी कहो जाए।
0: और ब्रज भाषा में बिनन ने शब्द रची जा में आध्यात्मिक और दार्शनिक पद हैं, जो भक्ति, ज्ञान और प्रेम को संदेश देवे बारे हैं। बहना,
1: हाँ सखी,
0: जैसो भगवत गीता में कहो गयो है ना कि जो सुख दुख में, मान अपमान में, सब परिस्थिति में समान है, इंद्रिय विषंते मुक्त है, सबको संभाव दृष्टि ते देखे, वही मोक्ष को अधिकारी है और याई भाव को मोक्ष कहो गयो है। तो संत कबीर दास की एक ऐसी ही रचना मोए याद आ रही है जो कछु ऐसा ही भाव प्रकट कर रही है।
1: तो सखी सुनवाओ अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओ रविंद्र साठे के स्वर में लियो सुनो कबीर दास जी की जे भावपूर्ण रचना।

0: सखी, कबीर की या रचना के बाद अब हम अपने श्रोतान को काव्य गोष्ठी सुनवा रहे हैं।
1: या मैं प्रतिभागी कौन कौन है जेहू तो बता दियो श्रोतान को।
0: हाँ सखी, या मैं प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर ठाकुर दास शर्मा दिनकर, श्री नवाब केसर, श्री किशोर कुमार कौशल, श्री दरियाब सिंह राजपूत और श्री कुमार दत्त शर्मा। तो आओ श्रोताओ, या कवि गोष्ठी को आनंद लो।
2: राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भैया आज जा ब्रजमादरी कार्यक्रम में कवि गोष्ठी को आयोजन कियो जा रहे हो है, तो सर्वप्रथम जा गोष्ठी को प्रारंभ में एक छंद सो कर रहे हूँ।
3: स्वागत है भैया।
2: गणपति वंदना को छंद देखो,
4: बहुत बढ़िया,
5: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
2: देव न के देव महादेव के सपूत आप, गौरी के दुलारे प्यारे गज मुखवारे हो।
3: क्या बात है।
2: गेहूं वरन पे अरुण है बसन धारे, श्वेत पटका में आप लागो सुकुमारे।
3: क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात
2: है। ऊंचो है ललाट व पे मुकुट विराट बंध्यो,
3: बहुत
2: माथे पे तिलक गले मोती माल डारे हो। गणपति वंदना के प्रारंभ कियो है जो हमारी गोष्ठी सफल होए गणपति के पासों। और मैं सर्वप्रथम आवाज दे रहे हूँ कुमार दत्त कुमार जी को। आपको स्वागत है कुमार दत्त कुमार जी।
3: स्वागत है भैया।
5: सुने वालन को राम राम। आप सबने ब्रज भाषा में बहुत से गीत सुने होंगे, भजन सुने होंगे। ये ब्रज भाषा इतनी मीठी भाषा क्यों है, याई के ऊपर एक मैंने गीत लिखो है।
3: स्वागत है भैया।
5: कि ब्रज को मीठो मीठो बोल, ब्रज को मीठो मीठो बोल, जैसे शहद दियो घोर, भाषा ऐसी दुनिया में नाए कौ और। ब्रज को मीठो मीठो बोल, जैसे शहद दियो घोर, भाषा ऐसी दुनिया में नाए कौ और। काना ने ब्रज भूमि पे गईया चराई हैं, ब्रज की मीठी धुन पे बांसुरी

0: जैसे मिस्री दई घोर,
1: बहुत बढ़िया
0: भाषा
1: बहुत बढ़िया,
0: ऐसी दुनिया में नाए कऊ
1: वाह वाह
0: और।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: जी
1: वाह वाह
0: वाह।
1: वाह, क्या बात है।
0: सूरदास ने ब्रज में कृष्ण लीला गाई है, रस खान ने तो ब्रज में भक्ति सुनाई है। जैसे दुल्हन करे श्रृंगार, जैसे रस की उड़े
1: वाह
0: फुहार, जैसे गर्मी में सीरी ब्यार, जैसे माँ बेटी को
1: प्यार,
0: प्यार,
1: बहुत
0: भाषा
1: बढ़िया।
0: ऐसी दुनिया में नाए कऊ और।
1: और
0: बांके बिहारी को ऐसो रंग छावे है, जो भी आवे ब्रज में ऊ राधे राधे गावे है।
1: ये
0: जैसे चिड़ियन को हो
1: शोर,
0: शोर, जैसे मन में
1: हाय
0: उठे
1: हाय, क्या
0: हिलोर,
1: बात है क्या
0: जैसे
1: बात है
0: पतंग
1: भैया
0: में
1: जी,
0: छोड़ी डोर,
1: डोर बहुत
0: जैसे
1: सुंदर बहुत
0: डोर को
1: सुंदर,
0: ना हो
1: छोर
0: छोर,
1: क्या बात है
0: भाषा
1: भैया, ऐसी
0: ऐसी दुनिया में
1: क्या बात है,
0: नाए
1: वाह
0: कऊ और।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: सुंदर
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह,
0: सुंदर,
1: क्या
0: धन्यवाद
1: बात,
0: जी।
1: कमा
0: ऐसी मिठलोनी
1: हाँ
0: भाषा, माखन टपका दियो साहु कुमार
1: बहुत
0: दत्त कुंवर जी ने,
1: बहुत सुंदर,
0: बड़ा
1: धन्यवाद,
0: आनंद कर
1: आनंद
0: दियो
1: आया
0: कुंवर जी।
1: भैया
0: इन
1: जी,
0: चार पंक्तियों से आवाज दे रहे हूँ,
1: स्वागत है, वाह
0: सखियां
1: हाँ
0: अखियां
1: हाँ
0: ऐसी अटकी,
1: या
0: जा
1: माखन,
0: माखन चोर चकारे थे, माथे पे मुकुट कानन कुंडल, नैना विशाल कजरा रे थे। समझाएं बहुत,
1: जी
0: समझाएं बहुत
1: और
0: और
1: बचाएं
0: बचाएं
1: बहुत,
0: बहुत, समझ ही नहीं नेक संहारे थे, अब
1: हाँ
0: लागी रहो दिन रात प्रिय वृंदावन बंसी वारे।
1: बात,
0: अब जा गोष्ठी में नवाब केसर जी को, केसर की महक आवेगी
1: स्वागत है,
0: जिनके
1: स्वागत है भैया
0: इनके
1: जी,
0: गीतन में, इनके चंदन में, तो एक बार कुमार नवाब केसर जी स्वागत है जी।
1: सब भैयन को राम राम।
0: राम राम जी, राम
1: आज
0: राम,
1: तो भैया आपकी सेवा में एक लोकगीत लाया हूं,
0: वाह
1: बहुत
0: स्वागत,
1: बढ़िया,
0: बहुत बढ़िया,
1: स्वागत है भैया। ले आ गए हो बदराकारो, ब्यार चले पुरवाई सनासन,

अंगड़ाई ले मोरा नाचे लागे प्यारो प्यारो लियो आ गयो बदिरा कारो लियो आ गयो बदिरा कारो। अरे घोर

0: चल
1: जय जय जय
0: हरो हरो धरती को चल बरसाने कर डारो
2: कारो
0: अरे प्यार चले पुरवाई सनासन हाले जिया हमारो लिव आ गयो बदरा कारो लिव आ गयो बदरा कारो
1: और अभी आए गयो बदरा कारो सुना रे नवाब केसर जी रस परिवर्तन करवे के लिए मैं आवाज दे रहे हूँ हमारे बहुत ही मधुर कवि किशोर कुमार कौशल जी को
3: स्वागत है
1: इनके शब्दन में कौशलता है भावन में कौशलता है स्वागत है कौशल
3: स्वागत है
2: ये जेठ को महीना है और जेठ के महीना के आखिर में संत कबीर की जयंती आ रही है सो इतने बड़े संत की याद में मैंने एक पद रचो है
3: स्वागत है
2: के

0: एक निर्मल संत कबीर।
1: ये है किशोर कुमार कौशल, कबीरदास जी की वाणी, कबीरदास जी के सिद्धांत, अंधविश्वासन की काठ, सभी इनके पदन में सुना।
2: क्या बात है।
1: पदन की बात आई तो मेरे हूँ मन में प्रेरणा मिली मोए किशोर जी से, तो मैं एक पद सुनाऊं।
3: स्वागत है,
1: स्वागत है। संतन की बात आई कबीर की
3: जी,
1: तो संतन में मीरा आवे
3: जी।
2: अरे
1: बिल्कुल, तो मीरा की बात या पद में देखो।
3: बिल्कुल, स्वागत है साहब।
1: मीर

0: कीर्तन ठिठुरत रात बितानी, हिंसक पशु दूर लख भाजे, चाटत पामरग रानी, चाटत पामरग रानी, मीरा गिरधर की दीवानी।
1: बहुत सुंदर
0: जी। तन मन कियो कृष्ण को अर्पण, तनक नहीं घबरानी, भोग विलास रजी ठकुराई, राना की रजधानी, राणा की रजधानी, मीरा गिरधर।

0: विष को प्यालो राना भेजो तनक नहीं
1: नहीं।
0: सकुचानी।
1: हाँ
0: हरि अर्पण कर पी गई मीरा
1: गट
0: जैसे घट
1: गट
0: घट पानी।
1: पानी। हाँ
0: मीरा गिरधर की दीवानी। धन्य गुरु रैदास आपको ज्ञान भक्ति रस खानी।
1: खानी। हाँ
0: चरण
1: क्या
0: परो
1: आनंद
0: ब्रज
1: आएगा,
0: कन सतगुरु की
1: बहुत सुंदर।
0: तारों में
1: क्या बात
0: अज्ञानी।
1: है, मीरा
0: मीरा
1: गिरधर की
0: गिरधर की
1: दीवानी,
0: दीवानी।
1: जितनी
0: बहुत
1: मीरा
0: सुंदर,
1: गिरधर
0: बहुत
1: की
0: सुंदर, सुंदर,
1: दीवानी,
0: बहुत बढ़िया।
1: ऐसे ही हमारे राजपूत जी भी गिरधर के दीवाने।
0: और अब मैं वरिष्ठ कवि भागवताचार्य हूँ हैं वो
1: जी
0: आज स्टूडियो में आए भाई, हमारा सौभाग्य,
1: जी
0: ब्रजमंडल वासी उनको सौभाग्य। तो
1: हाँ
0: मैं डॉक्टर ठाकुरदास शर्मा दिनकर जी को
1: हाँ
0: आवाज दे रहे हूँ, स्वागत है डॉक्टर साहब
1: ब्रजभाषा
0: आपका।
1: के प्रेमी सब भैया बहनन को हमारी
0: राधे
1: ओर से
0: राधे,
1: राधे राधे।
0: राधे राधे,
1: राधे
0: राधे
1: राधे
0: राधे,
1: राधे।
0: राधे
1: स्वागत
0: राधे।
1: है भैया। इन तीन कवि महोदय ने आपके समक्ष अलग-अलग भाव के या तो गीत प्रस्तुत करे या पद प्रस्तुत करे। मैं सोच रहा हूं कि एक नई विधा दोहा
0: वाह वाह वाह
1: सुनाऊं।
0: वाह,
1: हाँ, तो
0: स्वागत
1: आप
0: है,
1: दोहन को आनंद ले।
0: स्वागत
1: जी
0: है,
1: और दोहन
0: स्वागत।
1: को शीर्षक रखो है मैंने, दोहन में सुभाषतानी। हाँ, कछु नीति प्रद बातें दोहन के माध्यम से आप लोगों को सुनाए रहे हूं।
0: स्वागत है
1: जी
0: डॉक्टर साहब,
1: स्वागत
0: स्वागत
1: है।
0: है, स्वागत है।
1: प्रथम ज्ञान गुरु शास्त्र सो
0: जी
1: और दूजो सखा बताएं,
0: जी
1: तीजे सीख समाज की अनुभव शेष
0: क्या बात है,
1: सिखाए।
0: क्या बात है,
1: अनुभव
0: क्या बात,
1: शेष
0: बहुत सुंदर, क्या बात है
1: सिखाए।
0: डॉक्टर साहब।
1: अब गहनों का है शरीर को, क्या चीज कहाँ शोभा दे,
0: जी
1: या को वर्णन करने की कोशिश करी है।
0: जी
1: कर को भूषण दान है और मुख को भूषण ज्ञान। शास्त्र कर्ण भूषण कहे, शास्त्र कर्ण भूषण कहे, मन को भूषण
0: वाह वाह वाह,
1: ध्यान।
0: मन को भूषण ध्यान,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: सुंदर,
1: वाह
0: मन को भूषण
1: वाह,
0: ध्यान
1: क्या
0: लिखा है, वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात करी
0: वाह
1: है साहब।
0: वाह वाह डॉक्टर साहब,
1: अब
0: बहुत
1: तन और मन के
0: बहुत
1: स्वस्थ
0: सुंदर
1: रखने की खातिर हमें कहा करना चाहिए, या दिशा में कभी कोई विचार है।
0: जी।
1: तन जितनो घूमत फिरे,
0: आए हाय,
1: तन जितनो घूमत फिरे
0: वाह
1: और सेहत को अनुकूल,
0: हाँ
1: स्वास्थ्य सही रहेगा,
0: जी,
1: सेहत को अनुकूल, मन ठहरो
0: अनुकूल।
1: अनुकूल है, चंचल होए
0: वाह वाह
1: प्रतिकूल।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
1: चंचल
0: बात है,
1: होए
0: होए प्रतिकूल,
1: प्रतिकूल।
0: डॉक्टर साहब
1: क्या
0: बहुत सुंदर लिखी,
1: बात है डॉक्टर
0: बहुत
1: साहब।
0: सुंदर
1: अगले दोहा
0: लिखी
1: में देखो बंधुओं
0: जी
1: के कठिन परिश्रम और जीवन में आने वाले दुख
0: जी
1: दोनों को आपस में सामने दिखाए हुए।
0: जी
1: कठिन परिश्रम और दुख जीवन भर है खास, कठिन परिश्रम और दुख जीवन भर है खास। दुख मन को निर्मल करत, श्रम सो होत
0: बहुत
1: विकास।
0: वाह भाई वाह, बहुत
1: दुख
0: सुंदर,
1: मन
0: क्या
1: को
0: बात है,
1: निर्मल
0: क्या बात है,
1: करत,
0: बहुत बढ़िया,
1: श्रम सो
0: वाह
1: होत
0: डॉक्टर
1: विकास। अब जीवन हम कैसे सफल बनावे अपनों,
0: जी।
1: या विषय में विचार सुनो कवि के जीवन सफल बनाए और मंत्र एक गहले, कदम भले ही फिसलिए
0: हाँ
1: जुबान
0: जय
1: फिसलन
0: जय जय, वाह
1: दे।
0: वाह
1: हाँ,
0: वाह, क्या बात,
1: कदम
0: वाह वाह
1: भले
0: वाह वाह,
1: ही
0: एक फिसल,
1: फिसलिए
0: हाँ
1: जुबान फिसलन देव।
0: क्या बात है
1: जीवन में लोग मांगते हैं, मंगताओं को कछु न कछु देना चाहिए,
0: जी
1: ऐसा मेरा विचार है।
0: जी
1: जो मांगे ताई
0: क्या
1: दीजिए
0: बात है
1: और
0: डॉक्टर
1: मेटो उर संताप,
0: साहब,
1: मेहर भई दातार की और मंगता करे न
0: वाह
1: आप।
0: वाह
1: मेहर भई
0: वाह डॉक्टर साहब,
1: दातार
0: बहुत
1: की
0: बहुत बड़ी बात है,
1: मंगता करे न आप।
0: बहुत सुंदर।
1: जीवन और बांसुरी की समानता को वर्णन किया है।

0: अनेक जीवन सरगम साधिके पावौ राग अनेक। और भगवान शंकर जी के विषय में मथत सिंधु विष जब मिल्यो ओ पियो न देव अदेव
1: जी
0: न तो सुर न पियो न असुर न पियो। मथत सिंधु विष जब मिल्यो पियो न देव अदेव काल कूट विष पियत ही शंभु भये महादेव। काल कूट विष पियत ही
2: शंभु भये महादेव
0: महादेव। और हमारी आपकी सवन की एक जैसी अवस्था है। धन जोड़त जीवन गयो और धन धन जप्यो अधीर जिन जोड़ो हरि भजन धन ओ कृपा करी रघुवीर। कृपा करी रघुवीर।
1: बहुत सुंदर।
0: अब परमार्थ को विशेषता सुनो। पर हित मेघा बरसते ओ वृक्ष करें फलदान परहित गिर नदिया बहे ओ परहित सो कल्याण। अब क्षमा
3: बड़ी
0: महत्ता पे क्षमा धर्म तप यज्ञ सी ओ क्षमा सत्य अरुदान क्षमा धरा गौरव अटल क्षमा करति कल्याण। क्षमा शीलता सबल कु ओ शोभा देती अपार कहां निबल कु शोभती व्यथा कहत संसार। कहां निवल कुशोती व्यथा कहत संसार।
3: राधे
0: अब भाई लोगों आप सवन तो प्रार्थना करें कि हमारे बीच जो जैसे तुलसीदास जी कहें नट मरकत एवं समय नचावत राम खगेश वेद असगावत। हम सब कवीन बंधुन को जोड़ व्यवहारे हमारे भैया जो कभी हम संचालन कर रहे हैं निवेदन दरियाब सिंह जी सो क्या दरियाब सिंह जी अपनी सुंदर मधुर रचना सुनावे। स्वागत है
2: आप सवन को नमन करते भय। आज हमारे संतति बुजुर्गन को बड़ा सम्मान कर रही है साहब।
0: कैसे
2: सम्मान ऐसा कर रही है कि वृद्धाश्रम में भेज रही है।
0: सही
2: सम्मान है रो साहब। तो एक गीत में प्रयास देखो
3: बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है।
2: मात पिता की करी न सेवा संबंधन को तोड़ गयो
0: क्या बात है।
2: कलयुग को मेरो सर्वन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। कलयुग को मेरो सर्वन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। बड़े प्यार थे बहु बेटा ने अपनो फर्ज निभायो है। बड़े प्यार थे बहु बेटा ने अपनो फर्ज निभायो है। दो जोड़ी कपड़ा धर मेरे तीर्थ कराए वे लायो है। भूख प्यास की बात न पूछी भूख प्यास की बात न पूछी सांझ भई मुंह मोड़ गयो। कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। लाड़ प्यार ते पाल पोस के या कु खूब पढ़ायो सोनो चांदी गिरवी धर के या को ब्याह रचायो। ऐसे दारुण दुख दिए मुए ऐसे दारुण दुख दे मुए तन सो प्राण छोड़ गयो। कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। झर झर आंसू झरे आँखों होठ तरस रहे पानी को। झर झर आंसू झरे आँखों होठ तरस रहे पानी को। बूढ़ो बाबा वृद्धाश्रम को पूछे मेरी कहानी को। माथो धुन धुन रात बीत गई आप चैन सो पड़ गयो। कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। वृद्धाश्रम में छोड़ मात पिता की करी न सेवा संबंधन को तोड़ गयो। भूख प्यास की बात न पूछी सांझ भई मोह मोड़ गयो। सांझ भई मोह मोड़। और भैया अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुन रहे कवि गोष्ठी जहाँ कवि गोष्ठी में भाग लेवे वाले कवि है डॉक्टर ठाकुर।

0: आज शर्मा दिनकर, नवाब केसर जी, कुमार दत्त कुमार जी, किशोर कुमार कौशल जी, या गोष्ठी को हम यही विराम दे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा,
1: जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
2: श्रोताओ, अभी आपने या कवि गोष्ठी को आनंद लियो, या गोष्ठी को संचालन कर रहे थे दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकर्ण। अब यही के संग ही हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही संपन्न हो गए है। मोको यानी के वंदना को
3: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाए वे की अनुमति देओ।
2: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
3: विवेक कुमार तोमर।
4: अभी आप सुन रहे थे ब्रज माधुरी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार प्यारे बच्चों और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारा प्यार भरा शो जिसका नाम है रेडियो किड्स, और मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारी मौज मस्ती इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ हैं प्यारे प्यारे और छोटे छोटे बच्चे। तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम जैनब है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम पंचल गुप्ता है, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ।
3: मेरा नाम अलीशा यादव है और मैं 2nd D में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम आयुष तिवारी है, मैं 2री क्लास में पढ़ता हूँ।
0: तो हमने इनका नाम तो जान लिया, लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये मजेदार सफर शुरू करें, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ये गीत सुनकर तो बहुत ही मजा आया। अच्छा तो ये बताओ बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों में कितना जादू होता है?
1: कैसे?
2: वो कैसे?
0: क्योंकि इन हाथों की मदद से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप क्या क्या बनाते हो हाथों की मदद से? जैसे कि गुड़िया, नाव और
2: ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट।
0: आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या बनाते हो आप?
2: जैसे कोई ग्रीटिंग कार्ड या और भी बहुत वगैरह चीजें।
0: हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो चलो मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ गुड्डू की। तो एक बच्चा था गुड्डू, उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो पतंग उड़ाने लगा तो उसकी पतंग फट गई और वो रोने लगा। जब वो अपनी दादी माँ के पास गया तो उसकी दादी माँ ने कहा, इसमें रोने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों में होता है
1: जादू।
0: जादू, और हम इन हाथों की मदद से अब एक नई पतंग बना लेंगे। जैसे ही उसने अपनी दादी माँ के साथ नई पतंग बनाने की कोशिश की तो उसने नई पतंग बना ली और उसे बहुत मजा आया, क्योंकि उसने अपने हाथों के इस्तेमाल से क्या बनाई?
1: पतंग।
0: तो जब भी हमारा कोई सामान टूट जाए या खो जाए तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना, रोना नहीं, करना क्या है?
2: उसे फिर से बनाना।
0: तो अब आप घर जाके क्या क्या बनाओगे?
2: ग्रीटिंग कार्ड
0: और
3: एरोप्लेन,
2: नाव।

0: चलिए अब हम चलते हैं जैनब के पास। तो जैनब, आज आप हमें क्या सुनाओगे?
1: आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, बिल्ली। म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ, किसको छोड़ू किसको खाऊं, एक तरफ है दूध मलाई एक तरफ है चुईया आई। म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ। धन्यवाद,
0: जोरदार तालियां। आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। और आप पंशुल, आप हमें क्या सुनाने वाले हो?
2: मैं आपको चींटी की कविता सुनाऊंगा। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम कर आग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी।
0: पंशुल और जैनब दोनों ने ही हमें जानवरों पे कविता सुनाई, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आपसे पूछने के लिए। क्या मैं पूछूं?
3: हाँ दीदी।
0: तो बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि दिन में सोता है और रात में जागता है?
3: उल्लू।
4: उल्लू,
0: उल्लू। चलो, हमारे सभी बच्चों को इसका जवाब पता था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर हमारा शो रेडियो किड्स, जिसमें मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि, और आज आए हैं हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम को और ज्यादा मजेदार बना रहे हैं अपनी कविताओं से। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दोस्त आयुष के पास। आयुष, आज आप हमें क्या सुनाओगे?
5: बादल के ऊपर।
0: तो सुनाइए।
5: काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर जाए, जैसे काले कंबल लगते कितने सुंदर बादल।

0: पाए बादल बढ़ से बरखा आए।
1: अच्छा आयुष ये बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में?
0: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश।
1: अच्छा इंग्लिश पसंद है, ऐसा क्यों?
0: उसमें अलग अलग वर्ड सीखते हैं और मजा भी आता
1: है। यानी बच्चों को हर चीज में मजा चाहिए, है कि नहीं?
0: हाँ दीदी।
1: तो मजे से मुझे याद आया कि मजे करने के लिए और आप लोग क्या क्या करते हो?
2: खेलते हैं।
1: अच्छा खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलते हो?
3: बर्फ पानी,
4: पकड़न पड़ाई,
5: चैंटोर, छुपन छुपाई।
1: अच्छा तो आप किसके साथ खेल खेलते हो? दोस्तों के साथ खेलते हो या अपने मम्मी पापा के साथ खेलते हो या भाई बहन के साथ खेलते हो?
4: भाई बहन।
6: दोस्तों के साथ।
1: अच्छा तो आप में से कोई है जो अपने मम्मी पापा के साथ भी कोई गेम खेलता हो?
4: मैं खेलता हूँ।
1: अच्छा आप कौन सा गेम खेलते हो?
4: छुपन छुपाई।
1: छुपन छुपाई, और कैसे खेलते हो बताओ थोड़ा सा।
4: पापा गिनती करते मैं छुपता हूँ।
1: अच्छा तो मम्मी पापा के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है या दोस्तों के साथ?
4: मम्मी पापा।
3: दीदी मैं एक गेम जानती हूँ जिसमें हम खेल खेल में पढ़ाई भी सीख सकते हैं।
1: अरे वाह, इससे ज्यादा मजेदार बात क्या होगी बच्चों के लिए कि अगर वो खेल खेल में पढ़ाई सीख सके। तो आप मुझे बताओ वो कौन सी गेम है?
3: जैसे कि हमने 3 कटोरी ली है, उसमें हमने 1 गिलास जोड़ा तो 3 से वो 4 हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा।
1: अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। आप में से कोई और बच्चा भी ऐसा है जो कि ऐसे खेल खेल में पढ़ाई भी करता हो? आप भी करते हो, आप क्या करते हो?

0: मेरी मम्मी पूछती है दीवार पे कलर कौन से, मैं बता तू रेड है ब्लैक है ये बता तू मैं।
1: अरे वाह, आज के इस कार्यक्रम में तो मुझे एक नई बात जानने को मिली कि बच्चे खेल खेल में भी पढ़ाई सीख रहे हैं। अच्छा, और भी कोई खेलता है?
2: दीदी मैं।
1: क्या खेलते हो?
2: लेकिन मैं पढ़ाई में खेलता हूँ।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: क्योंकि हम टीचर टीचर खेलते हैं।
1: टीचर टीचर तो मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा खेलती थी।
3: दीदी हमें इसमें स्टूडेंट वाली फीलिंग आती है, जैसे कि हम असलियत में कोई स्टूडेंट और हमारे सामने असलियत में कोई टीचर खड़ी है और हम उससे पढ़ाई का भी कुछ सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करूंगी कि आप खेल खेल में और पढ़ाई सीख के आना जब हम मिलेंगे, ठीक है? पक्का वादा?
4: हाँ दीदी।
1: चलो ठीक है।
5: मेरा नाम अलीशा यादव है। मेरी कविता का शीर्षक है भारतीय सैनिक। बर्फीली चोटियों पर गूंजती वीरता की गाथा, भारतीय सैनिकों की साहस की परिभाषा। कृत्रिम संकटों में फंसे ये भक्त, सिपाहियों की मानवता ने किया उन्हें मुक्त। प्राकृतिक आपदा की विकराल छाया, हर दिशा में मची थी हाहाकार की माया। पर सैनिकों ने बढ़ाया मदद का हाथ, निर्भीकता से दिया एक दूसरे का साथ। हर जवान बना देवदूत का सिपाही, मची थी चारों ओर भयंकर तबाही। आशीर्वादों की गूंजों ने बढ़ाया सिपाहियों का मान, वीर सपूतों ने बचाए अंगिनत जनों के प्राण। कृपा का गौरव हृदय का स्वाभिमान, सैनिकों की वीरता का अमित यशगान। ना देखे कोई जीव ऐसा दृश्य द्वारा, भारत के रक्षक तुम्हें सलाम हमारा। धन्यवाद, जय हिंद।
1: तो अब समय हो चुका है एक गीत का, तो चलिए सुनते हैं ये प्यार।

0: अरे वाह, ये गीत सुन के ऐसा लगा मानो कि इस गीत के जरिए हमने रेडियो पर ही पहाड़ों की सैर कर ली हो, है ना?
1: यस दीदी।
0: तो आप में से कोई कभी पहाड़ों पर घूमने गया है?
2: हाँ दीदी, मैं गया।
0: अच्छा आप गए हो, तो आप कहाँ गए थे?
2: मैं मसूरी।
0: मसूरी गए थे, तो आपने क्या क्या देखा वहाँ पर?
2: मैम मैंने वहाँ पे पहाड़ देखे और मैंने बर्फ भी देखी वहाँ पे।
0: अच्छा, और आपने क्या क्या किया वहाँ जाकर? मौसम कैसा था वहाँ का?
2: मैम वहाँ पे ठंड थी बहुत।
0: क्योंकि पहाड़ का नज़ारा होता ही इतना सुंदर है ना? चारों तरफ हरियाली और बहुत अच्छी हवा, नदियाँ, पानी। अरे वाह, और कौन कौन जाना चाहता है पहाड़ों पर?
3: दीदी मैं।
0: आप जाना चाहते हो, और वहाँ जाकर क्या करना चाहते हो?
3: दीदी बहुत सारा खेल, और हम वहाँ जान के भी आएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है।
0: तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पहाड़ों की सैर करने जरूर जाएंगे, है ना?
3: हाँ दीदी।
0: पहाड़ों से आपको सीखने को क्या मिलता है? कुछ सीखने को मिलता है पहाड़ों को देखकर?
4: हाँ दीदी।
0: अच्छा ठीक है, प्रीति आप बताओ सबसे पहले कि पहाड़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है?
4: मजबूती।
0: वाह प्रीति, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए। आज तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों से बातें करके, इनकी कविताएं सुन के बहुत मजा आया, आया कि नहीं?
5: हाँ दीदी, बहुत मजा आया।
0: और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी मजा आया होगा। तो अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है fmgradiokids@gmail.com। हमें उम्मीद है कि आप हमें ढेर सारे मैसेज करेंगे और अपना प्यार देंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, प्रकृति का ख्याल रखना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे यानी कि अंजलि को दीजिए इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे कालीग्राम रेडियो किड्स।
1: राजनीति की चाल से
2: दुनिया के हाल तक,
3: खेल के मैदान से किसान के खलिहान तक,
4: दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे,
1: खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम,
3: सटीक और भरोसेमंद खबरें।
2: खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी।
1: देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
0: याकश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: 印度的广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम जी हां रविवार की शाम और आज के इस अंक में है बहुत कुछ लेकिन कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल
3: और शिवांश
2: जी हां रविवार की शाम जैसा हमने कहा और फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है शिवांश तो उसकी बहुत सारी जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे क्योंकि राउंड ऑफ 32 के मैच भी शुरू होने वाले हैं इसके अलावा विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज एक मैच खेला जाने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेमीफाइनल की दौड़ में भारत को बने रहने के लिए राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो

रही है 65वीं भुवनेश्वर में, वहां से बहुत कुछ है, नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे हैं और आज शाम भी बहुत कुछ वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैडमिंटन चल रहा है, यूएस बैडमिंटन, जहां पे सेमीफाइनल के मैच खेले गए, वॉलीबॉल से कुछ खबरें हैं और उसके अलावा वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग से भी बहुत कुछ है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो फुटबॉल यानी कि फीफा 2026 वर्ल्ड कप से क्या खबर है, आइए सुनते हैं मेरे साथी शिवांश की ये रिपोर्ट।

नमस्कार। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण का सफर अब पूरा हो चुका है। भारतीय समय अनुसार बीती रात और आज के खेले गए आखिरी 6 लीग मुकाबलों के बाद अब नॉकआउट चरण की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी चमक बिखेरी, कई युवा सितारों ने दमदार छाप छोड़ी और कई आखिरी मिनट तक चला संघर्ष मैच का नतीजा तय करता रहा। आइए आपको लिए चलते हैं विश्व कप की इस रोमांचक फुटबॉल रात के सफर में। सबसे पहले रुख करते हैं डलास स्टेडियम का, जहां अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर ग्रुप चरण का समापन जीत के साथ किया। 24वें मिनट में जियोवानी लो सेल्सो ने शानदार गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद मिले पेनल्टी अवसर को लाउतारो मार्टिनेज ने गोल में बदलकर अंतर 2 गुना कर दिया। दूसरे हाफ में जॉर्डन के कप्तान मूसा अल तमारी ने गोल कर मुकाबले में रोमांच लौटाने की कोशिश की, लेकिन 80वें मिनट में लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 6ठा गोल दागते हुए अर्जेंटीना की जीत पर मुहर लगा दिया। अब चलते हैं न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम, जहां इंग्लैंड ने पेनामा को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में जूड बेलिंगहम ने बुकायो साका के कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाकर गतिरोध तोड़ा। इसके बाद हैरी केन ने बेलिंगहम के सटीक क्रॉस को गोल में बदलते हुए विश्व कप में अपना 11वां गोल दर्ज किया और इंग्लैंड के लिए विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ग्रुप एल के दूसरे मुकाबले में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। लुका ने पहले हाफ में बेहतरीन गोल से शुरुआत की। घाना ने डेरेक लुकासेन के गोल से बराबरी हासिल की, लेकिन 83वीं मिनट में कप्तान लुका के कॉर्नर पर निकोला के शानदार हेडर ने क्रोएशिया को जीत दिला दी। उधर अटलांटा के मर्सिडीज बेंस स्टेडियम में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया। शुरुआती झटके के बाद टीम ने शानदार वापसी की। योआने विस्सा ने 2 गोल किए, जबकि फिस्टन माइले ने 1 गोल जोड़कर जीत सुनिश्चित की। इस जीत के साथ डीआर कांगो पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंच गया। मियामी के हॉर्ड रॉक स्टेडियम में कोलंबिया और पुर्तगाल के बीच खेला गया मुकाबला भले ही गोल रहित रहा, लेकिन खेल की गति और दोनों टीमों की रक्षा पंक्ति ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कोलंबिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। इस परिणाम के साथ दोनों टीम अगले दौर में पहुंचने में सफल रही, जबकि कोलंबिया ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहा। और अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसने आखिरी क्षण तक रोमांच बनाए रखा। कैंसस सिटी में अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच खेला गया मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इंजरी टाइम में 90+3वें मिनट पर रियाद महरेज ने गोल कर अल्जीरिया को बढ़त दिला दी, लेकिन मैच समाप्त होने से ठीक पहले 90+6वें मिनट में साशा ने बराबरी का गोल दाग कर ऑस्ट्रिया को हार से बचा लिया। रोमांच परिणाम के साथ दोनों टीमों ने नॉकआउट चरण में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। इसके साथ ही फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण का समापन हो गया है। अब प्रतियोगिता अपने सबसे रोमांचक दौर में प्रवेश करेगी, जहां हर मुकाबला नॉकआउट होगा और हर जीत टीम को विश्व चैंपियन बनने के सपने के एक कदम और करीब ले जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप फेज के मैच खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब राउंड 32 के मैच खेले जाएंगे। इन मैचों के लिए सभी 32 टीमों का ऐलान हो चुका है, जबकि 16 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। यह टूर्नामेंट 48 टीमों के साथ शुरू हुआ था, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 4-4 टीमों को जगह दी गई थी।
ही हर एक ग्रुप से टॉप टू टीमों को राउंड 32 का टिकट मिला, जबकि कुछ नंबर 3 की टीमों को भी आगे जाने का मौका मिला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए से मेक्सिको और साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है, जबकि ग्रुप बी से 3 टीमों की किस्मत चमकी है। स्विट्जरलैंड, कनाडा और बोस्निया टीम ने भी राउंड 32 में जगह बनाई है। ग्रुप सी से ब्राजील और मोरक्को की टीम आगे जाने वाली है। ग्रुप डी की बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे की टीम आगे के मैचों में खेलने वाली है। ग्रुप ई से जर्मनी, कोटे डिलवोयरे और इक्वेडोर टीम ने राउंड 32 के लिए क्वालिफाई किया है। ग्रुप एफ से नेदरलैंड्स, जापान और स्वीडन की टीम राउंड 32 में पहुंची है, जबकि ग्रुप जी से बेल्जियम, इजिप्ट और ईरान को एंट्री मिली है। ग्रुप एच से स्पेन और कोप वर्दे को की टीम आगे खेलेगी। वही ग्रुप आई से फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगल की टीम आगे जाएगी। ग्रुप जे से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया ने बाजी मारी है। के ग्रुप से कोलंबिया, पोर्चुगल और कॉन्गो डीआर राउंड 32 में होगी। ग्रुप एल से इंग्लैंड, क्रोएशिया और घाना की टीम राउंड 32 के लिए क्वालिफाई कर गई है। आइए अब आपको बताते हैं राउंड 32 के मुकाबलों के बारे में। साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा का मैच होगा, नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच में मैच होना है, जर्मनी और पैराग्वे के बीच मैच होगा, फ्रांस और स्वीडन के बीच, बेल्जियम और सेनेगल के बीच, यूएसए और बोस्निया के बीच और स्पेन ऑस्ट्रिया के बीच। इसके बाद पोर्चुगल और क्रोएशिया के बीच होगा मैच और ब्राजील और जापान के बीच में, फिर कोटे दी आइवोरे और नॉर्वे के बीच में मैच होगा, उसके बाद मेक्सिको और इक्वेडोर के बीच, फिर इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच और होगा, इसके बाद स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच मुकाबला, उसके बाद कोलंबिया और घाना के बीच मुकाबला होगा और फिर ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट और आखिर में अर्जेंटीना, कैबो वेर्दे के बीच।

0: तो दोस्तों, ये तो बात हुई फीफा वर्ल्ड कप की। इसके बाद आपको ले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया की ओर। बताइए अतुल, क्या कुछ खास है आपके पास?
1: आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे पहले बात आज शाम के सबसे बड़े मुकाबले की, जहां भारत और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में आमने सामने होंगी।
2: The rivalry between India and Australia has kind of blossomed over the last few years.
1: यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की दौड़ के लिहाज से बेहद अहम है। भारत के लिए समीकरण साफ है, जीत से सेमीफाइनल का टिकट लगभग तय हो जाएगा, जबकि हार की स्थिति में टीम को अन्य मैचों के परिणामों और नेट रन रेट पर निर्भर रहना पड़ सकता है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और अरुंधति रेड्डी पर अहम जिम्मेदारी रहेगी।
3: The factor that will decide India versus Australia game would be in the middle order of India. Harman can actually play a major role in that middle overs, but she's coming lower in the order.
1: दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम बेथ मूनी, एशले गार्डनर और मेगन शूट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर एक बार फिर जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।
2: I think ending the round game with such a big match is actually really exciting.
1: बात करें कल खेले गए अन्य मुकाबलों के नतीजों की तो आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड ने ओरला प्रेंडरगास्ट के शानदार 63 रन की बदौलत 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि इस हार के बावजूद वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने डेनी वॉयट हॉज और सोफिया डंकली की नाबाद 128 रन की साझेदारी की बदौलत 17.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार के साथ मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट में सफर भी यहीं समाप्त हो गया। वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 37 रन से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से गुल फिरोजा ने 52 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। जवाब में नीदरलैंड्स की पूरी टीम 89 रन पर सिमट गई। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, लेकिन पाकिस्तान ने जीत के साथ अपना अभियान समाप्त किया। जी हाँ, ये तो हुई कल के मैचों की बात, और आज भी एक मैच खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में शिवांश, जहां पे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की महिला टीमें आमने सामने हैं। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 117 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, और साउथ अफ्रीका, जी हाँ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका 13.1 ओवर में 82 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 41 बॉलों में 36 रन बनाने हैं, और मैच काफी हद तक दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में नजर आ रहा है। और ये तो बात हुई महिला क्रिकेट की, और बात करें इंडिया और आयरलैंड के मेंस जो T20 मैच है उस सीरीज की, वहां पे 2 मैचों की सीरीज में पहला मैच जो है भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जब मेजबान आयरलैंड ने 34 रन से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत पर आयरलैंड की पहली जीत थी। ऐसे में भारतीय टीम की अगर बात करें तो आज श्रृंखला बराबर करने पर नजरें होंगी। टॉस अगर दूसरे मैच की बात करें तो हो चुका है और आयरलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा, लेकिन पहले मैच की अगर बात करें शिवांश, तो अभिषेक शर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका था, और गेंदबाज भी अगर करें तो आयरलैंड के बल्लेबाजों पर ज़्यादा लगाम नहीं लगा सके थे। आज अगर बात करें तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा भारतीय बल्लेबाजी पर, जहां पे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी अगर आज मैच खेल रहे हैं, या फिर ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की भूमिका डिपेंड करेगी, और उसके अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे और अक्षर पटेल पर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी होंगी। आज के मैच की बात करें तो भारत चाहेगा ये मैच जीत कर सीरीज को बराबर करना, और वहीं अगर आयरलैंड ये मैच जीता है तो आज एक इतिहास रच जाएगा।
0: तो दोस्तों, ये तो बात हुई क्रिकेट की। इसके बाद आपको ले चलते हैं ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया की ओर। बताइए अतुल, क्या कुछ खास है आपके पास?
1: ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में जारी 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे दिन कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही महिला लंबी कूद में एनसी सोजन का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जबकि पुरुष ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। इसके अलावा कई अन्य भारतीय एथलीटों ने भी स्वर्ण पदक जीतने के साथ एशियाई खेलों के क्वालिफिकेशन मानक हासिल किए। सबसे पहले बात करते हैं महिला लंबी कूद की, जहां केरल की एनसी सोजन ने अपने पांचवें प्रयास में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड और नया मीट रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ ही भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में कल का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। एनसी ने वह कर दिखाया जिसका इंतजार भारतीय खेल जगत पिछले 22 वर्षों से कर रहा था। इस अचीवमेंट के बाद एनसी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: Today I think about like that I am competing Asian Games like and I felt like that someone beat me so I need to grab the medal for our national so suddenly it felt me and encouraged me I just did like that I know this jump can produce gold I am aiming for a world class performance this is a statement that India have also good jumpers if someone work hard they can achieve it just believe ourselves and be patient and dedicated to our work how much you give sacrifice and dedication to your work it will give it will take time but still believe yourself I know it is a huge jump 83 obviously Anju ma'am had it she struggles a lot and she's a legend exactly so I am also aiming like her I want to become a world class jumper।
1: एनसी ने भारतीय एथलेटिक्स की महान हस्ती अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2004 एथेंस ओलंपिक में 6.83 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था जो अब तक अटूट बना हुआ था।
5: ही

ही नी ईद एक स्वहली या आकाशवाणी हम जम्बो वस्कले वेटू आफ्रिका मशवई की नामा हाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदा ही न सिकीका टुन टंगाजीनी क्वेने क्लोहार्स एल्फो कुमिना टानो ना मिया एने यानी मिटा बैंडी कुमिना सीटा हिविसासा निसा टीसा ना रोबो जजुनी को आसाजा आफ्रिका मशवई की क्यों निसा कुमिना अम्बीली का सा रोबो हापा इंडिया मपंगो वेटू को आजुनी हाले उतुना वाले टेनी तारीफा या हबारी मारा बादाए तारीफा या हबारी टुटावाले टेनी म्यूजिकी वा केनेसी हलाफु की पिंडी मालूम की नचो इटवा कामा स्पोर्ट लाइट कटिका लोगा या के अंग्रेजा के लियो टांगाजवा जाना ना इदा या हबारी या आकाशवाणी नाटिमाए म्यूजिकी कुटोका बारला फ्रीका हीनी इदा की स्वहली आकाशवाणी वा पिंडवा वस्कलिजाजी बादाए मुडम फूपी टुटावाले टेनी तारीफा या हबारी

0: सतपाल और उषा सेठ के बाद अश्विनी भाई अब जो अगली फरमाइश है नरदेव बेनीवाल को सुनना चाहा है और इसके लिए जो पत्र हैं
1: जिसके लिए जो फरमाइश आई है वो गांव लोहागढ़ ठाकुर वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुलगार और उनका पूरा परिवार वहीं गुलाम कुलमाल रोड हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से है। ये है अनीता सिंधु, रोहित सिंधु, रितेश सिंधु,
0: बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव और इनका परिवार। यह है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और इनका परिवार। और ये है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और इनका परिवार। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़। ये हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता और इनका परिवार। ये हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। ये हैं महिपाल श्योरान, नीरू उत्कर्ष और दिव्यांश, गांव बद्दू चैनाथ, जिला भिवानी हरियाणा से। और अगले जो संदेश है वो है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने और इनका परिवार। नूर महल मैसोल सीतामढ़ी से मुसरत जहानाज, तलत जहां और इनका परिवार। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर राजा हरिश्चंद्र के किस्से में से नरदेव बेनीवाल की गाई है रागनी।

0: अश्विनी भाई, मैसेज लगातार भाइयों के आ रहे हैं और ये हैं हमारे पास सज्जन जांगड़ा जी। इन्होंने अभी अभी मैसेज भेजा है कि सतपाल उषा सेठ का जो दो गाना है इन्होंने बहुत सालों बाद सुना है, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। भाई हमारा तो यही उद्देश्य है कि आपकी पसंद के अनुरूप हम कार्यक्रम दें, और सतपाल उषा सेठ को तो हम सुनवाते रहते हैं, हो सकता है इन्होंने काफ़ी दिनों बाद सुना हो। खैर आपने पसंद किया, आपका धन्यवाद। और अगली जो फरमाइश है सुनीता पांचाल के लिए है,
1: उनके लिए पत्र मिला है नगर निगम वार्ड नंबर 28 से, ये उनको लिखने वाले हैं। ये है वसीम अकरम, अरजव वसीम, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, उनका पूरा परिवार। ये पत्र में भेजा है नरवेला महाराज से है। ये पीएस नेवाकर, निर्मला और विशाल, उनका पूरा परिवार। ये है मलकापुर महाराष्ट्र से, सोपने तावड़े, नारायण आशीष और
0: अश्वनी भाई। हम नाम कृषि में पढ़ लेंगे, सुन लेते हैं सुनीता पांचाल को जी।

0: और इसी के साथ ही हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुन सकेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स के राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर के द्वीपों के समूह के रूप में

0: दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये अंतिम मुकाबला है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम। जी रेणुका भाई,
0: अश्वनी, देखिए कि जो हमारा कृषि जगत कार्यक्रम है इसमें हम कृषि की बातें अपने भाइयों से करते हैं और जो ज़रूरी इस समय की बात है वो है कि बारिश का महीना आने वाला है
1: जी।
0: और मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी मिल रही है कि अभी जुलाई के शुरुआत में कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, दिल्ली के आसपास भी, क्योंकि जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं उनमें अभी बारिश हो रही है और जहाँ पर ज़्यादा बारिश

0: का जब शुरुआत हो जाती है तो हम भाइयों को सलाह देते हैं कि धान की रोपाई का काम उन्हें पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे धान की फसल अच्छी जड़ पकड़ लेती है। इसके अलावा जिस समय जो मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली या तिल की बुआई है, उसका भी समय चल रहा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो भाइयों को खेत की तैयारी पहले से रखें और इसके बाद चुनाव करें बीजों का, और बीज अच्छी तरह से जो प्रमाणित जगह है वहाँ से लेना है, भरोसे की जगह से लेना है। और ये ध्यान रखना है कि बीमारियों से फसलें बची रहें, उनको उपचारित करके उसकी बिजाई करनी है। और इस तरह से जब बारिश की हम बात करते हैं, इस बारिश के महीने में बहुत सारे पौधे हमारे ऐसे हैं जो अच्छे चलते हैं, लेकिन जब जल भराव की समस्या होती है, ख़ास तौर पर अगर पौध है, चाहे सब्जी की पौध है या धान की पौध है, धान वाली पौध में तो खैर पानी की मात्रा चल जाएगी, लेकिन सब्जी की फसल की अगर कहीं भी आपकी पौध पानी के अंदर जल भराव में आ जाती है तो ख़राब हो जाती है। तो जल निकासी का प्रबंध भी आपको रखना है बारिश का मौसम देखते हुए। और इसके साथ साथ जो फसलें आप इस समय बिजाई करेंगे, उसके 20-25 दिन के बाद अश्विनी भाई उनमें खरपतवार आने की समस्या दिखाई देने लगती है, तो उनको आप निकालते रहें। अच्छा है कि लाइन में अगर आपने फसल बोई है तो उसमें खरपतवारों को आप फावड़े या खुरपी से आराम से निकालें, रसायनों का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि खाद्यान्न की फसलों में कुछ ना कुछ असर फिर रसायनों का रह जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है, ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और फिर खर्चा तो आपका उनमें आता ही है।
1: बिल्कुल
0: इसके साथ साथ जब बारिश होती है तो जब नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों को देने की सलाह होती है, जब आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं यानी छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव में सीधी पौधों को एकदम मिलती है, और यूरिया की मात्रा भी आपको कम देनी पड़ती है, उसका असर सीधा होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जिस समय आप छिड़काव कर रहे हैं उसके तुरंत बाद बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश बंद होने के बाद में आपको ये छिड़काव करना चाहिए। और जो धान की फसल है या फिर हमारी सब्जियों की फसल है, अगर किसी भी फसल के अंदर आपको किसी तरह की भी समस्या कीटों की आती है, बीमारी की आती है, तो उसका तुरंत नियंत्रण किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में उमस ज़्यादा होती है, जब बारिश होती है तो बीमारियां भी ज़्यादा आने का डर रहता है। अगर उनका नियंत्रण आप नहीं करते हैं तो आपकी फसल के उत्पादन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और गुणवत्ता भी खराब होती है। इसीलिए समय समय पर अपने फसल की निगरानी करते रहें और कीटों और बीमारियों से इन फसलों को आपको बचाना है। और इसके साथ साथ जो खास पर जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, टमाटर है, मिर्च है, भिंडी है, या फिर बेल वाली सब्जियां हैं, अगर पानी ज़्यादा इन खेतों में हो जाता है तो ये बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं। इनमें खास तौर पर आपको जल निकासी का प्रबंध रखना है, नहीं तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। और बेल तो पानी के अंदर डूबने के बाद फल भी और बेल भी दोनों ही ख़राब हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: इसीलिए जल निकासी का इंतज़ाम रखना है। और ख़ास तौर पर जो हमारे पशुपालक भाई हैं, उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में ज़्यादातर बीमारियाँ आती हैं पशुओं के अंदर, इसलिए टीकाकरण पहले से करवा लेना चाहिए। अगर नहीं करवाया है तो टीकाकरण अभी भी करवा लें। गलघोटू या मुंह पका खुरपका का जो टीका है वो पहले से ही आप लगवा लेंगे तो खतरनाक बीमारी है गलघोटू, उससे बचाव आपके पशुओं का हो जाएगा। अश्विनी भाई बहुत महंगे हैं पशु,
1: जी बिल्कुल,
0: अगर भाई इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हो सकता है, और टीके से काफ़ी बचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ जब इन मौसम में हम देखते हैं कि ब्यात का भी समय होता है,
1: जी
0: अगर कटड़ा कटड़ी बछड़ा बछड़ी हैं, उनको अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं कई बार, तो कीड़ों से बचाव के लिए भी दवाई दे देनी चाहिए उनको। आपके पास के पशु चिकित्सालय हैं, उनमें आप जा कर के दवाई ला सकते हैं, और 3-4 माह के अंतराल पर उनकी सलाह पर आप इन कीड़ों की दवाई अपने छोटे जो पशुओं के बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, इस तरह से वो बचे रहेंगे। इसके बाद कलिली और चींचड़ी की समस्या भी कई बार आती है अपने बाड़े में, और वो ना केवल छोटे बच्चों को बल्कि जो बड़े पशु हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और आप क्या करते हैं, खरारा करते हैं या उनको अलग कर देते हैं खाल से, कलकलिली को

0: अब क्या होता है कि उन्हें तो आप साफ कर देते हैं, लेकिन उनके अंडे जो होते हैं वो उनके खूंटों के पास में या दीवारों में छुपे होते हैं, वो फिर बड़े होकर के फिर बड़ी कलीली बन जाते हैं और पशुओं का खून चूसते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कटड़े कटड़ी के तो कई बार जब खून चूस लेते हैं तो बाल उड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं पशु। और हम जानते हैं कि जो छोटे पशु हैं उनका भी ध्यान हमें बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह से किसी पशु को परेशानी होती है तो दुधारू पशु में ख़ासतौर पर दूध निकालने में भी फिर दिक्कत आती है। और यही कल के आपके पशु हैं, अगर छोटी बछिया है, छोटी कटिया है, आगे जाकर आपका दुधारू पशु तैयार होकर जो भाई खेती नहीं है जिनके पास, वो भी पशुपालन करके अपना रोजगार कमाते हैं, क्योंकि पशुओं का चारे का वो इंतज़ाम करके पशुपालन करते हैं और जो उनके रोज़गार का साधन भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पशुपालन तो हमारे किसान भाई जिनके पास ज़मीन है वो तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो पशुओं के लिए चारा दाना है वो तो हमारे पशुओं को अपने खेतों से मिल जाता है। और पशुपालन का काम अगर कोई करता है तो उसको आसानी इसलिए भी रहती है कि सारा सामान, चाहे वो दाना है चाहे चारा है, वो हमारे खेतों में मिल जाता है। अब हम अपने जो युवा साथी हैं उनको भी ये कहना चाहेंगे कि जो कृषि आधारित रोज़गार हैं अगर वो उसको करते हैं उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। एक तो जो शहर की ओर दौड़ की होड़ लगी हुई है वो कम हो जाती है।
1: बिल्कुल, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो होड़ लगी हुई है शहरों से, गांव से शहरों की ओर जाना है, यहाँ गाँव में रहकर कोई रोज़गार नहीं करना है, चाहे वहाँ पर 15-20 हज़ार की नौकरी क्यों नहीं करनी पड़े, वहाँ पर वो समझते हैं कि अपना कि मेरा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। गाँव में रहकर ही आप छोटे मोटे उद्योग लगाकर उतनी आमदनी आराम से कमा सकते हैं। और जैसे निरंकर भाई लगातार बता रहे हैं कि इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जो सलाह दी जाती है इस मौसम में, बारिश के मौसम में, या कि जब ठंड का आगमन होगा तो अपने पशुओं की, अपनी खेती की, अपनी ज़मीन की कैसी देखभाल करना है और करनी भी चाहिए, उनमें अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लाभ ज़रूर कमाएंगे।
0: और जो रोज़गार की हम बात करते हैं, जब आप शहर में जाके रोज़गार करते हो तो ज़मीन भी किराए पर लेनी पड़ेगी, सारी जगह जो चीज़ें वहाँ पर आप खरीदोगे वो भी महंगी पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: अपने गांव में रह करके बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती पड़ेंगी, उससे आपको ज़्यादा लाभ भी होगा। तो बातें तो अपने किसान भाइयों से हम करते रहेंगे, अब कहो तो एक सुनवा देते हैं उपदेश।
1: जी
0: ये ओमवीर आर्य की आवाज़ में
1: जी,
0: और कुछ नाम भी है, वो भी पढ़ लेते हैं।
1: जी नाम ये कुछ बचे हुए हमारे साथियों के हैं जो हमारे साथ इंतजार भी कर रहे होंगे। कस्बा बाड़ा जिला अंबाला से ये पत्र में मिला है। ये है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कुमार कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत और उनका पूरा परिवार। यहाँ पर एक पत्र और मिला है, ये है करालावाला दिल्ली से है रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन प्रजापति। ये है चौक 5 MD पतोड़गढ़ जिला गंगानगर राजस्थान से है मंगल जी, श्रीमती रोशनी, अंकुर और डॉक्टर सुनील और उनका पूरा परिवार। ये है गांव पंचायत बैठना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से है बालकृष्ण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उनका पूरा परिवार। ये है रघुनाथपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिमाना, हिमनी, हर्षित और उनका पूरा परिवार। ये है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा और गावैक मोत्रा और उनका पूरा परिवार। ये है परमजीत सिंह और ये गगनदीप कौर, गुरमीत कौर, परमजीत कौर और पाल। और ये पत्र मिला है शहर वाला पुराना वाला से पत्र मिला है। ये है गांव थाना पंजाब से हरिंदर छिप्पा, जसबीर छिप्पा और उनका पूरा परिवार। और गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से बेदमिंडा, अलकामिंडा और उनका पूरा परिवार। और ये है ऊपर कोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से पत्र मिला है मोहम्मद साइद अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी और उनका पूरा परिवार। ये है बिलाई छत्तीसगढ़, रोशन लाल देवगन, कौशिकला देवगन, हेमलता देवगन और इनका पूरा परिवार।
0: नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा और इनका परिवार। ये हैं ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श सार्थक आलोक और चंदोलिया। और ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और मन्नत मक्कड़ लिखने वाले हैं, ये पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। और इसादुल सह राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़।

ये हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि नोकेलाल, और गांव रावत खेड़ा जिला हिसार हरियाणा से सियाराम भादू, सुशील भादू और इनका परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और इनका परिवार। ये हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, गांव खोखरावाली जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से विनोद बाराशा, विशाल बाराशा, विकास बाराशा, और नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक वेदांश। और ये है भोला कॉलोनी घरोंडा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और इनका परिवार। ये है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन मयंक शर्मा। और ये हैं मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा और इनका परिवार। और ये है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज और इनका परिवार। ये हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा और इनका परिवार। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और उनका परिवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, तन्मय गजबीय और इनका परिवार। तो सुनते हैं ओमवीर आर्य को।

0: और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 है। शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सजाते हैं महफिल गजलों की, और इस गजल के कार्यक्रम का आगाज जगजीत सिंह साहब की आवाज के साथ।

चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर और सुनवाते हैं आपको एक बार फिर जगजीत सिंह साहब की आवाज में फिल्म सरफरोश से ये गजल।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गजल की ओर। हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर साहब की आवाज में फिल्म मासूम से ये गजल।

0: इसी के साथ इस कार्यक्रम से मुझे यानी दीप्ति को इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। दिल्ली की सभी झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए युवाओं को तैयार करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बीच भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने के कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।

0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 135वें कड़ी को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों और भाजपा राष्ट्रीय तथा दिल्ली प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सुना। वहीं दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 8B5 स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में मन की बात कार्यक्रम को नागरिकों के साथ सुना। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि मन की बात केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों को जोड़ने वाला एक जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। DMIRC के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई उसकी स्मार्ट डोर टू डोर यात्रा सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ये सेवा प्रथम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रियल टाइम सूचना तथा निर्बाध टिकटिंग को एकीकृत कर यात्रा को अधिक सुगम, सुविधाजनक तथा पर्यावरण अनुकूल बनाती है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये सुविधा दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जो AI पर आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इस व्यवस्था के माध्यम से यात्री अपने घर से गंतव्य तक यात्रा की योजना बना सकते हैं और उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसमें घर से मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा, मेट्रो यात्रा तथा मेट्रो स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक की यात्रा शामिल है। वहीं यात्रियों को पूरी यात्रा के लिए केवल एकीकृत किराए का भुगतान करना होता है। UITP का परिचालन उत्कृष्टता अवार्ड उन सार्वजनिक परिवहन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो दैनिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नवाचार और प्रभाव का परिचय देती हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा स्थित पीतमपुरा शकूर बस्ती विधानसभा के वेस्ट एनक्लेव और मुस्तफाबाद विधानसभा के महालक्ष्मी विहार में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में सम्मिलित हुई। ये सम्मेलन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास और जनहितैषी योजनाओं में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित ये यात्रा आज विकसित भारत के संकल्प को जन जन का संकल्प बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रेरणा के साथ विकसित शालीमार बाग के निर्माण का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही बेहतर सड़कें, सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ परिवेश और जनहित के कार्यों के माध्यम से विकास का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी विधानसभा से विधायक पंकज कुमार सिंह ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर आयोजित प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चिल्ला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित क्लीन दिल्ली विद CM स्वच्छता अभियान के दौरान ये घोषणा की। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी दिल्ली की स्मृति, संस्कृति और जीवनधारा है, साथ ही इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
4: ये नदी हमारी अपनी है, यमुना हमारी माँ स्वरूप।

0: सपा है और इसे हमें गंदा नहीं करना है। जब ये सफाई अभियान यहाँ करते हैं तो इससे हजारों लोगों को मैसेज जाता है कि अब तक जो हमने किया कहीं ना कहीं उसे ब्रेक लगाने की जरूरत है, यमुना को हम गंदी नहीं कर सकते।
1: उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक, स्थायी और व्यापक स्तर पर यमुना के पुनर्जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और स्वच्छ घाट उसी संकल्प का सजीव प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना में प्रवाहित न करें और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पहली जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का एक वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 27 जून 2026 तक 235 विभागों और कार्यालयों के 15,748 अधिकारी और कर्मचारी ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ई ऑफिस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाएगा, जिससे दिल्ली में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था के माध्यम से अब यह आसानी से पता चल जाता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ई ऑफिस व्यवस्था को 3 अलग अलग श्रेणियों में विकसित किया है। पहली श्रेणी पूर्ण रूप से सरकारी विभाग के लिए, दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के लिए तथा तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री और भवाना क्षेत्र से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज चांदपुर गांव में HT11KV विद्युत लाइन स्थानांतरण कार्य और चांदपुर कला के से चांदपुर खुर्द लिंक रोड के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्षेत्र में सुरक्षित और सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था, बेहतर संपर्क मार्ग तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और जनहितकारी विकास कार्यों को गति देना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार जो काम 11 साल में नहीं कर पाई, दिल्ली की भाजपा सरकार ने केवल 11 महीने में ही उसकी योजना बनाकर उसे लागू भी कर दिया। श्री बिधूड़ी ने ये बात आज तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े झुग्गी कैंप इंदिरा कल्याण विहार ओखला फेज 1 में 66 लाख रुपए की लागत से बने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर का शिलान्यास करते हुए कही। इस जन सुविधा परिसर में कुल 60 सीटें बनाई गई हैं, जिनमें से 30 पुरुषों के लिए और 30 महिलाओं के लिए। बिधूड़ी ने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से इन झुग्गी बस्तियों में वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे वे सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने जाति, पंथ और ऊंच नीच से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संत कबीरदास के दोहे और शिक्षाएं समाज को आज भी सही दिशा प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात आज संत कबीरदास के जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह के दौरान कही।
4: संत कबीर

0: ऊंच नीच को छोड़ करके प्रेम प्यार समानता के भाव से रहने का संदेश दिया। उनके शिष्य हर समाज के थे, हर धर्म के थे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार संत कबीर के नाम पर प्रतियोगिताएं और पुरस्कार प्रारंभ करेगी। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में कल्याणपुरी और मंडावली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लगभग 1500 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज उमस भरी गर्मी के साथ तेज धूप से लोगों को दिक्कतें हुई। हालांकि दिन ढलते ही मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर 0112311 0112311 0112311 0112311 0116। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर कीर्ति काले।
7: नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले इस कवि गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस कवि गोष्ठी में हमारे साथ तीन वरिष्ठ रचनाकार समाहित हैं और एक मैं हूं। हमारे साथ में है डॉक्टर शिव नारायण जी जो कि पटना बिहार से हमारे साथ में हैं, श्री राधेश्याम बंधु जी जो वरिष्ठ रचनाकार हैं, नवगीतकार हैं, हमारे बीच में हैं, और एक वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर सीता सागर जी हमारे साथ में हैं। तो आज ये विशेष कवि गोष्ठी है क्योंकि ये आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये कवि गोष्ठी आयोजित की जा रही है। 2-3 दोहे सुनाती हूँ, उसके बाद मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी। आकाशवाणी ने किए पूरे 90 वर्ष।
8: बहुत अच्छा।
7: आकाशवाणी ने किए पूरे 90 वर्ष, 90 वर्षों में हुआ प्रतिदिन नव उत्कर्ष।
8: बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत
7: खूब। समाचार संगीत अरु खेल ज्ञान विज्ञान, समाचार संगीत अरु खेल ज्ञान विज्ञान, कवि सम्मेलन शायरी सबको दिया वितान।
8: बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे।
7: और छपे भले अखबार में टीवी करे बखान, कि छपे भले अखबार में टीवी कहे 50, जब बतलाता रेडियो तब होता विश्वास।
8: बहुत खूब, बहुत।
7: तो आकाशवाणी और रेडियो की विश्वसनीयता लगातार 90 वर्ष से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। हम सबके जीवन का प्रारंभ यानी हमारे नित्य प्रतिदिन जो हमारे समय का प्रारंभ होता है वो आकाशवाणी के द्वारा जो ट्यून बजती है उसी से होता है। तो 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले जिन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ वो बिहार के

0: पाटली पुत्र से हमारे बीच में आए हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शिव नारायण जी, आप आइए और अपनी रचनाओं से हमारे श्रोताओं को लाभान्वित कीजिए।
1: धन्यवाद कीर्ति जी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सबसे पहले मैं आकाशवाणी के प्रति अपनी शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ और एक गजल पेश कर रहा हूँ।
0: स्वागत।
1: चौखट पर मौसम का पहरा ठीक नहीं है।
0: क्या बात है।
1: चौखट पर मौसम का पहरा ठीक नहीं है।
2: बहुत अच्छे।
1: और आने वाली रुत का लहजा ठीक
2: नहीं है। वाह वाह वाह।
1: तुम चाहो तो रोज तलाशी ले लो मेरी। तुम चाहो तो रोज तलाशी ले लो मेरी, लेकिन तेरा अपना नक्शा ठीक नहीं है।
2: बहुत खूब।
1: लेकिन तेरा अपना नक्शा ठीक नहीं है। मेकअप चाहे जितना कर लो, मेकअप चाहे जितना कर लो, चेहरे पर तुम दुनिया बोलेगी यह चेहरा ठीक नहीं
2: बहुत
1: है।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: मेकअप चाहे जितना कर लो, चेहरे पर तुम दुनिया बोलेगी यह चेहरा ठीक नहीं है। और क्या बतलाएं, बारिश होगी या ना होगी। क्या बतलाएं, बारिश होगी या ना होगी, मौसम का यह बदला रुतबा ठीक नहीं है।
2: बहुत अच्छे।
1: और ये मक्ते का शेर कि शिव का द्वार खुला है, शिव का द्वार खुला है, वो भी आ जाए तो। शिव का द्वार खुला है, वो भी आ जाए तो, लेकिन उसका आना जाना ठीक नहीं है।
2: बहुत अच्छा।
1: चौखट पर मौसम का पहरा ठीक नहीं है, आने वाली रुत का लहजा ठीक नहीं है।
2: बहुत खूब,
0: बहुत अच्छा।
1: एक छोटे बहर की गजल और आप देखें
0: जी। स्वागत।
1: जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है। जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है, फूल है खुशबू है लेकिन रात रानी और है।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है, फूल है खुशबू है लेकिन रात रानी और है। मेरे हिस्से में तुम्हारे जख्मों के ये सिलसिले, मेरे हिस्से में तुम्हारे जख्मों के ये सिलसिले, जिस्म पर उभरी हुई उनकी निशानी और
2: बहुत
1: है।
2: अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत।
1: सब तो अपने हक में शायद ले गए अपने सुकून, सब तो शायद अपने हक में ले गए अपने सुकून, मेरे हक में जो बचे वो जिंदगानी और है।
2: बहुत अच्छे।
1: और कल तलक जो दोस्ती का दम्भ भरते थे, कल तलक जो दोस्ती का दम्भ भरते थे, यहाँ आजकल उन दोस्तों की मेहरबानी और है।
2: बहुत अच्छे।
1: आजकल उन दोस्तों की मेहरबानी और है। और ये मक्ते का शेर कि सिर्फ तुम्हारे नाम जो लेकर चले थे बैसाखियाँ।
2: बहुत अच्छे।
1: सिर्फ तुम्हारे नाम जो लेकर चले थे बैसाखियाँ, आज उनकी क्या गजब की ये जवानी और है। जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है, फूल है खुशबू है लेकिन रात रानी।
2: बहुत अच्छे।
0: क्या कहने, वाह वाह।
1: एक छोटे बहर की ये गजल देखें आप। कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, अलगू जुम्मन की लाचारी तुम क्या जानो।
2: बहुत अच्छे।
1: कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, अलगू जुम्मन की लाचारी तुम क्या जानो।
2: बहुत अच्छे।
1: और आंख मिलाकर आंसू पीकर हंसते रहना।
2: बहुत अच्छे।
1: आंख मिलाकर आंसू पीकर हंसते रहना, कुछ लोगों की यह फनकारी तुम क्या जानो।
2: बहुत अच्छे।
1: कुछ लोगों की यह फनकारी तुम क्या जानो। और कागज पर खुशियों के, कागज पर खुशियों के खिलते फूल नए जो, नाम वही होता है सरकारी तुम क्या जानो।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: नाम वही होता है सरकारी,
2: बहुत खूब।
1: सिर्फ भरोसा होता जिनको हाथों पर ही, सिर्फ भरोसा होता जिनको हाथों पर ही, कल उनका कितना है भारी तुम क्या जानो।
2: बहुत अच्छा।
1: और ये मक्ते का शेर, क्यों रहती है धड़कन में शिव प्यार मोहब्बत, क्यों रहती है शिव धड़कन में प्यार मोहब्बत, सांसों की यह दुनियादारी तुम क्या जानो। कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, अलगू जुम्मन की यह लाचारी तुम क्या जानो। और अंत में एक छोटे बहर की ही गजल और मैं सुना दूं आपको
0: जी। बहुत स्वागत।
1: सब रिश्तों का मान बराबर होता है, सब रिश्तों का मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: जब रिश्तों, जब रिश्तों का मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है, कद से हो जाता है साया छोटा तो।
2: बहुत अच्छे।
1: कद से हो जाता है साया छोटा तो,

0: तब सिर पर दिनमान बराबर होता है, तब सिर पर दिनमान बराबर होता है।
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छा।
0: सबके सब अपने चेहरे पर कायम है,
2: बहुत अच्छा।
0: सबके सब अपने चेहरे पर कायम है, कब किसका उन्वान बराबर होता है।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: मौत जहाँ दस्तक देती है चलने की, बंधु जी
3: स्वागत।
0: मौत जहाँ दस्तक देती है चलने की, मुफलिस और धनवान बराबर होता है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छा।
0: मौत जहाँ दस्तक देती है चलने की, मुफलिस और धनवान बराबर होता है। और ये मक्ते का अंतिम शेर कि शिव चर्चा होती है जिस महफिल में, कि शिव चर्चा होती है जिस महफिल में, उस महफिल का मान बराबर होता है। जब रिश्तों का मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है।
2: बहुत अच्छे,
1: बहुत अच्छा। शिव नारायण जी, आपने तीन गजलें सुनाई और तीनों बिल्कुल अलग अलग अंदाज की थी, लेकिन तीनों में एक बात मुझे लगा कि कॉमन है, वो है उसकी व्यंग्यात्मकता। आपके शेरों की जो व्यंग्यात्मकता थी वो बहुत दूर तक चोट करने वाली थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम एक खूबसूरत सफर पर चलते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कवयित्री गीतकार डॉक्टर सीता सागर जी हैं। बहुत अच्छे गीत वो लिखती हैं, कहती हैं, सुनाती हैं। कवि सम्मेलनों में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लिए मैं पंक्तियां बोलूंगी कि कोई गीत नहीं गाता है, कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है।
2: बहुत
1: तो बहुत मीठा गाने वाली डॉक्टर सीता सागर जी हमारी बहुत आत्मीय, मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आइए सीता जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति। मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छी गीतकार और शायरा और बहुत अच्छी संचालिका और उतनी ही प्यारी नेक दिल इंसान कीर्ति काले के संचालन में मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ, तो मैं गीत के साथ हाजिर।
1: धन्यवाद।

0: वाह वाह,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी, आपने मन के अनेक विविध पक्षों को अपने दोनों गीतों में अभिव्यक्त किया है। और आइए गोष्ठी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में वरिष्ठ नवगीतकार और जिन्होंने कई सारे टेली फिल्म्स भी लिखी हैं और विविध आयामी जिनका व्यक्तित्व है, दूरसंचार विभाग में राजभाषा अधिकारी के पद पर वो रहे हैं और जीवन का बहुत बड़ा अनुभव जिन्हें है, ऐसे श्री राधेश्याम बंधु जी से मैं सम्मान पूर्वक आग्रह करूंगी कि वे अपनी रचनाएं हमारी इस गोष्ठी को अर्पित करें। मेरी ही पंक्तियां हैं कि जुबा पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, कि जुबा पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें, और यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, कि यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, चलो कुछ देर बैठें और कर लें प्यार की बातें। तो आइए बंधु जी कुछ प्यार की बात करें, कुछ मनुहार की बात करें।
2: अच्छा कीर्ति, बहुत बढ़िया।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित इस गोष्ठी में आए सभी कवियों को कवित्रियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, आकाशवाणी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ।
1: स्वागत।
3: कि चांद चलता रहा चांदनी के लिए,
2: बहुत अच्छे।
3: चांद चलता रहा चांदनी के लिए, चांदनी लुट गई रोशनी के लिए।
2: क्या बात है, वाह।
3: चांद चलता रहा चांदनी के लिए,

0: नहीं लुट गई रोशनी
1: रोशनी के
0: के
1: लिए।
0: लिए, प्यार की बस्तियां यूं न वीरान हो, प्यार की बस्तियां यूं न वीरान हो, आदमी ये जिए, आदमी ये जिए आदमी के लिए,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छे,
1: वाह वाह,
0: आदमी ये जिए आदमी के लिए। आइए एक हिंदी गजल से अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि
2: स्वागत।
0: आज नया जमाना आया है तो हमें बदलना चाहिए, भाषिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी। इस आधार पर मैं चाहूंगा कि आया है नया दौर, नया मन बनाइए,
2: क्या बात है,
0: आया है नया दौर, नया मन बनाइए,
1: बहुत खूब,
0: घायल दिलों के घावों पर मरहम लगाइए।
1: बहुत अच्छे, वाह वाह वाह,
0: आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर
1: वाह वाह
0: मरहम
1: वाह,
0: लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, लाना है अगर आदमी को आदमी के
1: आदमी के
0: पास,
1: पास,
0: कांटों की जगह प्यार की खुशबू बसाइए,
1: बहुत
2: वाह
1: अच्छे
2: वाह
1: बहुत
2: वाह
1: अच्छे,
2: वाह,
0: कांटों की जगह
2: प्यार
0: प्यार की
2: की
0: खुशबू
2: खुशबू
0: बसाइए,
2: बसाइए,
0: आया है नया दौर, नया मन बनाइए। ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए,
1: जलाइए, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया,
0: उनमें भी कभी प्रेम का दीपक
1: दीपक से दीपक
0: जलाइए,
2: जलाइए,
0: वो
2: क्या
0: आया नया दौर, नया मन
2: बात
0: बनाइए। कि रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों,
2: है, क्या बात
0: रिश्तों का आईना
2: है,
0: बहुत नाजुक है
2: क्या
0: दोस्तों, शीशे के महल से नहीं पत्थर चलाइए,
1: बहुत
2: बात
1: अच्छे,
2: है,
0: शीशे के महल से नहीं
1: नहीं
0: पत्थर चलाइए, आया नया दौर, नया मन बनाइए। और दो पंक्तियां मैं देशभक्ति के लिए कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान चाहूंगा विशेष रूप
2: स्वागत
0: से,
2: स्वागत,
0: कि करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए,
1: बहुत अच्छे
2: बहुत
1: बहुत
2: बढ़िया,
1: अच्छे,
0: करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा
2: जज्बा
0: जगाइए,
2: बताइए,
0: आया नया दौर, नया मन बनाइए। और
2: वाह
0: लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, उनको भी भरत की तरह जीना सिखाइए,
1: बहुत
2: क्या
1: अच्छे
2: बात है,
1: बहुत
0: उनको भी
1: अच्छे,
0: भरत की तरह जीना सिखाइए। और नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, कृति काले जी,
1: जी
0: नफरत का जहर भी न जिसे मार
1: मार
0: सका
1: सका
0: है,
1: है,
0: नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, मीरा की तरह प्यार को जीना
1: बहुत
0: सिखाइए,
1: अच्छे
2: क्या
1: बहुत
2: बात
1: अच्छे,
2: है,
0: मीरा की तरह प्यार को जीना
2: उसको भी
0: सिखाइए।
2: बताइए,
0: और दो पंक्तियां मैं दे रहा हूँ, मेरा ये विश्वास भगवान मिलते हैं कि सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, लेकिन हमारी शर्त है, सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए,
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
2: पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए।
3: और अब मैं विशेष मकसद से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। संस्कृत में एक कहावत है कि गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, तो कीर्ति काले जी जितनी अच्छी कवित्री हैं उतनी ही अच्छी गद्यकार भी हैं, और ये सबसे बड़ी विशेषता है उनकी। न जाने कितने देशों में कविता के सिलसिले में काव्य पाठ, उनकी यात्राएं, न जाने कितने सम्मानों से पुरस्कारों से सम्मानित, कीर्ति के बारे में जितनी मैं प्रशंसा करूं कम ही होगी। तो मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा न करते हुए बाकी सब श्रोताओं पर छोड़ती हूं, और इतनी ही ये शुभकामना रखती हूं कि कीर्ति की कीर्ति पताका इसी तरह से दिशा दिशा में फहराती रहे, और कीर्ति जितना जमकर संचालन करती है उतना ही एकाधिकार के साथ में काव्य पाठ भी करती है। तो हम कीर्ति को आमंत्रित करते हैं, कीर्ति काले।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। एक गीत मैं आपके सामने रखती हूँ,
2: स्वागत,
4: सुनिएगा कि धी

0: वाह वाह का जवाब नहीं है भाई, वाह वाह
1: गया है आपस का संवाद। और पहले की शामें कैसी होती थी,
2: क्या बात
1: कि संजवा

0: मोहल्ले भर
1: क्या
0: के
1: बात है,
0: थे
1: अच्छा है,
0: बिटिया दामाद।
2: बिल्कुल
1: क्या
2: बहुत
1: बात
2: तो,
1: है,
2: बहुत
0: मोहल्ले भर के थे बिटिया दामाद। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का
2: बहुत खूब,
0: संवाद।
2: सच्चाई
0: एक
2: है
0: चित्र
2: ये,
0: और रखती हूँ
2: बहुत
1: स्वागत
2: खूब।
1: स्वागत।
0: इच्छत है एक मगर सबका।

0: अलग
1: बहुत अच्छे।
0: व्यवहार ना पहले सी मान मनोबल ना वो साझी बातें, छत पर दरी बिछा कर सोना वो गर्मी की
1: वाह बहुत
0: रातें,
1: अच्छा, वाह वाह वाह,
0: वो गर्मी की
1: क्या
0: रातें,
1: दृश्य
0: वो
1: कह रहा है, बहुत
0: गर्मी
1: खूब।
0: की रातें। और आमदनी कम थी बेशक, पर आमदनी

0: आबाद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और अपने घर की एक बात रखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये आजकल हर घर
1: की बात
0: घर घर की बात
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि घर के

0: कौन करे।
1: सच्चाई है ये।
0: और चैत बैसाख अष्टमी नवमी, चैत बैसाख अष्टमी नवमी नहीं किसी को याद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद।
1: बहुत अच्छे।
0: और इस गीत का अंतिम बंद है कि वो

0: आया करते थे, नाम नहीं थे उन रिश्तों के, मन के नाते थे जिन्हें सोच कर मन ही मन इतराया करते थे, इतराया करते थे, इतराया करते थे।
1: क्या लेखन है, वाह।
0: और रिश्ते

0: दामवा
1: क्या त्रास दी है,
0: धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद।
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छे।
0: लेकिन ये आपस का संवाद बना रहे और इसी के लिए आकाशवाणी हमारे साथ में हमेशा रहती है। आकाशवाणी में साहित्य, संगीत, कला, खेल सब कुछ समाहित रहता है और न जाने कितने साहित्यकारों को, कितने कलाकारों को एक प्रारंभ से लेकर आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं बस इस कवि गोष्ठी के समाहार के रूप में यही कहूंगी कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है और नजर में तीन रंगों का सदा सम्मान रहता है और कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान रहता है।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: अच्छे। हिंदुस्तान पिच्छी को अपने मस्तक पर लगाते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आकाशवाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।
3: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर सीता सागर, श्री राधेश्याम बंधु।

0: जल दाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सिंघम से श्रेया घोषाल की आवाज में और स्वानंद किरकिरे साहब का लिखा ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1988 में रिलीज फिल्म कयामत से कयामत तक का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण साहब की आवाज में, और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने।

और आइए अब कार्यक्रम फिल्म संगीत में बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी पेशकश की ओर। ये गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म दिल तो पागल है से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत आप सुनेंगे।

इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम से यानी फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। मैं यानी दीप्ति पाठक आपसे फिर बहुत जल्द मिलूंगी। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा

0: एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने

0: न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी

0: अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermine in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed

0: to the scene while authorities began collecting witness statements as part of the investigation into the crash. In Saudi Arabia, 14 people were killed after a helicopter belonging to country's oil giant Aramco crashed today in Ras Tanura on its eastern coast on the Gulf west of the Strait of Hormuz. Aramco had resumed crude oil loadings on Friday at its Ras Tanura terminal in the Gulf after they were halted for nearly 4 months due to West Asia conflict. According to the Saudi Ministry of Energy, all 14 victims were Saudi nationals. A full investigation has been launched to determine the cause of the crash. In the ICC Women's T20 World Cup, India have set a target of 171 runs for Australia in their final of the must-win Group A match at Lord's in London. In reply, Australia were 35 for 1 in 4.4 overs when reports last came in. Earlier, opting to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. Skipper Harmanpreet Kaur scored 56 in 27 balls. For Australia, skipper Sophie Molyneux bagged 3 wickets. And in men's cricket, hosts Ireland have set a target of 155 runs for India in the second and the final T20 international of the two-match series in Belfast. In reply, India were 54 for 4 in 8 overs when reports last came in. The rain has currently halted play. Ireland lead the series 1-0. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 international in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाता है। नेज जहां शराकतदारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا اور باہمی

0: से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में आज मुल्क की तेल कंपनी आरामको का एक हेलीकॉप्टर आबनाए हुरमुस के मगरिब में खलीज के मशरकी साहिल पर रास तनूरा में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। आरामको ने जुमा को खलीज में अपने रास तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी। वाजह रहे कि मगरबी एशिया तनाजे की वजह से यहां खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के शुमाली खित्ते में आज एक स्काई ड्राइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में उसमें सवार 11 अफराद हलाक हो गए। मर्थे मोसिल के नुमाइंदे यवेस सेगुई ने बताया कि तैयारा नैन्सी शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गईं जबकि हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के सिलसिले में ऐनी शाहिदीन के बयानात जमा करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप को शदीद तरीन गर्मी का सामना है। फ्रांस, जर्मनी और चेक जमहूरिया समेत कई मुल्कों में हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। फ्रांस के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बुध से अब तक तकरीबन 1000 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 85% अमवात बुजुर्ग अफराद की दर्ज की गई हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। पेरिस में एफिल टावर और लुरे म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 रोज के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुज़वी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गांवों के मरकजी किरदार को उजागर किया है। آئی سی سی خواتین ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں لندن کے لارڈز میدان پر گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 170 رن بنائے۔ بھارت نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا نے ہدف کا پیچھا کرتے

हुए, 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20

इसी मर्दों के वॉलीबॉल कप में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरीन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। और मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेज़बान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

وإذا

0: मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
1: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
0: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
1: तब ठीक है,

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham.

न्यूज 24/7 चैनल से और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और लीजिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसके अंतर्गत हम सुनते हैं गीत सुनहरे, यानी कि गोल्डन एरा के वो खूबसूरत गीत जो आज भी आपके दिलों पे छाए हुए हैं। शुरुआत करते हैं गीतादित्य की आवाज़ पे प्यासा फिल्म से इस गीत के साथ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी की भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको।

और अगला गीत फिल्म हीर रांझा से लता मंगेशकर की आवाज़ में है। 1970 की ये फिल्म है और इसको संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। बोल हैं कैफी आज़मी की।

0: खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे।
1: और अब आपको ले चलते हैं 1960 की फिल्म बरसात की रात की तरफ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, बहुत ही प्यारा गीत है, और चलिए सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ, इतने प्यारे प्यारे गीत अगर हो तो बिल्कुल भी, गीत भी आपकी रात अच्छी करती है और आप इससे हटते भी नहीं हैं और इन गीतों को भूलना नामुमकिन सा है। तो अगला गीत 1960 फिल्म से है, ये चित्रगुप्त का इस पे संगीत है और मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म बारात से।

और लीजिए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। सलिल चौधरी का म्यूजिक है और फिल्म है हनीमून।

साथियों, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे, गोल्डन एरा के वो गीत जो आज भी आपके दिलों को छू जाते हैं। और लीजिए, इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म हम दोनों से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की, और बोल हैं साहिर के और संगीत से सजाया है जयदेव ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसके अंतर्गत आपने पुराने गीतों का आनंद लिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर

0: की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, जिसके अंतर्गत आपने नॉन स्टॉप फिल्म संगीत सुना। यह कश्मीर दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 3 बजने को अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of

0: अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
2: The two countries also

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 और अब प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम। पहली गजल मेहंदी हसन की आवाज में।

0: चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, गोरे गोरे हाथा की सगाई, आशिक के मन को भाई, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, चूड़ियां,
1: ये चूड़ी वाले चूड़ियां दिखाओ ना, चूड़ियां दिखाओ।
2: इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़ियां कयामत ठाएंगी।
1: ये क्या कर रहे हैं?
2: चूड़ियां पहना रहा हूं बीबी।
1: हमको और चूड़ियां दिखाओ ना, हमको धानी चूड़ियां चाहिए।
2: धानी चूड़ियां चाहिए? अब धानी चूड़ियां कहां से लाऊं मैं? ये चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें।

0: प्रातः 4 बजने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को

0: पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहा 1,400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तरी और पश्चिमी भारत के बीच संपर्क को काफी आसान बनाएगा और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई खंड की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई यात्रा के समय को 8 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish B. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कर्नाटक संगीत।
1: प्रस्तुत है

इसी के साथ कर्नाटक संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण।

पांच बजे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग उष्ट्रासन और योग से संतुलित जीवन पर चर्चा। 5:20 पर सुनिएगा देशभक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम। 5:30 पर सुनिएगा हिंदुस्तानी क्लासिक।

म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 6:10 पर प्रस्तुत किया जाएगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

6:40 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम का विषय होगा राहुल संकृतियायन के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम रामचरितमानस। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 101।

6:55 पर संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना

0: योजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। सोशल मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। भारत के किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के योदाई ओकीमोतो को हराया। फाइनल मुकाबले में 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना चीनी ताइपे के सू ली यांग से हो रहा है। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण के पहले मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of Independence Day of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian PM to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: Prime Minister Narendra Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. He dedicated the award to the nation's fighting against the challenge of climate change and considers environmental protection their responsibility towards future generations. PM Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandra Ramgoolam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the Special Economic Package extended by India. PM Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध ऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भर

हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्धउष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती।
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में